मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 जुलाई वर्ष 2026, प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हो रहे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने

0: लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देश भर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्तिमय कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी के इस पावन प्रभात में आपका हार्दिक स्वागत है। नई सुबह, ईश्वर के स्मरण सकारात्मक ऊर्जा और नई आशाओं का संदेश लेकर आती है। आइए भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिकता से भरी परिपूर्ण हमारे इस कार्यक्रम वंदना का शुभारंभ करते हैं माँ अम्बे की स्मृति से।

सच्ची भक्ति हमें ईश्वर के और निकट ले जाती है। ईश्वर के प्रति समर्पण और विश्वास ही हमारे जीवन की सबसे अनमोल और बड़ी शक्ति है। जब मन इस प्रकार श्रद्धा से ही भर जाता है, तब हर दिशा में बस ईश्वर का ही स्वरूप नजर आता है।

गुरुवाणी प्रेम, सेवा और विनम्रता का संदेश देती है। ये मन को शांति और आत्मा को नई ऊर्जा प्रदान करती है। आइए गुरु की वाणी की सदा से अपने अंतर्मन को आलोकित करते हैं।

संतोष, श्रद्धा और विश्वास से किया गया उसका स्मरण हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए कार्यक्रम के अंत में माँ संतोषी की महिमा का गुणगान करते हुए सुनते हैं ये श्रद्धामयी भजन।

इन्हीं भक्तिमय स्वरों के साथ आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भक्तिमय कार्यक्रम वंदना। प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। अब सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। स्वर है शोभना राव और रविंद्र साठे का। संगीत निर्देशन किया है सतीश भाटिया ने।

अपनी चतुरंगिणी सेना तथा अयोध्या से आए पुरजनों सहित भरत श्री राम सीता तथा लक्ष्मण की पर्णकुटी के मार्ग पर पैदल अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग में मिलने वाले कोल, भील, वानप्रस्थियों तथा विरक्त सन्यासियों से उनका एक ही प्रश्न है, श्री राम का निवास किस वन में है। मार्ग में एक रात्रि के विश्राम के बाद भरत अपने समाज सहित कामदगिरी पर्वत के समीप पहुंचे।

0: शोभना राव और रविंद्र साठी के स्वर में श्री रामचरित मानस गान से आपने अभी आज का प्रसंग सुना। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। समय सुबह के 6:40। अब सुनिएगा आज का चिंतन।
1: जीवन की त्रासदी अंधकार से डरना नहीं है, बल्कि प्रकाश से परहेज करने से उत्पन्न होती है। मुझे सुनने और समझने के लिए आंखें बंद कीजिए, जिससे दुनिया की रंगीनी की ओर से आपका मन हट जाए। आप अपने मन

0: निश्चल कीजिए जिससे आपका दिमाग चारों ओर दौड़ना बंद कर दे, उसकी ज्ञानेंद्रियों के साथ उसका संपर्क समाप्त हो जाए और उसके भीतर होने वाली उथल पुथल रुक जाए। अब आप सुनिए मैं क्या कहती हूं। किसी भी वस्तु के निर्माण में काफी श्रम होता है और समय भी लगता है। आपके शरीर के निर्माण में अगणित वर्ष लगे हैं, प्रकृति को अनेकानेक प्रयोग करने पड़े हैं। आप प्रकृति में उपलब्ध चट्टानों, अवशेषों आदि के विकास में लिखी कहानी को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। उसकी भाषा समझने पर आपको मालूम होगा कि एक एक वस्तु के निर्माण के लिए प्रकृति को अनेकानेक प्रयोग करने पड़े हैं। डार्विन की विकास प्रक्रिया में आने वाले प्राणियों का निर्माण प्रकृति ने एक एक कोशिका को साज संवार कर किया है। आपका शरीर तो इस निर्माण की प्रायः अंतिम परिणति है। इसकी मशीनरी का एक एक अवयव निर्माण की अद्भुत प्रक्रिया का परिचायक है। जो भी हो, इस दुर्लभ शरीर को आप प्रकृति की बहुत बड़ी देन या नियामत समझिए। इसने आपको कितना अच्छा इंसान बना दिया। यदि इसके अनुरूप आचरण करोगे तो लोग स्वयं आपके प्रति आकर्षित होंगे और इस प्रकार आप मानव जाति में सद्भावना और भ्रातृत्व का वातावरण उत्पन्न करने में सहायक बनोगे। आप और आपके सहयोगी ये अनुभव करेंगे कि हमारे किसी धर्म संस्थापक ने ये नहीं कहा कि यही एकमात्र धर्म है। वे तो यही कहते आए हैं कि ये भी एक मार्ग या धर्म है। मेरी दृष्टि में सब पंथ या धर्म समान हैं। मेरे नियम में किसी प्रकार के पक्षपात या पूर्वाग्रह के लिए स्थान नहीं है। आपने भी पढ़ा सुना होगा कि सब धर्मों की नैतिक शिक्षाएं समान हैं। आप परमात्मा के वास्तविक रूप को प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, मुझे तभी संतोष प्राप्त होगा। मैं समझूंगी कि मेरी बात सही ढंग से सुनी और समझी गई। तुम ही एक ऐसे प्राणी हो जिसको मनमाने ढंग से प्रयोग करने के लिए दो हाथ दिए गए हैं और साथ ही परम तत्व के अंश विवेक का वरदान प्राप्त है। विकास क्रम में अपनी इस विशिष्ट स्थिति का अनुभव करो और कम विकसित प्राणियों का मार्गदर्शन करो। तुम्हारा धर्म मानव धर्म है। इसकी उपलब्धि के लिए देश कालानुसार अनेक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। इन्हें पंथ, मजहब, संप्रदाय, मिल्लत आदि नाम दिए गए हैं। ये सब समान रूप से उपयोगी और माननीय हैं, परंतु अधिकांश लोग अपने मार्ग को ही धर्म कहते हैं और उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। प्रत्येक धर्म से ज्ञान ग्रहण करने का प्रयत्न करो। प्रत्येक धर्म शरीर, मन और आत्मा के मध्य सेतु का निर्माण करता है। कोई भी धर्म दीवार नहीं बनता। तुम देखोगे कि ऐसा करके तुम अपने धर्म को अधिक श्रेष्ठ बना सकोगे। मैं दोहराना चाहती हूं कि मेरी आवाज, विवेक का निर्णय, अंतकरण का निर्देश तुम तभी सुन सकोगे जब तुम्हारा मन निश्चल होगा और तुम्हारा मस्तिष्क समस्त उहापोह से मुक्त होगा। ये तो तुमको विदित ही है कि बल्ब में प्रकाश तब होता है जब उसमें पूर्ण शून्य की स्थिति होती है। जर्मनी के दार्शनिक कवि गेटे की बात याद रखो। जब तुम सही काम करते हो तब मैं चुप रहती हूँ, परंतु जब तुम कोई गलत काम करते हो तब मैं तुम्हारे मन को बराबर कचोटती रहती हूँ और तुम बेचैन बने रहते हो।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे थे आज का चिंतन। सवेरे के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गांधी कथा की भाग संख्या 17।

0: होटल में पहुंचने पर यह मालूम हुआ कि कल रविवार होने की वजह से सोमवार तक ग्रिंडले के यहां से सामान न आएगा तो मैं परेशान हो उठा। 7-8 बजे के लगभग डॉक्टर मेहता आए। उन्होंने प्रेमपूर्ण विनोद किया। मैंने अनजाने उनकी रेशमी रोएदार टोपी देखने को उठा ली और उस पर उल्टा हाथ फेर दिया। इससे टोपी के रोएं सीधे हो गए। डॉक्टर मेहता ने देखा, तुरंत मुझे रोका, पर अपराध तो हो ही चुका था। उनके रोकने का इतना ही नतीजा हुआ कि फिर कभी ये ना हो। यहां से यूरोपीय रीति रिवाज की मेरी शिक्षा का श्री गणेश समझना चाहिए। डॉक्टर मेहता हंसते हंसते बहुत सी बातें समझाते जाते थे। किसी की चीज को नहीं छूना चाहिए। किसी से जान पहचान होने पर हिंदुस्तान में यूं ही जो सवाल किए जा सकते हैं वैसे यहां नहीं किए जा सकते। बातें करते हुए जोर से नहीं बोला जाता। हिंदुस्तान में अंग्रेजी से बातें करते हुए सर कहने का जो रिवाज है वो अनावश्यक है। सर तो नौकर अपने मालिक को या अपने से बड़े अधिकारियों को कहता है। फिर उन्होंने होटल में रहने के खर्च पर भी बातें की और कहा कि किसी निजी कुटुंब में रहना ठीक होगा। इस विषय में अधिक विचार सोमवार तक स्थगित रहा। कितनी ही सलाहें देकर डॉक्टर मेहता विदा हुए। होटल में तो हम दोनों को यही जान पड़ा कि हम बुरी जगह आ फंसे। वो महंगा भी था। माल्टा से एक सिंधी सज्जन भी जहाज पर सवार हुए थे। उनसे मजूमदार की अच्छी पट गई थी। ये सिंधी सज्जन लंदन के अच्छे जानकार थे। उन्होंने हमारे लिए 2 कमरे किराए पर ले देने का भार उठाया। हमने स्वीकृति दी और सोमवार को सामान मिलते ही बिल चुकाकर सिंधी भाई के ठीक किए हुए कमरों में चले गए। मुझे याद है कि मेरे हिस्से का होटल का बिल 3 पाउंड के लगभग हुआ था। मैं तो देखकर भौचक रह गया। 3 पाउंड चुकाकर भी भूखा रहा। होटल का कोई खाना न रुचा। एक चीज ली नहीं रुची, दूसरी ली, पर पैसे तो दोनों के ही चुकाने चाहिए। कह सकता हूं कि अभी बंबई से आए हुए खाने के सामान पर ही मेरे दिन कट रहे थे। इस कमरे में भी मैं तो बहुत परेशान हाल रहा। देश बहुत याद आता था। माता का प्रेम आंखों के सामने नाचा करता। रात हुई कि रोना शुरू हुआ। घर की अनेक प्रकार की स्मृतियों की चढ़ाई के कारण नींद कहां से आ पाती। ये दुख गाथा किसी से कह भी नहीं सकता था। कहने से फायदा भी क्या था। मैं स्वयं नहीं जानता था कि क्या करने से मेरा चित्त शांत होगा। मनुष्य विचित्र, रहन सहन विचित्र, घर भी विचित्र। घरों में रहने की रीति नीति भी वैसी ही विचित्र। क्या बोलने और क्या करने में यहां के शिष्टाचार का भंग होता है इसका भी बहुत कम पता था। जो चीजें खा सकता वे रूखी और नीरस लगती थी। इससे मेरी दशा सरोते में सुपारी किसी हो गई। विलायत रुच नहीं रहा था और देश को लौटा नहीं जा सकता था। विलायत आया था तो 3 साल पूरे करने ही थे।
1: अब सुनिए ये भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी कथा की भाग संख्या 17। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.48 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6:55 होने को है, कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब स्थलानां यात्रायै निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमंत्री हरियाणायाः जिंद रेल स्थानके जिंद सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेलयानाय हरित पताकां प्रदर्शयिष्यति। अनेनैव सह श्रीमोदी जिंद नगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे 7,14,000 कोटि रूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। प्रथमस्य हाइड्रोजन संचालित रेलयानस्य अयं शुभारंभः रेलक्षेत्रे स्वच्छ सतत विकासाय कश्चन महत्वपूर्णः पदक्षेपो वर्तते। जिंदनगरात् प्रधानमंत्री चंडीगढ़ं प्रति प्रस्थास्यति, यत्र अपराह्ने पादोनद्विवादने सह 7,14,000 रूप्यतोप्यधिकानां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। अत्रावसरे सः जनसभामपि संबोधयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री पंजाबस्य जालंधर नगरं प्रति गमिष्यति, यत्र सः 7,75,000 रूप्यकाणां नैकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कतर देशस्य

0: या अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन सह दूरभाषेण संवादम अकरोत् अथ फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधनं प्रति शोक संवेदनाः प्रेषितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् कतर देशस्य फादर अमीर इत्येतस्य स्थायी रिक्तम् भारत कतर देशयोः मध्ये सामरिक सहभागितां सुदृढां कर्तुं अग्रेपि मार्गदर्शनं करिष्यति। असौ भारतस्य प्रति तस्य अतिस्नेहं कतर देशे स्थित भारतीय समुदायं प्रति तस्य आत्मीय भावं भारत कतर संबंधान सुदृढीकर्तुं तस्य दृढ प्रतिबद्धतां च स्मृतवान्। जुलाई मासस्य विंशति दिनांके आरभ्यमाणात् संसदः प्रावृत सत्रात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य नेतृत्वयुता एनडीए इति संयुतिः अद्य सहयोगि दलानां वरिष्ठमन्त्रिभिः सह उपवेशनं करिष्यति। अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः करिष्यति। अस्मिन्नुपवेशने प्रावृत सत्राय एनडीए संयुतेः संसदीय कार्ययोजनायाः अन्तिमरूपं निर्धारयिष्यते। अपि च संयुतेः विधायी कार्यसूच्याः सहयोगि दलानां परस्पर समन्वयस्य अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्ण प्रतिपक्षाय एकीकृत कार्ययोजनायाः विषये विचार विमर्शः भविष्यति। राष्ट्रिय परीक्षा संस्थयास्य वर्षस्य नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः। स्नातक स्तरीय चिकित्सा दन्त चिकित्सा आयुष सहैव तत्सम्बद्ध पाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय एकादश लक्षाधिकाः अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन्। सर्वेषाम् अभ्यर्थिनाम् अंकपत्राणि तावत् आधिकारिक संकेतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्यारभ्य त्रिदिवसीय यात्रायै पश्चिम बंगाल राज्यं गमिष्यति। सूत्रानुसारं यात्रावधौ सः सीमा सुरक्षायाः प्रशासनस्य विधि व्यवस्थायाः विकासात्मक कार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति। श्वः श्रीशाह सिलीगुड़ी क्षेत्रस्य जुमागाछिति सीम्नि गत्वा सीमा सुरक्षा बलस्य सैनिकैः साकं सम्भाषणमपि विधास्यति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां त्रि एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन गतरात्रौ कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे भारतदलं चतुर्स्तोभैः पराजितम्। जो रूट उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। अधुना उभे दले रविवासरे लण्डन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे आयोज्यमाने अन्तिमायां निर्णायक श्रृंखलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर दो या तीन कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2,600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3,200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: जींद के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर

0: सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमा खाच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। खेलों में हॉकी इंडिया देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इस पहल का उद्देश्य कोचों और तकनीकी अधिकारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना तथा देश में हॉकी शिक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इंग्लैंड ने दूसरे 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC Under-17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया, इराक के साथ रखा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।
2: अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे आसान तरीका है, लेकिन बहुत से लोगों को ये
1: सुबह के 7:05 हो रहे हैं। अब सुनिएगा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आज की जानकारी का विषय है खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।
2: खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे आसान तरीका है, लेकिन बहुत से लोगों को ये काम भी बहुत मुश्किल लगता है। आप भी खुश रह सकते हैं, जरूरत है जीवन शैली में थोड़े से परिवर्तन की। वैज्ञानिकों के अनुसार रोजाना अपने को नियमित ढर्रे से ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि खुश रहना ही अच्छे स्वास्थ्य का सबसे आसान तरीका है। प्रोफेसर डेविड बार्बर्टन के अनुसार आनंद और स्वास्थ्य में सीधा संबंध है। हंसने या प्रिय संगीत सुनने के 10 मिनट बाद इम्यूनोग्लोबुलिन ए की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता वाले तत्व होते हैं और ये असर 2 दिन तक रहता है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि हम तनावों में इतने मशगूल रहते हैं कि आनंद पाने के महत्व को न समझ पाते हैं और न ही उसको अधिक समय दे पाते हैं, परंतु आनंद और खुशी प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगाना पड़ता। कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो आपको हर्ष और उत्साह से भर देते हैं, अक्सर ही ये क्षण स्वच्छंद होते हैं, पर कुछ पल ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप सोच समझ कर अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं। ये क्षण हर एक के लिए अलग होते हैं, पर इनमें जादुई सूर्यास्त

0: निहारने से लेकर संगीत, साहित्य या कला की सराहना जैसे अनुभव भी शामिल होते हैं। जीवन की उन छोटी छोटी बातों की सराहना करने का प्रयत्न कीजिए जिनकी ओर व्यस्तता के कारण हम ध्यान नहीं दे पाते, जैसे मकड़ी का कुशलता से जाला बुनना, बगीचे के फूलों की मीठी महक, घर के पास के मंदिर की बजती घंटियां, आपके बच्चों का सुबह सुबह दबे पांव आपके बिस्तर में घुसने का अंदाज। आम धारणा के विपरीत कवि शारीरिक या मानसिक वेदना से पीड़ित नहीं होता। अध्ययन दिखाते हैं कि कवि अधिकतर दीर्घायु होते हैं और बाकी सबसे कहीं ज्यादा खुश रहते हैं, इसलिए अपने विचार लिख डालिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो बातें आपके मन में बोझ बनकर घूम रही हैं, उनको लिख डालने से आपके शरीर के अंदर का शोभ, दुख और ग्लानी शब्दों के रूप में बाहर आ जाती है और फिर आप जिंदगी के अच्छे पहलू की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। ये आवश्यक नहीं कि आप रोजाना डायरी लिखें, ये काफी है कि जब मन और बहुत ज्यादा बोझ तले दबा रहा हो तभी आप अपने सारे विचार लिख डालें और हल्का महसूस करें। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग प्रसन्न हैं, वे दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते हैं और दूसरों की मदद करने से उन्हें और भी प्रसन्नता मिलती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि घंटों तक आप स्वयं सेवक ही बने रहें। हालांकि अगर आपके पास अतिरिक्त समय है तो ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। दूसरों को खुशी देना बहुत ज्यादा आसान है, जैसे किसी की प्रशंसा करना या अकेलेपन की जिंदगी बिता रहे पड़ोसी से बातें करने के लिए रुक जाना। जब आप महसूस करती हैं कि आपकी बातों से वो खुश हुआ है या उसका जी हल्का हुआ है तो आपको भी आंतरिक प्रसन्नता का एहसास होता है। मनपसंद गाना या संगीत सुनकर भी आपका मन पल भर में ही बदल जाता है, पर हम संगीत को बजाकर दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। हेडफोन खरीद लें और ध्यान से बैठकर संगीत सुनें। अगर आपको ये सुनकर खुशी होती है तो वो आपके समय का सदुपयोग है। कहते हैं कि हंसी सबसे अच्छी औषधि होती है और डॉक्टर मानते हैं कि ये मात्र कहावत नहीं है। नॉर्मन काजिम्स एक अमेरिकी प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन को स्पॉन्डिलाइटिस जैसी पीड़ादायक बीमारी थी। उन्होंने पाया कि 10 मिनट तक खुलकर हंसने से उनका दर्द इतना कम हो गया है वो थोड़ी देर सो सकते हैं। खुशी का अर्थ है आप भीतर तक अपने से खुश हों, और अगर आपके भीतर ही भीतर किसी कारणवश कड़वाहट भर गई हो तो ये असंभव है। अगर आप स्थिति में सुधार नहीं ला सकते तो आप अपने अंदर की सारी कड़वाहट कागज पर लिख डालें। वैर भाव द्वेष की आग में जलते रहने के लिए जीवन बहुत छोटा है। अगर आपका किसी मित्र या परिवार के सदस्य से मनमुटाव हो गया हो तो संबंधों की दरार को ठीक करने के लिए पहला कदम आप ही उठा लें।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में खुश रहिए स्वस्थ रहिए विषय पर आपने अभी जानकारी ली। अब समय हो चला है कार्यक्रम खेती की बातें का, जिसमें आज हमारे किसान भाई वर्षा जल संचयन और वाटर रिचार्ज विषय पर जानकारी लेंगे। तो लीजिए सुनिएगा कार्यक्रम खेती की बातें।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जुलाई का महीना चल रहा है और बरसात का समय भी शुरू हो गया है और इस समय हर जगह हमारे खेतों में पानी भरा रहता है और पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो आज इसी के संबंध में एक जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी का विषय है वर्षा जल संचयन और वाटर रिचार्ज। किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ खेती और पेयजल की उपलब्धता का मुख्य आधार वर्षा है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, अनियोजित भूजल दोहन, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। किसान भाइयों, कई क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसे समय में वर्षा जल संचयन और वाटर रिचार्ज जल संरक्षण के सबसे प्रभावी उपाय हैं। किसान भाइयों, यदि वर्षा के जल का सही तरीके से संग्रह और भूजल में पुनर्भरण किया जाए तो भविष्य में जल संकट को काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि वर्षा के पानी को व्यर्थ बहने से रोककर उसे किसी टैंक, तालाब, कुएं या अन्य संरचना में एकत्र करना और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करना। दूसरी ओर वाटर रिचार्ज का अर्थ है वर्षा के जल को भूमि के भीतर पहुंचाकर भूजल स्तर को बढ़ाना। यह प्रक्रिया प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों तरीकों से की जा सकती है। किसान भाइयों, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के लिए खेत, तालाब, मेड़बंदी, चेक डैम, परकुलेशन टैंक, पिट, रिचार्ज कुएं और पुराने तालाबों का संरक्षण जैसे उपाय अत्यंत उपयोगी हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में मकानों की छतों पर पाइप के माध्यम से वर्षा जल को भूमिगत टैंक या रिचार्ज पिट में पहुंचाया जाता है। इससे भूजल स्तर बढ़ता है।

0: जल की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहती है। किसान भाइयों, कृषि क्षेत्र में वर्षा जल संचयन का विशेष महत्व है। खेती में मेड़बंदी करने से वर्षा का पानी खेत में ही रुकता है, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है और भूमि में नमी बनी रहती है। खेत तालाब में संचित पानी का उपयोग सूखे के समय सिंचाई के लिए किया जा सकता है। इससे किसानों की सिंचाई लागत घटती है और फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, वाटर रिचार्ज के लिए रिचार्ज पिट, रिचार्ज शॉप, सोखता गड्ढे, रिचार्ज कुएं और चेक डैम जैसी संरचनाएं बनाई जाती हैं। इन संरचनाओं के माध्यम से वर्षा का पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर पहुंचता है और भूजल भंडार को पुनर्भरित करता है। इससे हैंडपंप, कुएं और ट्यूबवेल लंबे समय तक पानी देते रहते हैं। वर्षा जल संचयन और वाटर रिचार्ज के अनेक लाभ हैं। इससे भूजल स्तर में सुधार होता है। दूसरा, पेयजल की उपलब्धता बढ़ती है। तीसरा, किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलता है। और यह भारी बारिश या तूफान के बाद स्थानीय नालों, धाराओं और नदियों के पानी के बहाव की गति को कम करता है, जिससे मिट्टी के कटाव की संभावना कम हो जाती है। और यह सड़कों, गलियों आदि में पानी के जमाव को भी कम करता है और जल जनित रोगों के प्रसार को भी रोकता है। और इसके साथ साथ यह ऊर्जा की खपत और खनन संबंधित आवश्यकताओं को कम करता है, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव पर नियंत्रण प्रदान करता है और मिट्टी का कटाव रुकता है और साथ साथ भूमि की उर्वरता भी बनी रहती है। इसके अलावा बिजली की बचत होती है, क्योंकि भूजल स्तर ऊपर आने से पानी निकलने में कम ऊर्जा लगती है। किसान भाइयों, आज के समय की बात करें तो कई राज्यों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूलों, सरकारी कार्यालयों, उद्योगों, नए भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। गांव में मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से तालाब, चेक डैम और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। इन प्रयासों से जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है। किसान भाइयों, जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। प्रत्येक परिवार अपने घर की छत से वर्षा जल संचयन की व्यवस्था कर सकता है। किसान अपने खेतों में मेड़बंदी, खेत, तालाब और जल संरक्षण के अन्य उपाय अपनाकर वर्षा जल का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। यदि हमारे किसान भाई जल संरक्षण का संकल्प लें तो भविष्य में जल संकट से काफी हद तक बचा जा सकता है। तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर बात ये निकल के आती है कि वर्षा जल संचयन और वाटर रिचार्ज वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यदि हम आज वर्षा जल को संचित और भूजल का पुनर्भरण करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को पर्याप्त और स्वच्छ जल मिल सकेगा। इसलिए हमें जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाकर जल है तो कल है के संदेश को जीवन में अपनाना चाहिए और जल को बचाना चाहिए। तो हमारे किसान भाई इन बातों को अमल में लाएंगे तो भैया वो लाभ जरूर कमाएंगे। तो किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। कल एक और नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: वर्षा जल संचयन और वाटर रिचार्ज, इस विषय पर अभी आपने जानकारी ली कार्यक्रम खेती की बातें में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:15 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी लखनऊ से अनुप्रसारित कार्यक्रम जिले की हलचल। इस कार्यक्रम में प्रातः 9:15 पर आज आप सुनेंगे प्रतापपुर और शाहजहांपुर के जिले की हलचल। प्रातः 10:30 पर समय रहेगा हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम जागरूक श्रोता का, जिसमें आज हम आपसे जल संचयन विषय पर बातचीत करेंगे। फिल्म संगीत का साप्ताहिक सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर, और फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम रात के हमसफर सुनिएगा रात 10:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में इफ्तिखार अहमद और साथियों की आवाज में कुछ नात आपको सुनवाई जाएंगी आज शाम 7:32 पर। संध्या 6:45 पर विविधा कार्यक्रम में वार्ताकार आशीष भारती की भारतीय संस्कृति में न्याय की अवधारणा विषय पर वार्ता सुनिएगा संध्या 6:45 पर। शाम 6:05 पर किसान भाइयों के कार्यक्रम कृषि जगत में मौन वंशों की देखभाल विषय पर चर्चा के

आप सुनेंगे गन्ना किसान भाइयों की गन्ना संबंधी समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो गन्ना किसान। युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी में आज की सौगातें होंगी बुझो तो जानी, कुछ खास है आज ये शाम गजलों के नाम, आपका सितारा कहानी के उस पार और बूस्टर्स समय वही संध्या 5:15 पर। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में शिक्षा में सुधारों के लिए सरकारी प्रयास, अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास योजना और प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना की जानकारी लीजिएगा शाम 5:00। तो श्रोताओं, ये तो थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। प्रातः के 7:18 होने के हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: संकल्प ये ले कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव ना रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़ी वादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को आज रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ के ऐशबाग सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी डिजिटल सेवाओं और नवाचार का केंद्र बनाने के लक्ष्य पर दिया जोर। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने घोषित किए नीट यूजी 2026 के परीक्षा परिणाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
3: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है।

0: यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश से जुड़ी परियोजना भी शामिल है।
2: प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,570 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन स्टेशन सहित 20 राज्यों में 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा लगभग 24 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से ऐशबाग जंक्शन स्टेशन का अपग्रेडेशन किया गया है। इस आधुनिकीकरण से हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों की बैठने की क्षमता बढ़ाने, सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाने, वेटिंग हॉल को आधुनिक रूप देने सहित कई अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का एक नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
3: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी IT, डिजिटल सेवाओं और नवाचार केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नीति को बदलती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक व्यवहारिक, निवेशक अनुकूल और रोजगारोन्मुख बनाया जाए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता मामले में पुलिस ने कल एंटी करप्शन कोर्ट में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की एक हफ्ते की कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन दिया है। रिमांड पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले विवेचक आशुतोष तिवारी ने कोर्ट से अनुमति लेकर कल सुबह ही दोनों से लगभग एक घंटे की पूछताछ भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कल वाराणसी में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत आयोजित पहले पंच सम्मेलन में हिस्सा लिया।
4: सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लिया और ग्रामीण विकास, सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया। सम्मेलन में पंचायतों की संस्थागत तैयारी, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम स्तर पर पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: कार्यक्रम को संबोधित करते उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत पारदर्शिता के साथ पात्र व्यक्ति को काम भी मिलेगा और गांव का विकास भी होगा।
5: विकसित भारत जी रामजी है, इसमें PM गति शक्ति के नाम का एक पोर्टल है, जो सड़क पहले लोग बनाते थे गांव की कच्ची बनावे चाहे पक्की बनावे, जो तालाब पहले खोदते थे चाहे वह खोद के फिर से उसको भरे और फिर खोदने का काम करें, अब यह डुप्लीकेसी नहीं होगी। PM गति शक्ति का मतलब है कि अगर आपने गांव के हर घर तक आप आवागमन और

0: की काशी की अस्थायी व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसकी कार्य योजना आपको बनाना पड़े।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और विकास परक बनाना है।
2: विकसित भारत जी राम जी जो 1 जुलाई से पूरे देश में एक साथ लागू हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब इसकी कल्पना की गई तो सिर्फ ये कल्पना नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना था कि हमारा जो श्रमिक है 12 करोड़ से ऊपर के लोग इस देश में 1 घंटा भी बिना काम के वो न रहे। ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है, पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अपने गांव को कैसे विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए आप कितना खड़े हैं ये आपके ऊपर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के परीक्षा परिणाम बीती रात घोषित कर दिए। परीक्षा में 11,21,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। NTA के अनुसार सफल अभ्यर्थियों में 58% से अधिक महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। 21 जून को आयोजित इस परीक्षा में करीब 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाराबंकी में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका है। केंद्रीय जल आयोग के जूनियर इंजीनियर आकाश प्रताप ने बताया कि प्रशासन जलस्तर पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
3: पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। पिछले एक दिन में जो है लगभग 40 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है और अगर बारिश ऊपरी क्षेत्रों में लगातार होती रहेगी तो जलस्तर इसी तरह से बढ़ेगा। वार्निंग लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको जलस्तर की सूचना दे दी जाएगी।
1: मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी जनपदों में बौछारें पड़ने और पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को आज रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ के ऐशबाग सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी IT, डिजिटल सेवाओं और नवाचार का केंद्र बनाने के लक्ष्य पर दिया जोर। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने घोषित किए नीट UG 2026 के परीक्षा परिणाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
5: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
6: ये आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर।

रात की खामोशी के बाद सूरज की किरणें, चिड़ियों की चहचहाट के सुर हवाओं में घुलकर एक नए दिन का आगाज करते हैं। तब हमारा मन भी कुछ नया जानने और सुनने के लिए उमंग से भर जाता है और दिन की शुरुआत नई नई जानकारियों, रोचक बातों और मधुर संगीत से की जाए तो फिर पूरा दिन अपने आप ही खुशनुमा हो जाता है। ऐसे ही खुशनुमा और मुस्कुराती सुबह में मैं फरीना आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज की सुबह की ये सुहानी यात्रा शुरू करते हैं इमोजी की रोचक कहानी से। वो इसलिए क्योंकि आज पूरी दुनिया विश्व इमोजी दिवस मना रही है। 17 जुलाई को इस दिवस को मनाने के पीछे एक दिलचस्प और खास वजह है। आपने अपने मोबाइल और कंप्यूटर में कैलेंडर वाली इमोजी तो देखी ही होगी, उस पर कौन सी डेट होती है? आप अभी अपने फोन या कंप्यूटर पर चेक भी कर सकते हैं, उस पर 17 जुलाई की ही डेट होती है। चेक किया है ना, 17 जुलाई की डेट उस पर लिखी होती है। श्रोताओं, यूं तो इमोजी की शुरुआत 1999 में जापान के डिजाइनर शिगेटाका कुरिता ने की थी, लेकिन इमोजी दिवस मनाने की शुरुआत 17 जुलाई 2014 में इमोजीपीडिया के संस्थापक जेरेमी बर्ज ने की। उन्होंने 17 जुलाई की डेट साल 2002 में एप्पल के आईफोन पर दी गई कैलेंडर इमोजी के आधार पर चुनी थी। आज चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया का मंच, ये इमोजी हमारी बात को आसानी से बिना लिखे ही एक दूसरे से कह देती है। मुस्कुराता हुआ चेहरा, कभी ताली, कभी दिल, कभी हंसी ठहाके वाले ये छोटे छोटे से चित्र हमारी भावनाओं को खूबसूरती से बयां कर देते हैं। श्रोता, हम तो आपसे यही कहेंगे कि मुस्कुराहट और खुशी बांटने का माध्यम शब्द हो या इमोजी, मकसद सिर्फ दिलों को जोड़ना ही होना चाहिए। चलिए कार्यक्रम में हम अगले विषय को जोड़ते हैं। श्रोताओं, समाज की असली खूबसूरती तभी होती है जहां भावनाओं के साथ साथ न्याय व्यवस्था और समानता भी उतनी ही खूबसूरती से मौजूद हो। न्याय व्यवस्था हर सभ्य समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले, सबके लिए एक समान कानून हो, तभी जनता का विश्वास कानून में बना रहता है। इसी सोच को सार्थक करते हुए 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाने के बाद आईसीसी की स्थापना की गई, जिसकी स्मृति में हम हर साल 17 जुलाई को इस दिवस को मनाते आ रहे हैं। श्रोताओं, ये दिवस हमें याद दिलाता है कि किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब न्याय बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचे। श्रोताओं, न्याय केवल अदालतों में सुनाए जाने वाला कोई फैसला नहीं है, बल्कि ये तो हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हमारे संस्कारों में भी दिखना चाहिए। यही इस दिवस का सबसे बड़ा मूल संदेश है। और अब हम भी आपकी भावनाओं के साथ न्याय करते हैं और आपको सुनवाते हैं न्याय की बात करता ये खूबसूरत गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और समय हो चला है 7:41 का। चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट यानी तिथि विशेष की तरफ।

श्रोताओ, आ गए हैं हम उस पड़ाव पर जहां हम पलटते हैं इतिहास के पन्ने, जहां होती हैं कुछ घटनाएं जिन्होंने देश दुनिया को नई दिशाएं दी, कुछ ऐसे नाम जिन्हें आज

सम्मान से याद किया जाता है और कुछ ऐसी हस्तियां जिनका आज जन्मदिन है। तो बात करते हैं 17 जुलाई के तिथि विशेष की और सबसे पहले आज से जुड़ी घटनाओं की हम आपसे चर्चा करते हैं। श्रोताओं, साल 1955 में आज ही की तिथि में कैलिफोर्निया के अनाहेम में डिज्नीलैंड के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए थे। वॉल्ट डिज्नी के सपनों से सजी इस अनोखी दुनिया ने बच्चों ही नहीं बड़ों की कल्पनाओं को भी नए पंख दिए थे। परिकथाओं के पात्र, रोमांचक झूले और रंग बिरंगे आकर्षण हमेशा ही डिज्नीलैंड की खूबसूरती रहे हैं और पर्यटकों को अपनी ओर हमेशा आकर्षित करते रहे हैं। साल 1975 में 17 जुलाई को ही अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के सोयुज अंतरिक्ष यानों का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। शीत युद्ध के दौर में ये विज्ञान और सहयोग का एक अनोखा प्रतीक माना जाता है। 17 जुलाई 1948 को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और अहम कदम उठाया गया था। इस तिथि को ही महिलाओं को IAS और IPS सहित सभी सरकारी सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने का अधिकार मिला था। इस ऐतिहासिक फैसले ने महिलाओं की सफलता की नई नई इबारतें लिखी। चेन्नई दक्षिण भारत का एक प्रमुख महानगर है जिसको पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चेन्नई की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अस्मिता को सम्मान देते हुए 17 जुलाई 1996 को इसका आधिकारिक नाम मद्रास से बदलकर चेन्नई किया गया था। अब बात करते हैं उन हस्तियों की जिन्हें हम आज भी सम्मान से याद करते हैं। भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार और गायिका कानन देवी ने अपने अभिनय और मधुर गायन कला से भारतीय फिल्म जगत को नई नई ऊंचाइयां दी। वहीं दूसरी तरफ मराठी और हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री और गायिका शांता हुबलीकर भी अपनी सुरीली आवाज और सशक्त अदाकारी के लिए हमेशा ही याद की जाती हैं। श्रोताओं, संयोग से ये दोनों ही तारिकाएं साल 1992 में आज ही की तिथि यानी 17 जुलाई को हम सबकी आंखें नम कर गई थी। प्रख्यात गणितज्ञ प्रोफेसर C.S. शेषाद्री को गणित के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए सदैव ही याद किया जाता है। 17 जुलाई 2020 को आप हमेशा हमेशा के लिए हमारी यादों में बस गए। अब बात करते हैं आज के दिन जन्म लेने वाली मशहूर हस्तियों के बारे में। भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता और सांसद रवि किशन आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। रवि किशन अपनी सहज अदाकारी और अलग पहचान के कारण काफी लोकप्रिय हैं। साल 1959 में 17 जुलाई को प्रसिद्ध अभिनेत्री जरीना वहाब का भी जन्म हुआ था। चिच्चोर और घरोंदा जैसी फिल्मों में खूबसूरत अभिनय करने वाली जरीना वहाब हाल ही में आई फिल्म तीसरी बेगम में नजर आई हैं। अपनी मधुर धुनों से हिंदी और मराठी सिनेमा को समृद्ध करने वाले साल 1919 में जन्मे सुप्रसिद्ध संगीतकार स्नेहिल भटकर को 17 जुलाई को उनके जन्म दिवस पर हमेशा ही स्नेह के साथ याद किया जाता है। 17 जुलाई 1956 को ही हिंदी सिनेमा के सफल निर्माता और निर्देशक और पटकथा लेखक राजकुमार संतोषी का भी जन्मदिन है। अपनी दमदार कहानियों और प्रभावशाली निर्देशन में बनी घायल, दामिनी, घातक, अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों से आपने मनोरंजन के साथ साथ समाज को सार्थक संदेश भी दिए हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सुनवाते हैं उनकी ही ब्लॉकबस्टर फिल्म दामिनी का ये खूबसूरत गीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओ, तिथि विशेष में सुनहरे पन्नों को पलटने के बाद अब रुख करते हैं आज की ओर और जान लेते हैं कि देश दुनिया में क्या है चर्चा का विषय और किन खबरों पर टिकी है सबकी नजर, यानी क्या है आज की ताजा खबर।
3: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।
2: जी हाँ श्रोताओ, अब डाल लेते हैं

नजर आज के अखबारों पर। दैनिक जागरण लिखता है, फाइनल में स्पेन से टक्कर लेने को अर्जेंटीना तैयार। फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल के लिए मन सज चुका है। गत चैंपियन अर्जेंटीना और 2010 की चैंपियन स्पेन के बीच रविवार रात 12:30 पर न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आगे दैनिक जागरण लिखता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विषय की परीक्षा अब 19 अगस्त को होगी। वर्ष 2022 की विज्ञापन संख्या 51 के बीएड विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 28 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा स्थगित करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब नई तिथि 19 अगस्त घोषित कर दी है। आगे दैनिक जागरण लिखता है, रघुराम राजन समेत 3 दिग्गजों को पड़ी जिम्मेदारी। अमेरिका ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और 2 अन्य भारतीयों को संघीय सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। राजन अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट की समीक्षा में मदद के लिए बनाए गए कार्यबल का हिस्सा होंगे। वहीं दिल्ली में जन्मे अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेटी डेटा टास्क फोर्स का सह नेतृत्व करेंगे। अब खबर हिंदुस्तान से, दुनिया की सबसे लंबी होगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी आज हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करने वाले हैं। पूरी तरह स्वदेश निर्मित यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी। आगे हिंदुस्तान लिखता है, चंद्रमा के नजदीक दिखेगा सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। आज 17 जुलाई सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में दुनिया का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र चंद्रमा करीब नजर आएंगे। रेलवे स्टेशन के लोकार्पण की आ गई है घड़ी। भारतीय रेल अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तर भारत रेलवे के मुरादाबाद मंडल में आधुनिक सुविधाओं से लैस बहुप्रतीक्षित धामपुर रेलवे स्टेशन के लोकार्पण की घड़ी आज आ गई है। आज दोपहर 2:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्विकसित धामपुर रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। अब खबर अमर उजाला से, आरसीटीसी की नई वेबसाइट शुरू। रेल मंत्रालय ने रेलवे टिकट बुकिंग को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की वेबसाइट का एक नया वर्जन जारी किया। आयोग ने माना टीजीटी परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर थे 29 प्रश्न। इलाहाबाद हाईकोर्ट के टीजीटी अंग्रेजी विषय की भर्ती परीक्षा के विवादित प्रश्नों के मामले में उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि विशेषज्ञ समिति ने माना 29 प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर से लिया गया था। और ये अंतिम खबर भी अमर उजाला से है, सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार यानी आज वर्धमान कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और श्रोताओं, इसके साथ साथ ही अब चलते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की तरफ और सुनवाते हैं आपको आशा भोसले की आवाज में ये खूबसूरत गीत।

श्रोता, उम्मीद है जानकारी और संगीत से सजी आज की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द आपसे होगी मुलाकात कुछ नई और जानकारियों के साथ। तब तक हमें दीजिएगा अनुमति। जब उठा

0: अभी आप सुन रहे थे जानकारी, मनोरंजन और रोचकता से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार प्रभात।
1: के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन 0 होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन

0: किरण रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहेब और श्री अनंतपुर साहेब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे News on AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर

0: स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगनम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रामायण का पाठ करते हैं। आज से करगिडगम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रामायण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने इख्तिरा और खुद रोजगार को बढ़ावा देने की खातिर 400 करोड़ रुपए मालियत की स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात के निकाद से मुतालिक एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। और मर्दों के क्रिकेट में दूसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। हरियाणा के अपने दौरे में वजीर आजम जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। साथ ही वो इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का आगाज रेलवे के शोबे में माहौलियात के लिए साजगार और पायदार मोबिलिटी इख्तियार करने की सम्त एक अहम कदम है। अंदरूनी मुल्क वसाइल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये रेलगाड़ी बनाई गई है, जिससे जदीद तर्ज की रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। इस तरह भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन पर मबनी रेलगाड़ियां चलती हैं। इन मुल्कों में जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत ने इस तकनीक की आजमाइश करने वाले कई दीगर मुल्कों पीछे छोड़ते हुए मशहूरा प्रोजेक्ट के जरिए एक नया आलमी पैमाना तय किया है। जर्मनी और चीन जैसे मुल्कों में चलने

0: खाली हाइड्रोजन ट्रेनों में आमतौर पर 2 या 3 रेल डिब्बे ही होते हैं, जबकि भारत ने 10 रेल डिब्बों वाली हाइड्रोजन रेलगाड़ी तैयार की है। इसका डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि इसमें तकरीबन 2600 मुसाफिर सफर कर सकते हैं, जो आलमी सतह पर दीगर हाइड्रोजन ट्रेनों के मुकाबले सबसे ज्यादा गुंजाइश वाली रेलगाड़ी है। इस हाइड्रोजन ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर का प्रोपल्शन निजाम नस्ब है। ये रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर मबनी है, जो रेलगाड़ी को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में तब्दील कर देती है। जीन से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीन से चंडीगढ़ जाएंगे, जहां वो दोपहर 2:45 के आसपास 4,700 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर एक जलसे से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर पंजाब के जालंधर का दौरा करेंगे, जहां वो 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेल और सड़क बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, मुसाफिरों की सहूलत में इजाफा करना और खित्ते में इक्तिसादी तरक्की को रफ्तार देना है। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
2: वज़ीर-ए-आज़म ज़ाती तौर पर जालंधर कैंट स्टेशन का इफ्तिताह करने के बाद 20 रियासतों के नए सिरे से तामीर किए गए 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। इन स्टेशनों को दुनिया के सबसे बड़े तामीर नौ प्रोग्राम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत नए सिरे से तैयार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह हफ्ते में 3 दिन चलने वाली पहली बराह रास्त एसी ट्रेन होगी, जो भारत के 2 अहम तरीन रूहानी और सकाफती मकामात अमृतसर और वाराणसी को मरबूत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म 30.9 किलोमीटर तवील 4 लेन वाले दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे समेत कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों से मिलने नीज, रेलवेज, हिफ्ज़ाने सेहत, सकाफत, कनेक्टिविटी, तालीम और दीगर शोबों से वाबस्ता मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल होने के मुंतजिर हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इन सभी प्रोजेक्टों से लोगों की जिंदगी, खासतौर पर मुल्क की युवा शक्ति पर बहुत मुस्बत असर पड़ेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से मगरबी बंगाल के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। जराये ने कहा है कि अपने दौरे के दौरान वो सरहदी सिक्योरिटी, हुक्मरानी, अमन कानून और तरक्की पर मरकूज प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। कल जनाब शाह 18वीं बटालियन सरहदी अगली चौकी पर बीएसएफ के एहलकारों से बातचीत करेंगे। वो बीएसएफ से वाबस्ता मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। दोपहर में वो मगरबी बंगाल में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक मीटिंग की सदारत करेंगे। जराये ने मजीद कहा है कि वजीर दाखिला रियासत में 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज का भी जायजा लेंगे। दिल्ली हुकूमत ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स के साथ स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 5 बरस तक इख्तिरा और खुद रोजगार के लिए रकम इस्तेमाल की जाएगी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पॉलिसी 11 रियासती यूनिवर्सिटियों, 13 हुकूमत के इमदाद याफ्ता कॉलेजों, आईटीआई और हुकूमत के पॉलिटेक्निक इदारों का इहाता करेगी। दिल्ली हुकूमत के स्कूलों के तलबा इन इदारों में पॉलिसी के फवायद हासिल कर सकते हैं। दिल्ली की वजीर आला के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि कामयाब तलबा को माली मदद फराहम की जाएगी। रियासती इंक्यूबेशन पॉलिसी निगरानी कमेटी पर मबनी एक पैनल तश्कील दिया जाएगा, जो पॉलिसी के निफाज पर नजर रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके वालिद अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर अपनी ताजियत का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि अमीर कतर के वालिद की मीरास एक ऐसे वक्त में जबकि वो अपनी कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं, दोनों मुमालिक की रहनुमाई जारी रखेगी। उन्होंने भारत के लिए उनकी गहरी उनसियत, कतर में भारतीय बिरादरी के लिए गर्मजोशी और भारत कतर ताल्लुकात के लिए उनके अज़्म को याद किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने

नीट यूजी 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, आयुष और मुतालिका प्रोग्रामों में दाखिले के लिए क्वालिफाई किया है। सभी उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर दस्तियाब हैं। एनटीए ने कहा है कि नतीजों का ऐलान बरवक्त कर दिया गया है ताकि मेडिकल दाखिले और काउंसलिंग के प्रोग्राम मुतासिर न हों। भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 5,440 मराकज पर कराए गए दोबारा इम्तिहान में मजमूई तौर पर तकरीबन 20 लाख उम्मीदवार बैठे थे। गुजरात के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान में कायम जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनके नाम बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कड़ीवाला, मोहम्मद पालनपुरी उर्फ खलील अयूब सुनसारा, शफिया रईस मुख्ती और मोहम्मद हसन करदिया बताए गए हैं। इन अफराद को पाटन जिले के सिद्धपुर तालुका में खडियाल गांव से पकड़ा गया। इस महीने के शुरू में जैश ए मोहम्मद के 8 मुबैना कारिंदों से पूछताछ के दौरान इन 5 मुलजिमों के नाम सामने आए थे। इन 5ों को महसियाना जिले में जुडिशल मैजिस्ट्रेट आरएम भाटिया के सामने पेश किया गया और 24 जुलाई तक एटीएस की तहवील में भेज दिया गया। सरकारी वकील पीआर दंतानी ने अदालत को बताया कि इनमें से एक मुलजिम ने टाइम बॉम्ब बनाने की कोशिश की थी और बम बनाने के काम आने वाला सामान और जैश ए मोहम्मद का लिटरेचर अभी बरामद नहीं किया गया है, इसीलिए हिरासत में लेकर मुलजिमों से पूछताछ करने की जरूरत है। गोवा हुकूमत ने कसीनो से मुतालिक जाब्तों में सख्ती करते हुए 21 बरस से कम उम्र के लोगों की कसीनो में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला ने इस नई पाबंदी के निफाज के सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में साहिल के नजदीक कसीनो के जहाजों के लिए लाइसेंस की अदायगी के सिलसिले में भी जाब्ते सख्त कर दिए गए हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत का नौजवानों के उमूर का महकमा आज से माय भारत नेशनल यूथ वॉलंटियर कन्वेंशन का इनेकाद करेगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में इस माह की 18 और 19 तारीख को 2 रोजा चिंतन शिविर होगा। वजारत ने कहा है कि एक के बाद एक 2 प्रोग्रामों का मकसद जमीनी सतह पर नौजवानों के राबतों को मुस्तहकम करना, इदारा जाती तालमेल को बढ़ाना और नौजवानों की क्यादत में मुल्क की तामीर के लिए मुस्तकबिल के लिए तैयार एक इको निज़ाम तश्कील देना है। दोनों तकारीब में नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और नौजवानों के उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा नितिन खड़से दीगर सीनियर अहदेदारान के साथ शिरकत करेंगे। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान के साथ अमन समझौता नाकाम हो जाने के तनाजुर में ईरान के खिलाफ लगातार 6ठी रात फौजी हमले किए। अमरीका की मरकजी कमान के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करना है, क्योंकि ईरान से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाजों को खतरा लाहिक है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि ईरान में अमरीका के हालिया हमलों में सिविलियन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है और इन हमलों में 3 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। केरलम में मलयालम दौर के कार्किडाकम महीने को रामायण महीने के तौर पर मनाया जाता है, जिसका आगाज आज से हो रहा है। इस मौके पर अकीदतमंद रूहानी कुव्वत और जहनी सुकून के लिए रामायण की तरफ मुतवज्जे होते हैं। कार्किडाकम का आज पहला दिन है और इसके साथ ही पूरी रियासत में कई घरों और मंदिरों में रामायण का पाठ रोजाना का मामूल बन जाता है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अरकान और आला ओहदेदारान के साथ आला सतह की मीटिंग की सदारत की और पवित्र श्री माता वैष्णो देवी जी मंदिर में चढ़ावे और अतियात वगैरह के बंदोबस्त के निजाम का जायजा लिया। इस सिलसिले में मुकम्मल शफाफियत, जवाबदेही और कामकाज से मुतालिक तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की खातिर एक जामे जायजा पेश किया गया। मर्दों के क्रिकेट में कल रात कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में दूसरे एक रोजा बैनुल अक्वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल की कायदत में भारतीय टीम 44 ओवर्स में महज 233 रन ही बना पाई।

0: के लिए श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए जबकि विराट कोहली ने 65 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने 99 रन स्कोर किए और वो नॉट आउट रहे, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अब दोनों टीमें लॉर्ड्स के तारीखी क्रिकेट मैदान पर इतवार के रोज इस सीरीज का आखिरी और फैसलाकुन मैच खेलेंगी। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इतवार की रात को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने जाएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आज हरियाणा दौरे से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम आज हरियाणा में मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2600 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के सरहदी सड़क तंजीम BRO की स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस से खिताब करने से मुतालिक खबर को भी अखबारों में नुमाया तौर पर शाये किया गया है। रोजनामा इनकलाब ने इस दौरान दिए गए उनके इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि जदीद हथियारों के बावजूद स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत बरकरार है। सड़कें, सुरंगें, हवाई अड्डे और बंदरगाहें फौजी मुहिमात और कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने इख्तिरा और खुद रोजगार को बढ़ावा देने की खातिर 400 करोड़ रुपए मालियत की स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात के निकात से मुतालिक एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। गुजरात ATS ने जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। और मर्दों के क्रिकेट में दूसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। पेश है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। गोल्डन हिट्स सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं कहते हैं, सच्चा रिश्ता वही होता है जहां अपनापन शब्दों और लफ्जों का मोहताज नहीं होता। ठीक वैसा ही रिश्ता हमारा और आपका है। बरसों से आप अपने प्यार, अपने मैसेजेस और पत्रों के साथ से आकाशवाणी के सफर को हमेशा ही महकाते आए हैं। सच तो यही है, आप हमारे लिए हैं और हम आपके लिए। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत इसी खूबसूरत एहसास के साथ करते हैं और सुनवाते हैं आपको इंतकाम फिल्म का ये सदाबहार गीत।

मोहम्मद रफी लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म इंतकाम में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, राजा मेहंदी अली खान के लिखे गीत, मदन मोहन के संगीत, फिल्म नीला आकाश में, जिसको आवाज दी है आशा भोसले और साथियों ने। श्रोताओं, आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे खूबसूरत और प्यारा रिश्ता मोहब्बत का होता है। मोहब्बत जो पराए को भी अपना बना देती है, और मोहब्बत में कभी भी कोई बात जबां से नहीं कही जाती, इसकी शुरुआत तो नजरों से होती है, और नजर वो बात कह देती है जिसे अल्फाज भी बयां नहीं कर पाते। आंखों की खामोश जबां दिल तक पहुंचने का सबसे खूबसूरत रास्ता होती है। ऐसी ही शरारत और नाज को दिलकश अदाओं में समेटे हुए है हमारे कार्यक्रम का ये अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

एक बार फिर से साथ हैं आप हमारे हमारे कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में। श्रोताओं, जिंदगी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि अगला पल अपने साथ क्या लेकर आएगा, ये कोई नहीं जानता, ना हम ना आप, बस जानता है तो सिर्फ वो। लेकिन हमारे दिल में उम्मीदें होती हैं, हल्की सी बेचैनी होती है और कभी कभी दिल में हजारों अनगिनत सवाल उठते हैं कि अगला पल क्या होगा। आइए सुनवाते हैं इन्हीं मीठी भावनाओं में पिरोया हुआ ये खूबसूरत गीत, जिसको आवाज दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता।

श्रुता, गीत ने तो कह दिया है कि अल्लाह जाने क्या हुआ गा आगे, लेकिन आगे क्या है, मतलब आपके लिए कौन सा गीत है ये हमें मालूम है। और आगे हम एक आपको बहुत खूबसूरत गीत सुनवाने वाले हैं जिससे आपके चेहरे पर खुशी छा जाएगी। जी हाँ, हम आपको सुनवा रहे हैं वक्त फिल्म का खूबसूरत गीत। और श्रुता, मुस्कुराहट की सबसे खूबसूरत बात तो यही होती है कि वो दिल को सुकून दे और आपके चेहरे पर रौनक ले आए। और आपके चेहरे पर जब खुशी छा जाएगी तो समझ लीजिएगा कि हमारे चेहरे पर भी खुशी आ जाएगी।

साहिर लुधियानवी के लिखे गीत, रवि के संगीत निर्देशन में आशा भोसले को वक्त फिल्म में सुनकर आपके चेहरे पर खुशी जरूर आ गई होगी, लेकिन हम आपसे कहेंगे आप गुरूर नहीं कीजिएगा, क्योंकि गुरूर करना अच्छी बात नहीं है। श्रोता, हुस्न अगर सादगी के साथ हो तो उसमें और भी निखार आ जाता है, लेकिन जब हुस्न पर गुरूर हो जाए तो उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है। तो इसलिए गुरूर ना ही करें तो बेहतर है। तो ऐसे ही प्यारे से संदेश को पेश कर रहा है हमारे कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म रोटी से। इसको आवाज दी है किशोर कुमार, लता मंगेशकर ने आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोता, हर खूबसूरत सफर की तरह आज का गोल्डन हिट्स भी कार्यक्रम में अपने अंतिम पड़ाव की तरफ यानी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है इन सदाबहार गीतों ने आपकी यादों को फिर से महका दिया होगा और आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी होगी। जाते जाते पेश है आपके लिए एक ऐसा गीत जिसकी मिठास बरसों बाद भी यूं ही कम नहीं हुई है। ये गीत है फिल्म आया सावन झुमके से। आवाज है मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी के। तो लीजिएगा आनंद कार्यक्रम के अंतिम गीत का

श्रोताओं, फिल्म आया सावन झूमके के गीत के साथ ही आज के गोल्डन हिट्स का खूबसूरत कारवां अब यहीं पर रुकता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:15 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शाहजहांपुर और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शाहजहांपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है कौशलेंद्र मिश्रा का।
1: शाहजहांपुर में बीते माह विकास, जन कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, कृषि और प्रशासनिक गतिविधियां सुर्खियों में रही। राजकीय इंटर कॉलेज खिन्नीबाग मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ, जहां 177 हिंदू और 28 मुस्लिम सहित कुल 205 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। मुख्य अतिथि वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और विवाह को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर 1-1 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 64,000 रुपए कन्या के बैंक खाते में, 21,000 रुपए की गृहस्थी सामग्री तथा 15,000 रुपए समारोह के आयोजन पर व्यय किए जाते हैं। उन्होंने नव विवाहित दूल्हों से अपनी पत्नियों का सम्मान करने और उन्हें समान अधिकार देने की अपील भी की। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन हुआ। विकास खंड भावलखेड़ा में वन विभाग द्वारा 7,500 पौधों का रोपण कर अभियान की शुरुआत की गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और सांसद अरुण कुमार सागर ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हरिशंकरी पौधा लगाकर लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संदेश दिया। इस वर्ष जनपद में 52.55 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे जन सहभागिता से पूरा करने का संकल्प लिया गया।
2: बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण खतौलिया क्षेत्र में खासतौर से किया गया। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज करने का और जो गर्मी पड़ रही है उसको भी मिनिमाइज करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। इस साल 37 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, इसमें से 35 करोड़ वृक्ष केवल आज लगाने का लक्ष्य रखा है। 52,55,000 वृक्ष शाहजहांपुर में लगाने का लक्ष्य है। ये लक्ष्य आज शाम तक हम जरूर पूरा करेंगे।
1: इसी क्रम में जिला गंगा समिति के तत्वावधान में गर्रा नदी स्थित राजघाट पर बृहद स्वच्छता एवं श्रमदान अभियान चलाया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्वयं सेवकों ने घाट और नदी तट की सफाई कर लोगों को स्वच्छ नदी स्वस्थ जीवन का संदेश दिया और नदी और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने का आह्वान भी किया। सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात

0: पुलिस ने थाना पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया। ड्रंकन ड्राइविंग, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सघन कार्रवाई करते हुए कुल 1843 वाहनों के चालान किए गए। पुलिस ने लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने तथा सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति जागरूक भी किया। विकास कार्यों को गति देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने हथौड़ा क्षेत्र में 15.44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सदर तहसील के नए अनावासीय भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, नए तहसील भवन के निर्माण से आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी तथा सदर और ददरौल क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भी काफी सुविधा होगी। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव एवं जनपद के नोडल अधिकारी मनीष चौहान ने विकास भवन में सीएम डैशबोर्ड, कानून व्यवस्था, राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में बताया गया कि शाहजहांपुर ने सीएम डैशबोर्ड पर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिस पर प्रमुख सचिव ने प्रशासनिक टीम की सराहना भी की। अपने भ्रमण के दौरान प्रमुख सचिव ने लगभग 26.33 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अत्याधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्विमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, कबड्डी हॉल और 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का जायजा लेते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के तैयार होने से जनपद के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा खेल प्रतिभाओं को नई पहचान मिलेगी। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारियों ने अधिकारियों को सभी योजनाओं का 100% एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद में फूड फेस्टिवल आयोजित करने के निर्देश भी दिए। शाहजहांपुर में बीते माह जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यावरण संरक्षण, कृषि विकास, खेल सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत संरक्षण के विकास को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां पूरे जोर शोर से जारी रहीं। कौशल मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, शाहजहांपुर।
1: शाहजहांपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश त्रिपाठी का।
2: प्रतापगढ़ को विकास की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सदर और विधानसभा विश्वनाथगंज के अंतर्गत 384.71 करोड़ रुपए से अधिक की 111 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें प्रतापगढ़ सदर की 42 व विश्वनाथगंज की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं प्रतापगढ़ सदर की 45 एवं विश्वनाथगंज विधानसभा की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतापगढ़ के औला किसानों ने जो अमृत फल दिया, उसके अनेक उत्पाद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। इसी से यहां की समृद्धि देखकर अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सभी गरीबों किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से तहसील सदर के नगर पंचायत पृथ्वीगंज के पृथ्वीगंज भगेसरा में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता कार्यालय पर भाई रहेंद्र कुमार शुक्ला ने की। शिविर में उपस्थित लोगों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार परक योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्रता आवेदन प्रक्रिया, ऋण संबंधी सुविधा एवं सरकारी सहायता संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया गया। साथ ही युवाओं, कारीगरों एवं ग्रामीण उद्यमियों को रोजगार का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राम मोहन मीणा की अध्यक्षता में संसद विधायक के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के साथ त्वरित आर्थिक विकास, पूर्वांचल विकास निधि, संसद निधि, विधायक निधि से कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा विकास भवन सभागार में की। समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना से रुपए 2,926.75 लाख की लागत से स्वीकृत 156 कार्यों में 8 कार्यों की प्रगति तथा अवशेष कार्य निविदा की प्रक्रिया में पाए गए। निविदा की प्रक्रिया से पूर्ण कराते हुए सभी कार्यों को माह नवंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। योजना अंतर्गत भैरवनाथ धाम में कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए अब तक भूमि सीमांकन न होने पर संबंधित उपजिला अधिकारी को 2 दिवसीय में सीमांकन कराने के निर्देश दिए गए।

0: सांसद प्रतापगढ़ के वर्ष 2024-25 के सांसद निधि से स्वीकृत अपूर्ण नौ कार्यों के संबंध में अधिशासी अभियंता यूपीएसआईसी प्रयागराज से जानकारी करने पर उनके द्वारा भूमि विवाद होने की स्थिति से अवगत कराया गया, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व विभाग से सहयोग प्राप्त कर विवाद निस्तारित कर 15 दिवस के अंदर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। जनपद में विशेष संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम व दस्तक अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन प्रसाद द्वारा किया गया। जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा बताया गया कि विशेष संचारी नियंत्रण अभियान का वर्ष 2026 तक का यह दूसरा चरण संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग सहित पंचायती राज, नगर विकास, शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, कृषि, पशुपालन, सिंचाई तथा अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से व्यापक स्वच्छता एवं जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, जापानी इंफ्लुएंजा सिंड्रोम तथा अन्य संचारी रोगों व जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए जल भराव समाप्त करने, एंटी लावा का छिड़काव, स्रोतों का समापन, बुखार के रोगियों को शीघ्र पहचान, जांच एवं उपचार, जन जागरूकता तथा मच्छर बीकरसी पौधे जैसे तुलसी, गेंदा, लेमन ग्रास, लेवेंडर, सेटोनेला आदि के रोपण जैसे कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके उपरांत मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचारी रोगों और जल जनित रोगों से बचाव के प्रति सजग रहने के लिए उपस्थित लोगों को शपथ ग्रहण कराई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की कि वे अपने घरों एवं आसपास स्वच्छता बनाए रखें, पानी के एकत्र न होने दें, कूलर एवं जल पात्रों की नियमित सफाई करें, मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं तथा बुखार एवं अन्य रोगों के लक्षण दिखने पर निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर तत्काल जांच एवं उपचार उपलब्ध कराएं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। आकाशवाणी के विशेष लोकगीत के संगीत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और रोजाना की तरह ही आज हम फिर लाए हैं आपके लिए लोकगीतों की बरसात। तो आज आप पर होगी रुहेलखंडी लोकगीतों की बरसात, जिनको आवाज दी है अनीता द्विवेदी ने। श्रोताओं, रुहेलखंड की मिट्टी में रचे बसे लोकगीत हमारे रीति रिवाजों, उत्सवों, रिश्तों और भावनाओं का सजीव चित्रण करते हैं। इन्हीं लोक स्वरों की मिठास और अपनी संस्कृति की महक से सुशोभित हमारा ये कार्यक्रम आपको प्रस्तुत करता है आज रुहेलखंडी लोकगीत।

श्रोता, लोकगीत केवल हमारे मनोरंजन का माध्यम नहीं होते, बल्कि हमारी लोक संस्कृति की अनमोल धरोहर होते हैं। इन गीतों में कभी जन्मोत्सव की खुशी होती है, कभी विरह की टीस, कभी भक्ति तो कभी उल्लास का रंग। तो आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और अगला लोकगीत आपको सुनवाते हैं।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रीता चौधरी, देवराज आई एंड चाइल्ड केयर सेंटर बिजनौर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें। डॉक्टर, यदि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या उसे स्कूल भेजना चाहिए?
2: यदि बच्चे को बुखार, छींके, लगातार खांसी, कमजोरी या उल्टी जैसी शिकायतें हों तो उसे 1-2 दिन घर पर आराम करने देना बेहतर होता है। बीमार बच्चे को स्कूल भेजने से उसके ठीक होने में अधिक समय लग सकता है और संक्रमण अन्य बच्चों तक भी फैल सकता है। पर्याप्त आराम, पर्याप्त तरल पदार्थ, पौष्टिक भोजन और समय पर इलाज बच्चे को जल्दी स्वस्थ होने में मदद करते हैं। केवल उपस्थिति या परीक्षा की चिंता में बच्चे के स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चे की सेहत हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए।
1: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
3: धरती गाती है लोक संगीत का ये कार्यक्रम श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं अनीता द्विवेदी के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत।

श्रोताओं, रुहेलखंड की बोली की सादगी और लोक दिनों की आत्मीयता हर बार हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे ये गीत हमारी सांस्कृतिक विरासत को आज भी जीवंत बनाए हुए हैं। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम की अगली सुरीली कड़ियां।

श्रोताओं लीजिए, अब पेश है कार्यक्रम की अंतिम लोक धुन की ये पेशकश, जिसकी आत्मीयता हमारी संस्कृति को छूती है और आशा है आपको आज की रुहेलखंड के लोकगीतों की ये प्रस्तुति जरूर पसंद आएगी। तो अपनी मिट्टी, अपनी बोली और परंपराओं को फिर से महसूस कीजिए इस लोकगीत में।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। सवेरे के 10 बज रहे हैं। अब पेश है आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। आपकी पसंद से सजेंगे आज के गीतों के सभी नजारे। आपकी पसंद से सजेंगे आज के गीतों के सभी नजारे,
1: क्योंकि लेकर हाजिर हैं हम आपका अपना कार्यक्रम जिसका नाम है
0: गीत तुम्हारे। श्रोताओ, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में, जहां आप आज आपकी हम सफर बनी हूं मैं फरीना, और मेरे साथ हैं
1: मैं आप सभी की साथी नेहा शर्मा।
0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं, और वो गीत हमने लिया है उस फिल्म से जिसका सुनने का मन है हमारे श्रोताओं का, और इत्तफाक से इस गीत को जो हमने लिया है उस फिल्म का नाम भी मन है। तो नेहा, ये गीत जो हमने लिया है इसको आवाज दी है उदित नारायण अलका याग्निक ने
1: जी,
0: और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। संजीव दर्शन के संगीत में तैयार हुए इस गीत के लिए ये फरमाइशी मैसेज हमें भेजा है हमारे श्रोता है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना, और उनके साथ ही हैं सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रीतु और मुकेश जगताप। और नेहा, देखना हमने कार्यक्रम में अभी अपना नंबर भी नहीं बताया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी फरीना कि आपने गीत की फरमाइश तो बता दी और गीत भी बता दिया। एक बार अपने श्रोताओं को हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी बता देते हैं, जिसके माध्यम से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना फरमाइश का कोई भी गीत सुन सकते हैं। जिसके लिए आप नोट कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए श्रोताओं, 9457078288। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके अपनी पसंद का कोई भी गीत सुन सकते हैं। तो और फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं मन फिल्म का एक गीत, और इस गीत के लिए फरमाइश हमें पत्रों के माध्यम से भी आई है। ये पहला पत्र हमें मिला है महादेव घाट अमलेश्वर से। लिखने वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। अगला मैसेज कहाँ से आया है फरीना?
0: ये अगला मैसेज हमें भेजा है अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे ने, गांव पांडर कवड़ा से आप ये मैसेज हमें भेज रहे हैं।
1: आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें पत्र भेजा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां ने।
0: विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन भी इसी गीत के लिए फरमाइश हमें भेज रहे हैं।
1: और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हमें पत्र कर भेज रहे हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और साथ में है मीका बिरक।
0: और ये मैसेज हमें भेजा है नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रशीद वारशी, मारहरा दरवाजा एटा से आपने ये फरमाइशी मैसेज हमें भेजा है।
1: पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद

शादाब खत्री। कृष्णा पाठ दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना भी इसी गीत की फरमाइश कर रहे हैं। तो आइए आप सबके मन की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं मन फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और फरीना, कार्यक्रम में अगला गीत हमारा कौन सा है?
1: अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म असली नकली से। शंकर जयकिशन के संगीत बद्ध किए गए इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, और इस गीत की हसरत भेजी है सुनने के लिए हमारे श्रोता हैं रेलवे रोड गंजुनवारा से मोहम्मद कलीम बख्शी, भुवन प्रकाश गौतम, दबीरुल हसन, शबनम अनवर, नजमा बेगम नास और उनके साथ हैं सरिता गौतम।
0: और इसी गीत की फरमाइश हमारे पास पत्र के माध्यम से भी आई है। अनारकली बाजार जगराओं से ये पत्र हमें मिला है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा पाठक का। और

0: अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं हमारे श्रोता मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सादरानी, हीना कौसर, मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट जिला बिजनौर से,
1: और यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से हैं, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार।
0: और ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मेहर नगर उमेरगढ़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाड़कर, सरिता ग्वाड़कर, प्रिंस एकांश ग्वाड़कर, प्रणीता, सिद्धांत, अर्जुन, और उनके साथ हैं आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, सुमित, ध्वनि ग्वाड़कर।
1: सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमें पत्र लिखते हैं टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, और कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, और साथ में हैं साहिल।
0: जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून।
1: और इसी गीत के पसंदकर्ता हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर।
0: तो नेहा, गीत सुनवाने से पहले अपने श्रोताओं को एक बात बता दे जो हम
1: बिल्कुल बता दीजिए कि आज 10:30 पर हमारा प्रोग्राम रहेगा
0: जागरूक श्रोता, यानी आप मैसेज के बाद लाइव सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता में जुड़ सकते हैं इसी नंबर के माध्यम से। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नया,
1: आज का हमारा टॉपिक है जल संचयन, और श्रोताओं इसी नंबर पर यानी 9457078288 नंबर पर आप हमें कॉल करके हमारे साथ जल संचयन विषय पर बातचीत कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं अपने विचार।
0: तो भूलिएगा नहीं कार्यक्रम जागरूक श्रोता। तो चलिए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ हूँ मैं फरीना, और मेरे साथ आपका साथ निभा रही है
2: मैं आप सभी के साथ ही नेहा शर्मा।
1: तो नेहा शर्मा, कार्यक्रम का अगला गीत जो हम सुनवा रहे हैं उसकी फरमाइश भेजने वाले मैं हमारे श्रोता का पत्र पढ़िए,
2: उसकी फरमाइश पत्र के माध्यम से आई है। ये है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। एक और पत्र हमारे पास है इसी गीत की फरमाइश के साथ। ये है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। और फरीना, पत्र के साथ साथ व्हाट्सएप मैसेज पर कौन है हमारे श्रोता जो ये गीत सुनना चाहते हैं?
1: इस गीत के लिए अगले श्रोता जो हमें दस्तक कर रहे हैं वो है कलानौर हरियाणा से नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा और मयंक शर्मा। और ये है हमारे श्रोता शेरवानी स्कूल गंजुनवारा उत्तर प्रदेश से आलिया अंसारी, लुबना अंसारी, मास्टर अनवर, मोहम्मद कैफ, रियाज अंसारी, आफ्ताब अंसारी। और नेहा, देखना श्रोता हमारे इतना प्यार करते हैं कार्यक्रम में कि हम नंबर भी बाद में बताते हैं, मैसेज पहले आ जाते हैं,
2: पहले आ जाते हैं।
1: और मैसेज इतने आते हैं कि हमें आज तो हमारा सफर भी थोड़ा छोटा रहेगा ना।
2: बिल्कुल, आधे घंटे का हमारा ये प्रोग्राम है और हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो बिल्कुल मैसेजों के साथ फुल हो चुकी है और सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा पढ़ें और कौन सा छोड़ दें, क्योंकि हमारे सभी श्रोता हमारे लिए बहुत खास होते हैं। ये एक मैसेज हमें मिला है शाही मार्केट स्योहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफा चौधरी, अदीप चौधरी और कादिर चौधरी का।
1: और ये अगले श्रोता जो हमें मैसेज कर रहे हैं कुमार हेड़ा सहारनपुर से, आप हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और उनके परिवार के सभी सदस्य।
2: और ग्राम चौहलदा बागपत से हैं संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल ढींगिया।
1: उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल।
2: और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरग, जयतेग बिरग और मीका बिरग।
1: गांव नथाना पंजाब से आप हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता गीता। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म एट द पावर ऑफ शनि में सुनिधि चौहान अर्णव चक्रवर्ती को, जिसको संगीत दिया है दबू मलिक ने और गीत रचना है प्रवीण भारद्वाज की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर।

0: बहुत ही खूबसूरत सा गीत ये हमारे अभी श्रोताओं ने सुना। और फरीना, अब कार्यक्रम का वक्त बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है, तो कार्यक्रम का जो अंतिम गीत है उसकी फरमाइश हम बता देते हैं, वो कहाँ से हमें मिली है।
1: हाँ ज़रूर, तो ये मैसेज हमें भेजा है खुशदिल परिवार ने। आप हैं पप्पू राजा खुशदिल।

0: सुनीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी और पूरा ही खुशदिल परिवार हमें मैसेज कर रहा है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से।
1: और एक पत्र भी हमें मिला है फरीना जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ का।
0: ये मैसेज हमें भेजा है मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद उजैफ ने, पुराने बस स्टैंड नगर पंचायत बढ़ापुर बिजनौर से।
1: अगला मैसेज हमें मिला है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये का।
0: और ये मैसेज हमें भेज रहे हैं मोताला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर, रतनमाला कुमकुम सुरलकर और उनके परिवार के सभी सदस्य।
1: और भाटापारा दतरेंगी से हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा और रुद्र वर्मा।
0: और ये मैसेज भेजा है लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से, हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, काना, मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी और उनके साथ हैं मनभावन, नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और उनके परिवार के सभी सदस्य।
1: और आज के कार्यक्रम का ये अंतिम मैसेज फरीना, ये हमें मिला है करणवीर हाउस भूचो कैचियां भटिंडा से, और ये लिखने वाले हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत। और आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत,
0: जिसे हमने लिया है फिल्म खामोशी से। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार और हेमंत कुमार ने, आवाज़ है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है खामोशी।

0: श्रोताओं, खामोशी फिल्म के इस गीत के साथ वक्त भी खामोशी से अपने अंतिम पड़ाव यानी आज के समापन की तरफ पहुंच चुका है ना नेहा?
1: जी हाँ, बिल्कुल। और कार्यक्रम गीत तुम्हारे का वक्त अब यहीं पर संपन्न होता है और इसी के साथ हम भी इस कार्यक्रम में आपसे लेते हैं अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।
0: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, समय सुबह के 10:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है साप्ताहिक सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता।
1: कार्यक्रम जागरूक श्रोता सुन रहे हमारे सभी श्रोता साथियों को मेरा यानी नेहा शर्मा का और
0: फरीना का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज पूरी दुनिया एक ऐसे संकट का सामना कर रही है जो धीरे धीरे हमारे जीवन का सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है।
1: बिल्कुल।
0: और वो सवाल है जल संकट का। संयुक्त राष्ट्र सहित दुनिया की कई संस्थाएं लगातार हमें चेतावनी दे रही है कि यदि हमने अभी से जल संरक्षण पर गंभीरता से काम नहीं किया तो आने वाले वर्षों में स्वच्छ जल की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती का वजह बन सकती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने फरीना। और विडंबना ये है कि एक और तो बरसात के मौसम में लाखों लीटर वर्षा का जल जो है वो बिना उपयोग के बह जाता है और दूसरी तरफ गर्मियों में पीने के पानी के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। ऐसे में वर्षा जल का संचयन यानी बारिश के पानी को अगर हम इकट्ठा करें तो भविष्य के लिए इसको सुरक्षित माना जाएगा। केवल एक विकल्प नहीं है ये, बल्कि एक समय की आवश्यकता भी बन चुका है ना?
0: हाँ, तो इसी
1: जी हाँ बिल्कुल। और इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने और आपके विचार जानने के लिए हम लेकर आए हैं आज का ये विशेष फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता।
0: जी हाँ श्रोताओं, और आज का हमारा विषय इसलिए हमने रखा है जल संचयन। और श्रोताओं, यदि आपके घर, गांव, स्कूल या मोहल्ले में वर्षा जल संचयन की कोई अच्छी पहल हुई है या आप पानी बचाने का कोई प्रभावी तरीका अपनाते हैं तो हमें अवश्य बताइएगा और अपने अनुभव दूसरे श्रोताओं के लिए भी प्रेरणा का आपके मतलब जो आप हमें बताएंगे।
1: जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं आपके अनुभव। और श्रोताओं, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए हमारा फोन इन नंबर जल्दी से आप नोट कर लीजिए ताकि हम अपने पहले कॉलर से बात कर सकें। और हमारा नंबर है
0: 9457078288। तो जल्दी से फोन कीजिएगा और कार्यक्रम का हिस्सा बनिएगा।
1: और ये देखिए फरीना, जैसे ही हमने नंबर बताया और हमारी पहली कॉल आ भी गई।
0: नेहा, देखिएगा कौन से कॉलर हैं हमारे जो हमसे जुड़े हुए हैं। हेलो
1: हेलो जागरूक श्रोता।
0: हेलो जागरूक श्रोता। हेलो
1: हेलो जागरूक श्रोता, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो जागरूक श्रोता।
0: हेलो,
1: लगता है हमारे कॉलर हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक और कॉल हमारे पास आ रही है। चलिए प्रयास करते हैं इनसे जुड़ने का। हेलो जागरूक श्रोता। फरीना जी, आज हमें लगता है कुछ तकनीकी खराबी के कारण हमारा जो फोन है वो नहीं लग पा रहा है। तो श्रोताओं, आपसे हम बात कर रहे हैं जल संचयन के बारे में और हम यही कोशिश कर रहे हैं लगातार कि हमारे कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो पाएं।
0: जब तक हमारे श्रोता हमें कॉल करते हैं, हम आपको इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी देते हैं। श्रोता, प्रकृति ने हमें बहुत सारे अनमोल उपहार दिए हैं और इनमें जल प्रकृति का दिया एक ऐसा खूबसूरत उपहार है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहद जरूरी है। ये केवल हमारी प्यास नहीं बुझाता बल्कि खेती, उद्योग, पर्यावरण और जीवन का महत्वपूर्ण आधार भी है। लेकिन लगातार बढ़ती आबादी, भूजल का अधिक दोहन और बारिश के पानी का सही उपयोग न होने के कारण जल की समस्या लगातार दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। ऐसे में वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। लेकिन देखिए ना, वर्षा का जल यूं ही लगातार बहकर वेस्ट हो जाता है और हम में से ज़्यादातर लोग इसका संचयन नहीं करते। अब देखते हैं हमारे अगले कॉलर हमसे जो जुड़ना चाहते हैं वो कौन है।
2: हेलो हेलो
0: हेलो,
2: हाँ मैम नमस्कार।
0: जी नमस्कार, हम जानना चाहेंगे हमारे कौन जागरूक श्रोता हमसे जुड़े हैं।
2: जी नगर पंचायत बढ़ापुर पुराने बस स्टैंड से हम ताहिर बोल रहा हूँ मैम।
0: अच्छा ताहिर जी, इत्तफाक है आज आपका मैसेज भी शामिल हो गया और आपकी कॉल भी।
2: बस ये तो आपकी मैम मोहब्बत है आप लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट वीक भी ऐसा ही हुआ था और चलता रहता है, आपकी जो प्यार है वो बना रहता है आप लोगों का।
0: जी हाँ, इंसान कोशिश करे और प्यार से हर काम ईमानदारी से करे तो कोशिशें भी कामयाब हो जाती हैं। तो
2: लगन होनी चाहिए इंसान के अंदर।
0: हाँ ये तो हकीकत है। तो जैसा कि आपने मतलब अभी हमें फोन लगाया, तो आपको पता है हमने आज क्या टॉपिक रखा है?
2: जी जल संचयन के विषय में।
1: जी हाँ ताहिर जी, हमारा टॉपिक है जल संचयन। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके अनुसार घर पर जो वर्षा जल संचयन है उसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं?
2: जी घर की छतों पर गिरने वाले जो पानी होता है ना, उसमें पाइपों के जरिए टैंकों को इकट्ठा करके दैनिक कार्य में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो ये सही रहेगा।
1: हाँ जी, बहुत अच्छा आपका विचार है। और
2: सरल तकनीक है, पाइप हर घर में होते हैं।
1: जी हाँ जी,
2: जरूरत होती है उसको अपने काम में सही ढंग से सही तरीके से इस्तेमाल करने की।
0: जी तो मतलब घर की छत पर जो गिरने वाला वर्षा का जल है वो पाइपों के माध्यम से टैंक या भूमिगत जल संग्रहण व्यवस्था तक पहुंचाया जाए, तो बरसात का जो पानी होता है उसका उपयोग हम आने वाले वक्त में कर सकते हैं, है ना?
2: जी बिल्कुल कर सकते हैं।
1: बागवानी में और जो घरेलू कार्य हैं छोटे मोटे उनमें हम कर सकते हैं इस, और इस पानी को रिचार्ज पिट के माध्यम से भी जमीन में उतारा जा सकता है, तो भूजल जो स्तर है वो भी बढ़ाया जा सकता है।
2: हमारे यहाँ का ये वर्षा के जल को गड्ढे और तालाबों और रिचार्ज कुओं के माध्यम से जमीन के अंदर भेजकर वाटर लेवल को इसको और उठाया जा सकता है।
1: जी हाँ, और ये व्यवस्था जो है अपेक्षाकृत कम खर्च में बनाई जाती है ना, और लंबे समय तक पानी की उपलब्धता की सुनिश्चितता जो है वो भी बरकरार रखती है।
2: आप जानती हो मेरे से ज्यादा बेहतर जानती हो, क्योंकि पानी की हर बूंद कीमती।
1: जी नहीं, हर कोई अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा जानता है और बहुत बेहतर जानता है। और हम यही सोचते हैं कि अगर आपने इस टॉपिक को सुनने के बाद भी हमारे पास कॉल की है तो आप भी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हमें हमारे साथ साझा करेंगे।
2: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों का ज्ञान है जो हम अर्जित करते रहते हैं, कुछ अपनी शिक्षाओं से पढ़ाई से लिया है वो बहुत आपके सामने।
1: जी जी जी, तो बहुत अच्छा
0: ताहिर जी। तो आप अपनी, यानी हम ये मान लें कि आप अपनी छत पर वर्षा जल संचयन करते हैं।
2: जी बेशक करता हूँ, वो अपने मैं बागवानी के काम में लेता हूँ जो छत पर मेरे पेड़ लगे हैं।
0: अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बागवानी भी करते हैं, मतलब पर्यावरण को शुद्ध भी करते हैं और पर्यावरण के लिए जल को बचाते भी हैं, और ये आज बहुत जरूरी है ना।
2: जी मैम, तो जल है तो कल है, मेरी सोच तो ये है।
0: बेशक जल है तो कल है, ये तो हकीकत है। और अगर इस सोच के साथ हर इंसान कदम उठाए तो मतलब जो जल की समस्या है वो काफी हद तक कम की जा सकती है ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल जी जी मैम, क्योंकि एक दूसरे का साथ देना ही पड़ता है, जैसे फरहीन जी और नेहा जी दे रही हैं एक दूसरे का साथ।
0: और हमारे साथ आप जुड़ गए हैं ना, एक से भले दो और दो से भले तीन
2: मिल हो गए।
0: तो ताहिर जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज?
2: देना यही संदेश है मैम कि पानी की हर बूंद कीमती है, अगर हम इसे जल संचयन को अपनी आदत में शामिल करेंगे तो भविष्य में भयानक जल संकट का जो सामना हमारे आने वाली पीढ़ी को नहीं पड़ना चाहिए। बस आज की जो दिन है वो उसे हम कल के लिए भविष्य के लिए सोच कर चले तो ज्यादा बेहतर होगा।
0: बेशक बेशक, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है और कार्यक्रम में आप जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और फरीना जी देखिए, हमारे एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं और दूसरे कॉलर हमारे साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब आपका।
2: ओके मैम, थैंक्स, बाय बाय।

0: नेहा, कार्यक्रम में हमारे श्रोता लगातार हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगली कॉल
1: बिल्कुल
0: किसकी
1: बिल्कुल।
0: है। हेलो,
1: हेलो जागरूक श्रोता।
0: हेलो, हेलो, हेलो,
1: हेलो जागरूक श्रोता।
0: हेलो जागरूक श्रोता, हेलो।
1: लगता है ये वाले हमारे जो लिसनर हैं ये भी हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कॉल इनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है।
0: श्रोताओं, जल संचयन की आवश्यकता बेहद जरूरी है। आप जानते हैं कि जल हमारी नहीं पशु पक्षियों के लिए भी बहुत आवश्यक है, और अगर हम जल को नहीं बचाएंगे तो हम कल का भविष्य कैसा होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। तो कार्यक्रम में अगले कॉलर जब तक हमसे जुड़ते हैं तब तक हम आपको बताते हैं कि जल संचयन की आवश्यकता क्यों है। श्रोताओं, जल संचयन, आप देख रहे हैं कि लगातार भू जल स्तर लगातार नीचे होता जा रहा है, और इसे लगातार बढ़ाने के लिए हमें जल संचयन करना चाहिए। कई क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में मौसम
1: और
0: की
1: फरीना जी, आप जानकारियां देती रहेंगी। हमारे एक लिसनर हमारे साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो जागरूक श्रोता
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: जी। सलाम
0: वालेकुम
1: अलैकुम
0: अस्सलाम
2: मैम, कैसी हैं आप?
0: जी। हम बहुत बढ़िया हैं, आप बताइए आप कैसी हैं।
2: मैम अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आप सबकी दुआएं हैं।
0: हम
1: बहुत अच्छा, आपका नाम क्या है?
2: जी मैं सालमत मुल्ताना से नाते दृश्य बात कर रही हूँ।
0: एक बार दोबारा बताएंगी आप अपना नाम?
2: फादर मुर्तैना से नाजिया इदरीशी।
1: नाजिया।
2: जी
1: और नाजिया जी, आप हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं तो जाहिर सी बात है आपको हमारा आज का टॉपिक भी मालूम ही होगा।
2: जी जी जल संचयन के बारे में जो आजकल टॉपिक ये रखा गया है कि हम जल की बचत कैसे कर सकते हैं और
1: जी
2: जल
1: हाँ
2: की
1: जी हाँ
2: बचा कैसे कर सकते
1: जी हाँ, जल का
2: बचा कैसे कर
1: संचयन हम
2: सकते हैं।
1: कैसे कर सकते हैं, कैसे हम वर्षा जल या वैसा जो जल है उसको भी हम कैसे एकत्रित कर सकते हैं।
0: जी
1: तो
0: जी नाजिया, आप जानती हैं जल संचयन का मतलब क्या है?
2: जी जल संचयन का मतलब होता है कि हम जल को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं, वर्षा जल को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं।
0: हाँ, मतलब जो बेकार हमारा पानी जा रहा है उसको रोक कर किस प्रकार संग्रह कर सकते हैं कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके।
2: जी, आज हमारे दैनिक जीवन में जल की हर एक क्षेत्र में अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है और जल हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: बहुत
2: यदि
1: खूबसूरत,
2: कल नहीं
1: बहुत ही
2: होगा
1: खूबसूरत, बहुत अच्छी बात आपने कही नाजिया जी। और इतनी प्यारी सी आवाज के साथ आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपसे एक सवाल हम करना चाहेंगे।
2: जी बिल्कुल मैम, पूछिए।
0: अच्छा बताइए, जल संचयन का सबसे बड़ा लाभ क्या है?
2: जल संचयन का सभी बड़ा लाभ है, यद्यपि हम गर्मियों के टाइम हमें देखने में आता है कि जल की कमी अत्यंत बढ़ जाती है, तो
1: बिल्कुल
2: उस समय में हम उस जल का जो हमने बचा के रखा है, उस जल को जिसे हमने वर्षा के टाइम इकट्ठा कर रखा था, हम उसका उपयोग कर सकते हैं अपने जल जीवन के कार्यों में।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, गर्मियों के मौसम में जो जल का स्तर है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है, और कहीं पर हम देखते हैं कि लोग समर सेविल का दुरुपयोग करते हैं। आजकल तो स्विमिंग पूल का बहुत चलन चल गया है ना, तो बच्चे बहुत बड़े बड़े पूल फुलाकर उसमें नहाते हैं और हजारों लीटर जो पानी है वो बर्बाद चला जाता है। तो ऐसा सब हमें नहीं करना चाहिए, और उसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि और अगर इस बात को हम थोड़ा विस्तार से समझें तो वर्षा जल का संचयन का जो सबसे बड़ा लाभ है वो यही है कि पानी व्यर्थ बहने ना पाए और जमीन में सीधा पहुंच जाए, जिससे कि भूजल स्तर को बढ़ावा मिलता है ना।
2: जी,
1: तो
2: मैम
0: हाँ
2: मैं
0: बोलिए
2: एक बात कहना चाहूंगी
0: जी
2: कि
0: जी कहिए।
2: अक्सर हमें देखने में आता है कि गांव में अक्सर जो है घर में टंकियां नहीं होती हैं, नली होता है, तो वो बर्तन या कपड़े धोते हैं तो वो किसी बर्तन में पानी करने के बाद उसे धोए, इससे जो है हमारे जल की बचत होगी,
1: जी हाँ जी
2: जल
1: हाँ
2: बचेगा।
0: जी हाँ नाजिया। और नाजिया देखिए, पहले टाइम पे हम सुनते आ रहे हैं कि पहले साफ पानी मतलब हमें आसानी से मिल जाता था सागरों में, समुद्र में, नदियों में, लेकिन आज धीरे धीरे साफ पानी बॉटल तक आ गया है, और ये एक बहुत बड़ा संकेत है हमारे लिए कि जल संकट कहाँ तक पहुँच चुका है ना।
2: हाँ, अत्यंत विस्तृत हो चुका है, इसे हमें कम करना होगा, हमें अपने आने वाली जनरेशन के लिए बचाना होगा, क्योंकि यदि भी जल नहीं रहेगा तो हमारा जीवन असंभव है। जल ही जीवन है ये तो सभी सुना होगा, तो इस जीवन को हमें बचाना है, हर संभव प्रयास करना होगा, हर युवा को प्रयास करना होगा जल का दुरुपयोग ना करें। मैं आपसे एक बार फिर आकाशवाणी नजीबाबाद के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि जल का अधिक से अधिक बचाव करें, जल को अधिक से अधिक बचाएं, क्योंकि यही जीवन है।
0: बेशक बेशक, और बहुत खूबसूरत संदेश आपने श्रोताओं को दिया है, और हमारे श्रोता भी मतलब इससे जानकारी लेकर अगर एक भी श्रोता ने जल संचयन का कदम उठा लिया तो हमारा आज का कार्यक्रम सार्थक हो गया।
1: बिल्कुल, और नाजिया जी इतने खूबसूरत से आपके संदेश के साथ अब हम आपसे लेना चाहेंगे अलविदा, क्योंकि हमारे अगले जो लिसनर हैं, जो कॉलर हैं, वो भी लाइन में रहे हैं ना
2: जी।
1: तो आज कॉल करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
0: आदाब
2: जी, धन्यवाद।
0: हेलो जागरूक श्रोता।
3: हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं शाही मार्केट शिवारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी बात कर रही हूँ मैम जी।
0: जी आसिफ चौधरी जी, कार्यक्रम जागरूक श्रोता में आपका स्वागत है। तो आप हमारा कार्यक्रम जाहिर सी बात है सुबह से सुन रहे होंगे और आपको टॉपिक भी पता होगा।
3: जी जी, मैं प्रोग्राम तो फिर रोज ही सुनता हूँ और आज भी सुना है।
1: जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे कार्यक्रम जो है वो नियमित तौर पर सुनते हैं और आज भी सुना है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने लिया है जल संचयन, यानी कि पानी को हम बर्बाद ना करें और उसको इकट्ठा करने के क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं और उसको इकट्ठा करने का फायदे क्या हैं और किस स्तर पर हम ये इस पर काम कर सकते हैं। तो आसिफ जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर हर परिवार इतना सजग हो जाए और हर परिवार जो है वर्षा जल संचयन अपनाए तो समाज को आपकी नज़र में क्या लगता है, लाभ होगा कि नहीं होगा?
3: जी जी, आने वाले जो बच्चे होंगे हमारे
1: जी,
3: उनके लिए पानी मिलेगा, वरना उनको संकट बहुत उठानी पड़ेगी।
1: जी हाँ, आज हम जिस जहाँ पर हैं वहाँ पर तो फिर भी पानी की कमी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो सूखा ग्रस्त एरिया हैं जो, और ये हमारे भारत की बात नहीं है, ये विश्व स्तर पर, ये वैश्विक स्तर पर ये एक समस्या हमारे सामने बनती चली आ रही है कि जहाँ पर पानी का स्तर बहुत कम है और हम देखते भी हैं न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं और किस तरह से लाइन लगाकर और कतार में लगकर और वो एक एक बाल्टी पानी और एक एक मटका पानी लेते हैं, तो कितना दुख हमें होता है देखकर कि हम हजारों लीटर पानी बहा देते हैं, गाड़ियां धोते हैं, अपनी कार धो लेते हैं, अपनी स्कूटी बाइक को धो लेते हैं, सड़कों की धुलाई कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये जल कितना कीमती है और हमें इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए।
3: जी,
0: तो आप बताइए।
3: जी जी जी बताइए। जबकि हमारी सरकार बहुत मेहनत कर रही है इसमें, जैसे कि हमारे यहाँ पहले पुराने दौर में जोड़े होते थे।
1: जी जी जी, तालाब,
3: और बारिश का पानी। जी
0: जी बताइए,
3: कह रहे हैं कुछ?
0: नहीं नहीं, आप बताइए।
3: हाँ, तो वो इकट्ठा होता था तो हमारा जो वाटर लेवल था वो ऊपर हो जाता था, लेकिन कुछ टाइम पहले ये जोड़े बंद होते चले जा रहे थे। लेकिन
1: हाँ,
3: अब सरकार हमारी नगर पालिका जो कर रही है, जोड़े खाली कर रही है और सफाई कर रही है उन जोड़ों के, जिससे कि बरसात का पानी वहाँ इकट्ठा हो जाए।
1: बिल्कुल बात सही है। बात है आपकी, बिल्कुल सही।
0: तो आसिफ जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपके आसपास वर्षा जल संचयन करने की कोई व्यवस्था है?
3: जी, हमारे घर पे तो नहीं है कोई टैंक इस तरह है जो पानी इकट्ठा करा जावे और मतलब कहना है कि उनसे काम लिया जावे, जैसे कि कपड़े धोने हैं और बहुत सा काम ले सकते हैं पानी जब इकट्ठा हो जाएगा तो। लेकिन ऐसा करना चाहिए कि टैंक बनवा लेना चाहिए।
1: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने की। और हर परिवार अगर ये कदम उठाएगा तो बारिश का जो लाखों लीटर पानी है वो सुरक्षित किया जा सकता है।
0: तो आसिफ जी, तो आप जल को बचाने के लिए कोई प्रयास करते हैं, बताएंगे?
3: जी, बस यही के मतलब कहने का, हमारे जो नगर पालिका है वो जोड़े खाली करा रही है, उसमें जल इकट्ठा हो जा हमारे यहाँ, ये बड़ी अच्छी बात हो।
1: जी जी जी, बिल्कुल,
0: वो तो ठीक है आसिफ जी, लेकिन मतलब सिर्फ नगर पालिका की ये जिम्मेदारी नहीं है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो जल संचयन में अपनी भूमिका निभाए।
3: जी, तो और मैं ये कहूँगा, खैर गर्मी का मौसम चल रहा है, छत पे थोड़ा सा पानी जरूर रख दें। और दूसरी बात ये कहूंगा मैडम, मैं अभी
1: जी
3: के घर पे जो मतलब कहने का समर सेविल लगे हुए हैं लोगों के आजकल, वो भी पानी चलाकर भूल जाते हैं शायद।
1: जी हाँ, यही एक बहुत बड़ी समस्या है कि समर सेविल का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो गया है।
0: जी हाँ, और इसके साथ साथ अगर आसिफ जी कहीं आप टैप खुली देखें या पानी को वेस्ट होते देखें, सपोज

0: जी,
1: कौन से जिले से आप बात कर रहे हैं?
0: फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से।
1: फरुखाबाद उत्तर प्रदेश
0: कानपुर
1: से। सतीश जी
0: के
1: क्या
0: पास,
1: करते हैं आप?
0: कानपुर के पास में पड़ता है।
1: अच्छा, कानपुर के पास में पड़ता है। तो आप क्या काम करते हैं?
0: मैं तो मैडम जी खेती बाड़ी करता हूँ।
1: खेती बाड़ी करते हैं, तो जल की जो महत्व है जल का, वो आप बहुत अच्छे से समझते भी होंगे। और आज का हमारा कार्यक्रम आप सुन रहे थे?
0: सुन रहे थे मोबाइल ऐप पे, सुन रहे थे।
1: अच्छा, तो आप बताइए कि मतलब जल संरक्षण के लिए आपकी क्या राय है?
0: जैसे पेड़ पौधे के लिए जल तो लगाना ही पड़ता है, पानी आने कहीं भी खेती खेती बाड़ी में लगाना पड़ता है। और कहीं भी है ज़्यादा, कहीं भी घर पे टोटी वोटी खुली हुई कि बच्चे खोल देते हैं, और कहीं भी जैसे रेलवे स्टेशन है कहीं भी जाते हैं तो उनका जो आपको दिखाना चाहिए, जहाँ कम बिगड़ फालतू पानी
1: जी बिल्कुल
0: बिगड़ रहा है
1: बिल्कुल
0: तो ज़्यादा पानी बचत करें, बर्बाद
1: जी
0: ना करें,
1: हाँ, बहुत
0: टोटी वोटी
1: अच्छी
0: बंद
1: आपने
0: करते हैं।
1: बात कही कि पानी की बचत जो है वो तो जरूरी है ही। आप हमें ये बताइए
0: हाँ
1: कि वर्षा जल संचयन जो है वो केवल पानी बचाने का उपाय है, या इससे जोड़कर पर्यावरण को भी देखा जा सकता है कि पर्यावरण को भी कुछ लाभ होगा?
0: हाँ पर्यावरण जैसे पेड़ पौधे हैं तो इनको कुछ लाभ होता है, जैसे इस मौसम में, जैसे बारिश के मौसम में ये पेड़ पौधे लगाना चाहिए,
1: जी बिल्कुल, जाहिर सी
0: और
1: बात है कि
0: प्रधान
1: जब वाटर लेवल जो है, जल स्तर जो बढ़ेगा, तो वो पेड़ों की जड़ों तक भी
0: हाँ
1: पहुंचेगा।
0: पेड़ों के
1: और
0: जो सो गर्मी अर्मी ना पड़ेगी, बिना बारिश भी ज्यादा ना होती है, फिर इसी वजह से ये बारिश होती, बारिश कम भी हो रही है,
1: जी
0: कहीं
1: हाँ जी
0: भी
1: हाँ,
0: खूब ज्यादा हो
1: सीधा
0: रही है
1: सीधा
0: तो।
1: हम कह सकते हैं कि जो वर्षा जल संचयन है वो केवल पानी बचाने तक सीमित नहीं है, इसके कई पर्यावरणीय लाभ भी हैं। जैसे कि
0: हाँ
1: जब बारिश का पानी सीधे जमीन में समा जाएगा तो भूजल स्तर जो है वो बढ़ेगा, है ना, और मिट्टी की
0: हाँ
1: नमी जो है वो बरकरार रहेगी, और इससे पेड़ पौधों को भी पर्याप्त पानी मिलता रहेगा, हरियाली बढ़ती रहेगी, और साथ ही तेज बारिश के दौरान जो सड़कों पर जल भराव की समस्या है वो कुछ हद तक कम हो सकती है।
2: और आपको खेती के लिए पानी भी मिल सकता है ना?
1: बिल्कुल
0: हाँ मैं तो जैसे मेरे तालाब वाला होता है तो पानी भरा रहता है, और कहीं भी ज्यादा हो नहर वगैरह होती तो उसका जैसे खेती की सिंचाई करते
1: तो
0: हैं।
1: आप
0: अभी
1: किस
0: तो
1: चीज़ की
0: धान,
1: खेती करते हैं?
0: मैडम जी मैं तो अभी धान की खेती करते हैं, अब धान ही लगाए हुए हैं खेतों में
1: हाँ,
0: तो अभी
1: धान को तो
0: तो
1: पानी वैसे भी ज़्यादा चाहिए होता है,
0: धान
1: जहाँ तक
0: है,
1: हमारी
0: मेरे
1: समझ है।
0: सारी फसल होती है, धान है, गेहूं है, और सरसों है, आलू है, मूंगफली है,
1: बहुत
0: और
1: बढ़िया
0: जितनी सारी
1: बहुत
0: फसल
1: बढ़िया।
0: होती, गन्ना वगैरह होता है, सब सारी फसल
1: तो
0: होती है,
1: कोई संदेश आप
0: मक्का
1: आज के
0: वगैरह।
1: कार्यक्रम में, फोन के माध्यम से आपका कॉल हमारे साथ लगा है, आप कनेक्ट हमारे साथ हुए हैं, तो कोई संदेश हमारे श्रोताओं को आप देना चाहेंगे?
0: संदेश ये मेरा है, जैसे पेड़ पौधे ज्यादा लगाना चाहिए। अभी तो 12 तारीख को पेड़ वाला दिवस आया था तो बहुत अच्छा लगा था प्रोग्राम में, और जहाँ जहाँ लगे बहुत लोगों ने पेड़ भी लगाए हैं, और
1: जी
0: उनको
1: हाँ,
0: कहना
1: आपने
0: चाहता हूँ
1: आपने
0: बारिश के
1: पेड़
0: मौसम
1: लगाए
0: में।
1: हैं कि आप धान ही लगाते रहे? जी
0: नहीं मैडम, धान भी लगाए और मेरे पेड़ पौधे हैंगे, जैसे जामुन का पेड़ है, आम का पेड़
1: जी
0: है,
1: तो
0: काफी
1: जामुन का तो
0: पेड़
1: इस
0: रहेंगे।
1: समय
0: हाँ
1: सीजन भी चल रहा है।
0: जामुन का, हाँ जामुन तो अब खत्म हो गए, लेकिन यह है पेड़ पौधे तो किसी प्रकार का पेड़ पौधा हो तो वो
1: जी
0: लगाना चाहिए, चाहे नीम का हो चाहे किसी किसी प्रकार का हो, लेकिन
1: चलिए
0: उसका
1: जी, ये
0: लगाना
1: वातावरण को
0: चाहिए।
1: शुद्ध रखता है, नीम का पेड़ तो बहुत
0: हाँ
1: अच्छा होता है। चलिए सतीश जी,
0: हाँ
1: कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और आप अपनी जो विचार हैं वो साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
2: आज तो नेहा लगातार कॉल आती जा रही है।
1: लगातार हमारे कॉलर जो हैं हमारे साथ कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो जागरूक श्रोता।
0: हेलो जासूस होता मैडम जी, नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, नमस्ते, कौन साहब बात कर रहे हैं आप?
0: मैं उत्तराखंड से निकाल से निगाह फैक्ट्री से प्रकाश चंद्र बोल रहा हूँ।
2: प्रकाश चंद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम जागरूक श्रोता में। और कार्यक्रम में आज का टॉपिक आप सुन रहे होंगे,
0: हाँ जी
2: आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं आप लोगों से, तो आप
0: हाँ
2: सुन
0: जी,
2: रहे हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा?
0: वही है, वो पानी के बारे में, जल संचय के बारे में सुन रहे हैं हम रेडियो में।
1: जी हाँ जी हाँ, तो
0: तो हम बहुत
1: आप
0: ही, हाँ जी
2: जी तो आप जब सुन रहे हैं वर्षा जल संचयन के बारे में, तो हमें बताएंगे कि आप भी वर्षा जल संचयन का प्रयास करते हैं?
0: हाँ जी करते हैं हम, जैसे यदि बरसात, आजकल बरसात फिर कम हो गई इधर ना, बारिश कम हो गई, तो हमारा ये एक टैंक बना रखा है पानी का, उसको हम सिंचाई कर रहे हैं उससे।
1: जी
0: अब वो पानी इकट्ठा करते हैं क्योंकि पानी इकट्ठा बर्बाद ना हो,
1: अच्छा, तो आप ये
0: और
1: बताइए,
0: भूसा
1: आपके
0: भूसा
1: आसपास पीने योग्य पानी की कोई कमी है कि नहीं, या पर्याप्त
0: की
1: आप
0: कमी
1: लोगों
0: तो
1: को?
0: नहीं, पर्याप्त मात्रा में तो नहीं है, खैर यहाँ उत्तराखंड में तो पानी की समस्या है ही।
1: जी,
0: हाँ
1: तो
0: यहाँ तो समस्या,
1: आप प्रकाश चंदी ये समझ सकते

0: हैं कि आज ये समस्या है तो आज से आने वाले 20 या 30 वर्षों बाद ये समस्या और बढ़ेगी या घटेगी? जाहिर सी बात
1: मैं
0: है बढ़ेगी, जब हम अभी जागरूक नहीं होंगे तो ये समस्या बढ़ेगी और हमारे बच्चों को आने वाले समय में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि उन्हें अपना जो बर्थ प्लेस है, जो जन्मभूमि है, वो छोड़कर फिर कहीं और पलायन करना पड़ेगा।
1: करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैडम जी, हाँ, समस्या बढ़ेगी घटेगी नहीं है,
0: जी,
1: बढ़ेगी।
0: बढ़े और इसको बढ़ने से कुछ हद तक हम प्रयास यदि करें तो रोक भी सकते हैं,
1: हाँ जी, रोक भी सकते हैं। हाँ, ये भी है।
0: या फिर इसी लेवल तक रोकने के लिए हम प्रयास तो कम से कम कर ही सकते हैं।
1: हेलो, हाँ जी,
0: हेलो, जी हाँ, हम सुन रहे हैं
1: हेलो,
0: आपको प्रकाश जी। हेलो, लगता है प्रकाश जी को हमारी आवाज़ आनी बंद हो गई है। तो नेहा, जब तक अगले कॉलर हमसे जुड़ते हैं तो हम श्रोताओं आपको बता दें कि जल संचयन, आप जैसे मतलब आपके पास जो धन आप कमाते हैं उसकी आप सेविंग करते हैं ताकि आने वाले वक्त में उस धन का आप इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हम सभी धन कमाने में लगे हुए हैं। तो आप इसी तरह, ठीक इसी तरह जल का भी संचयन कर सकते हैं, उसकी सेविंग कर सकते हैं और आने वाले वक्त में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं अगले कॉलर कौन है।
2: हेलो जागरूक श्रोता,
0: हेलो जागरूक श्रोता,
2: हेलो जागरूक श्रोता,
0: हेलो हेलो, लगता है किसी कॉलर ने सॉन्ग प्ले करके छोड़ दिया है और बात नहीं कर रहे हैं नेहा। श्रोताओं, जल संचयन आज बहुत जरूरी है, क्योंकि जल संचयन अगर नहीं होगा तो आप जानते हैं कि हमें
2: हेलो
0: बिजली
2: जागरूक
0: पानी
2: श्रोता,
0: की समस्या भी आ सकती है। तो श्रोताओं, अगर आप जल संचयन नहीं करेंगे, बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से नहीं रोकेंगे, तो आप सोच नहीं सकते कि कल का भविष्य क्या होगा। अगर हमने लगातार इस बहते हुए जल को नहीं रोका तो भूजल स्तर गिरेगा, वो गिरेगा तो पेयजल की उपलब्धता भी कम हो जाएगी, खेती के लिए पानी नहीं मिल पाएगा। बिजली और पानी की बचत अगर नहीं करेंगे तो आप सोचिए कि भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, और अंधकारमय भविष्य आप सोच सकते हैं, क्योंकि पानी की ज़रूरत, जब पानी को संचय करते हैं तो उससे बिजली बनती है, और इससे खेती की समस्या, मतलब खेती में जो पानी की समस्या होती है सिंचाई में, तो उसको राहत मिलती है, और कई क्षेत्रों में सूखे की समस्या होती है उसको भी राहत मिलती है।
2: हेलो हेलो जागरूक श्रोता,
0: थोड़ा तेज बात करेंगे आप? हेलो
2: हेलो जागरूक श्रोता,
1: हो गया।
0: हेलो
1: नमस्कार
0: जी, नमस्कार, कौन श्रोता बात कर रहे हैं हमसे?
1: जी, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से अरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
2: अच्छा तोमर जी, कैसे हैं
1: जी,
2: आप?
1: बहुत अच्छी तरह आपकी
2: तोमर
1: दुआ
2: जी,
1: की, फिर तो
2: कॉल
1: कौन।
2: तो आपने हमारे कार्यक्रम में कर दी, लेकिन हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप जल्दी से हमें बताइए कि आपने आज का हमारा टॉपिक सुना है।
1: बिल्कुल सुना है, पानी को संचयन करने के बारे में बता रहे हैं
2: जी
1: आप,
2: हाँ
1: जल
2: जी हाँ,
1: संरक्षण की
2: जल
1: मतलब।
2: संरक्षण, जल संचयन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि आज के समय में वर्षा जल संचयन को हर नागरिक की जिम्मेदारी मान सकते हैं, या क्यों माना
1: बिल्कुल
2: जाता
1: मान
2: है?
1: सकते, बिल्कुल मान सकते हैं। हम लोग किसान, हम मेड़ बंधान करके जल संचयन करते हैं, चक्का
2: जी
1: पानी गड्ढे बनाकर उनमें डालते हैं, उससे करते हैं।
2: जी हाँ
1: व्यर्थ
2: जी हाँ
1: पानी बहता हुआ, व्यर्थ पानी बहता सुग्रह बाट काम प्रयोग करते हैं,
2: जी हाँ,
1: तो हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, जल का बर्बाद नहीं
2: सदुपयोग,
1: होना
2: हमेशा
1: चाहिए।
2: सदुपयोग करना चाहिए जल का, क्योंकि आजकल जो है जनसंख्या जो है लगातार देखिए बढ़ रही है, शहरों का
1: जी,
2: विस्तार हो रहा है और भूजल का बहुत ज्यादा
1: स्तर घट
2: दोहन हो
1: रहा
2: रहा
1: है।
2: है। जी हाँ, और दूसरी तरफ हम जलवायु परिवर्तन भी आजकल देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण भी वर्षा का जो स्वरूप है पहले की
1: जी
2: अपेक्षा, आप समझ सकते हैं आप किसान हैं, तो बहुत ज्यादा बारिश पर भी असर पड़ा है। कभी कभी बहुत ज्यादा
1: जो
2: बारिश हो जाती है और कभी लंबे समय तक
1: बिल्कुल
2: हम
1: कम
2: देखते हैं कि
1: होती है।
2: सूखा ही पड़ा रहता है।
0: तो जल्दी से तोमर
1: जी,
0: जी आप बता दीजिए कि आप इसके लिए क्या प्रयास करते हैं और हमारे अन्य श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: महोदया, मैं इसके लिए मेड़ बंधान करके खेती करता हूँ और गड्ढे बना के छत का पानी उसमें डालते हैं,
0: बहुत
1: और
0: अच्छा,
1: पोखर तालाब उनको जीवंत करते हैं। गांव में जितने पोखर तालाब उनको

0: सफाई करके उन्हें जीवंत करते हैं फिर।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात
2: बहुत
1: आपने
2: खूबसूरत
1: कही।
2: बात आपने कही और बहुत अच्छा प्रयास आप करते हैं।
1: जी हाँ
2: तोमर जी कार्यक्रम में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय हमें आपसे बात करने की और परमिशन नहीं देता है।
0: नमस्कार
2: नमस्कार नमस्कार। श्रोताओं, बूंद बूंद मिलकर ही सागर बनता है और छोटी छोटी कोशिशें बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल फरीना, और इसीलिए कहा जाता है कि जल बचाना केवल एक आदत नहीं बल्कि भविष्य को सुरक्षित रखने का संकल्प भी है।
2: हाँ,
1: याद रखिए श्रोताओं, बारिश की हर बूंद प्रकृति का एक अनमोल उपहार है।
2: तो कार्यक्रम के अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जल है तो कल है, ये केवल एक नारा नहीं हमारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ, हमें हर बूंद की जो कीमत है वो समझ लेनी चाहिए। आने वाले कल की जो तैयारी है वो सबसे अच्छी ऐसे ही हो सकती है।
2: तो इसी के साथ कार्यक्रम जागरूक श्रोता अब यहीं पर संपन्न होता है। दीजिएगा मुझे यानी फरीना
1: और मुझे यानी नेहा शर्मा को अनुमति।
2: नमस्कार।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, दिन के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रपट संगीत का ये पहला गीत आपने सुना फिल्म गीत से। आवाज लता मंगेशकर की थी, इंदिवर का लिखा ये गीत था और संगीत था बप्पी लहरी का।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मर्डर से। आमिर जमाल की आवाज में ये गीत है और शब्द रचना सईद कादरी की है, संगीत अनु मलिक का।

कभी यादों में, कभी ख्वाबों में और कभी दिल की धड़कनों में, वो हर पल साथ रहता है बस तसव्वुर के आलम में। इन्हीं खूबसूरत एहसासों को बयां करता है कार्यक्रम का अगला गीत। गीत हमने लिया है फिल्म एतराज से। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत है श्रोताओं। समीर के लिखे बोल और संगीत हिमेश रेशमिया का है।

एतराज फिल्म में अभी हमारे श्रोताओं ने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक को। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कृष्णा कॉटेज से। श्रेया घोषाल की आवाज़ में एक प्यारा सा गीत है और इस गीत के बोल लिखे हैं नीलेश मिश्रा ने, संगीत अनु मलिक ने दिया है।

श्रोताओं, कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनकी गहराई दिल खुद महसूस करता है। जब किसी से बेपनाह प्यार हो जाए तो उसकी खुशी ही अपनी खुशी बन जाती है और उसका हर गम अपना गम लगने लगता है। आइए एक और खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म 1920 इविल रिटर्न से। महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत है, शकील आज़मी की शब्द रचना और चितरंजन भट्ट का संगीत है।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूं और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोडायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
3: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद रम की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़

0: तो 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है
1: जी।
0: जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
1: जी।
0: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
1: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
0: जी श्रोताओ, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
1: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
0: जी तो श्रोताओ, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
1: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओ, कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तप भूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ आ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।

0: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी, मतलब।
1: नव्या अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित तुम बताओ।
2: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
0: रुको, मैं बताती हूँ।
1: तुम बताओ।
0: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
1: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था, और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
3: टैथिस महासागर।
1: वाह,
0: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
1: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
0: अलग होकर खिसकने लगे?
1: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
0: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
1: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
2: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
0: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
1: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
2: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
0: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
1: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
0: जी।
1: देखो विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
0: फिर क्या हुआ सर जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
1: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
0: अच्छा?
1: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
2: सर मैं कुछ बताऊँ इसके बारे में?
1: हाँ बेटा क्यों नहीं।
2: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
1: बहुत अच्छे, और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
0: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथिस सागर का क्या हुआ?
1: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं?

0: कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
3: अच्छा, तो ये बात है।
1: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
1: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
1: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
1: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
1: आजा, आजा, आजा।
0: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
2: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
0: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
2: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
0: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
0: दादी ने पूछा।
2: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा?
0: दादी काफी प्रभावित हुई।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
0: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
2: बस काफी है दादी,
0: उसने रूखे स्वर में कहा।
2: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
0: दादी ने पूछा।
2: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया, और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख

0: भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती ना, तो उसने शेर मारा था।
0: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
0: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामी नाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
3: अच्छा।
1: राजम उनके साथ था, अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया, दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
0: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
0: दो शेर राजम पर झपटे थे,
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
1: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
3: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
0: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
2: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं राखी आपका स्वागत करती हूँ आपके कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। दोस्तों, मुझे बेहद ही अच्छा लगता है जब आपका फोन हमारे पास आता है और आपके सुझाव और विचार भी हमें मिलते हैं। और आज फिर हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी में आगे जाने से पहले आप हमारा फोन नंबर एक बार नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
0: दोस्तों, हमारी कहानी का शीर्षक है डिप्रेशन। कैसे एक महिला तनावग्रस्त या मानसिक तनाव का शिकार हो जाती है। आज हम एक ऐसे ही परिवार से मिलेंगे जिसमें एक महिला पारिवारिक समस्या के चलते मानसिक तनाव का शिकार हो गई और फिर कैसे वह उससे बाहर आए। इस कहानी से बहुत सी महिलाएं जो ऐसे ही तनाव का शिकार हो गई हैं या हो जाती हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर।
2: अरे बहू, कहाँ है? अब तक क्या सो रही है? सुबह की चाय कब मिलेगी? सर में दर्द हो गया है, सुबह की चाय का तो पता ही नहीं। अब तो सूरज भी सर चढ़ाया है। पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया है।
3: जी माँ जी, अभी आई।
2: कितनी देर से आवाज दे रही हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं दिया?
3: बस माँ जी, मैं ना वो नहा रही थी।
2: चल अब जल्दी कर, चाय बना दे और विजय का नाश्ता भी तैयार कर, उससे भी ऑफिस के लिए देर हो जाएगी।
3: जी माँ जी, बस जल्दी से मैं चाय लाती हूँ और विजय का नाश्ता भी तैयार कर देती हूँ।
4: चित्रा, ओ चित्रा, अरे कहाँ रह गई? मेरा नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? ऑफिस के लिए देर हो रही है, जरा जल्दी करो ना।
3: जी जी, बस अभी लाई।
2: हे भगवान, रोज रोज की इसकी देर की आदत पड़ गई है, कोई भी काम समय पर नहीं करती। ये बहू तो अभी से ही इतनी आलसी हो गई है, मेरे बेटे को भी खाना समय पर नहीं देती, रोज ऑफिस के लिए देर हो जाती है। मैंने तो बड़े अरमान सजा रखे थे कि जब बहू आएगी तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन इसके आने से तो मेरी चिंता और बढ़ गई है। अब मैं क्या करूं?
0: चित्रा अपने सास की बातों को सोच सोच कर मन ही मन बहुत दुखी और निराश हो गई। ये बातें उसके लिए बोझ सी बन गई और उसके दिल में घर कर दी गई। और चित्रा अब खोई खोई सी रहने लगी और किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी और उसके स्वभाव में भी अब सभी को चिड़चिड़ापन दिखने लगा था।
3: माँ जी, आज के खाने में क्या बनाना है?
2: हे भगवान, अब इसको भी ये मैं बताऊँ? इतना समय हो गया है तुझे इस घर में, तुझे इतना भी नहीं पता, तो इतना भी नहीं सीखी, और तुझे अपनी पति की पसंद भी नहीं मालूम अभी तक, जो मुझसे पूछ रही है।
4: माँ, ओ माँ, कहाँ हो आप?
2: अरे बेटा, आ गया तू? बैठ बैठ, तू थक गया होगा, बैठ। अरे बहू, सुनती हो? बेटे के लिए पानी लाओ, ऑफिस से आ गया है।
3: हाँ माँ जी, लाई। ये लीजिए, ठंडा पानी पीजिए और मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ।
4: हाँ हाँ, ठीक है चित्रा, चाय बनाओ। और आज के खाने में क्या बनाया है?
3: जी मैंने है ना आज आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, गट्टे की।
2: अरे तुझे इतना भी नहीं पता, सुबह से ही विजय का पेट खराब था और तूने फिर से बेसन की सब्जी बना दी, एक बार तो पूछ तो लेती।
3: पर माँ जी, मैं तो आपसे सुबह पूछने आई थी ना, आपने मुझे यह कहा था कि मुझे इतना समय हो गया है घर में, तो मैंने विजय के पसंद की सब्जी बना दी। और मुझे तो ये पता भी नहीं था कि विजय का पेट खराब है, नहीं तो मैं उनके लिए कुछ और बना देती।
4: चित्रा, तू माँ से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? क्या तुम्हें यह भी पता नहीं कि माँ से कैसे बात करनी है?
2: देख लिया बेटा इसका रवैया बात करने का तूने? तूने तो आज देखा है और सुना है, मैं तो पीछे से रोज सहती हूँ, मुझे रोज सुनना पड़ता है, फिर भी मैंने कभी तुझे इसकी शिकायत नहीं की, आज तो तूने खुद ही देख लिया ना।
4: चित्रा, क्या तुम्हें घर में किसी ने नहीं सिखाया कि बड़ों से किस तरह बात करते हैं? और तुम्हारी तो सास माँ के समान है, तुम्हें अच्छे से बात करनी चाहिए और अगर वो कुछ कह भी दे तो तुम्हें सह लेना चाहिए, क्योंकि वो तुमसे बड़ी है।
3: अरे मैंने तो बस खाने की बात कही थी, इसमें आप दोनों इतना बुरा क्यों मानने लग गए? मैंने कौन सी उल्टी सीधी बात कही है? मैंने तो सही कहा है ना।
2: अरे रे, अब तो मेरे बेटे से भी तो इस तरह से बात करने लग गई। तू तो अपनी तमीज ही भूल गई है बात करने की। छोटे बड़ों से कैसे बात करते हैं, अपने पति से कैसे बात करती है तू, तुझे ये भी नहीं पता।
0: चित्रा अब और भी चिड़चिड़ी सी हो गई और वह अपने आप से ही बातें करने लग गई। ऐसा लग रहा था कि वह मानसिक तनाव में जा रही है। दिन ब दिन वह खोई खोई सी रहने लगी और मनी मन यह सोचती थी कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरा पति भी मुझे नहीं समझता, मेरी सास मुझे गलत समझते हैं, अब मैं अपने पति को कैसे समझाऊं। वह बिल्कुल इन बातों में गुमसुम और निराश हो गई। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में रहने लगी और उसके मन में एक युद्ध सा चलता रहता था। उसके मन में लगातार अपने आप को हानि पहुंचाने जैसी बातें उठ रही थी, जैसे आत्महत्या या खुद को हानि पहुंचाना। इस कारण उसके शरीर में भी कमजोरी, बीमारी और सर में भी दर्द रहने लगा और उसे कुछ होश नहीं रहता था कि वह क्या कर रही है।
4: अरे चित्रा, सुनती हो, एक खुशखबरी है। गांव में मेरे ताऊ के लड़के की शादी पक्की हो गई है और अगले ही हफ्ते हम सबको गांव जाना है शादी में।
3: जी बहुत अच्छी बात है, हम जरूर जाएंगे।
4: क्या हुआ चित्रा, तुम इतनी खुश नहीं लग रही हो, सब ठीक तो है ना?
3: जी ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब ठीक है।
4: अच्छा ठीक है, मैं ये खुशखबरी माँ को भी देकर आता हूँ।
3: विजय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
4: जी डॉक्टर, जरूर बताएं, क्या बात है?
3: दरअसल मुझे तुमसे चित्रा के बारे में कुछ बात करनी है।
4: चित्रा के बारे में आप क्या बात करना चाहते हैं डॉक्टर, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना?
3: क्या तुमने कभी चित्रा पर ध्यान दिया है कि वह उदास और गुमसुम से क्यों रहती है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या तुमने कभी इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की है? विजय, मैं तो चित्रा से अभी ठीक से मिली भी नहीं और मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी चिकित्सक हूँ महिलाओं की, इसलिए मुझे उसे देखकर अंदाजा लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मैंने उससे अकेले में कुछ समय बातचीत की और उसने मुझे सब कुछ बता दिया।
4: ये अब क्या कह रही हैं डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है, चित्रा तो बिल्कुल ठीक लगती है और मैंने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी चित्रा से, या मुझे चित्रा ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया।
3: विजय, चित्रा तुम्हारी पत्नी है और तुमसे बेहतर उसे कौन समझ सकता है? अगर तुम ही उसे नहीं समझोगे तो फिर उसे कौन समझेगा, क्योंकि शादी के बाद एक पति ही अपनी पत्नी को समझ सकता है या एक पत्नी ही एक पति को समझ सकती है।
4: हाँ आप सही कह रही हैं डॉक्टर, आपकी बातें सुनकर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। मैंने चित्रा की कभी कोई बात नहीं सुनी और उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। जब भी वह बोलना चाहती थी मैंने उसकी बात को काट दिया और कभी उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है डॉक्टर, अब मैं क्या कर सकता हूँ?
3: विजय, अब तुम्हें ये ध्यान देना होगा कि तुम्हारी पत्नी को ऐसी कौन सी बातें हैं जो परेशान कर रही हैं या उससे अंदर ही अंदर चोट पहुंचा रही है। क्यों उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, क्यों आजकल वो गुमसुम सी रहती है और खोई खोई सी रहती है, और क्यों वो इतनी परेशान रहती है? क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि वह एक डिप्रेशन में है? और चित्रा ने मुझे ये भी बताया कि उसने बहुत बार आत्महत्या करने का भी सोचा है।
4: क्या, ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर, चित्रा ने तो कभी मुझे इस बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया, ऐसा कैसे हो सकता है?
3: जो मैंने चित्रा से सुना मैं तुमसे वही कह रही हूँ। विजय, उसे कुछ ऐसी बातें हैं जो डिप्रेशन में ले गई हैं। अब तुम ही उसे वापस डिप्रेशन से बाहर ला सकते हो।
4: वो कैसे डॉक्टर, आप मुझे बताएं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो हमेशा अपनी माँ की बात सुनी और उसे ही सही समझा और चित्रा पर कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही उसकी कोई

0: बात को मैंने सुना, यही मुझसे गलती हुई है। डॉक्टर, अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ।
1: चिंता मत करो विजय, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। तुम अभी भी अपनी पत्नी चित्रा को ठीक कर सकते हो। बस तुम्हें एक काम करना होगा, उसके साथ समय बिताना होगा, उसकी बातों को समझना होगा और जो उसके मन में इच्छाएं हैं, कोशिश करना कि वे तुम पूरी कर सको और इस तरह तुम्हारी पत्नी चित्रा डिप्रेशन से जल्दी ही बाहर आ जाएगी।
2: तो देखा दोस्तों, इस तरह से विजय ने जैसा चिकित्सक ने उसे सलाह दी किया और चित्रा के जीवन में धीरे धीरे अब बदलाव आना शुरू हो गया और विजय अब चित्रा के साथ समय बिताने लगा और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करने लगा। इस तरह देखते देखते कुछ महीनों में चित्रा बिल्कुल ठीक हो गई और पहले के समान उनके घर में खुशहाली लौट आई और उनका रिश्ता भी पहले से और अच्छा हो गया क्योंकि वह अब एक दूसरे को समझने लगे थे। श्रोताओं, मैं आपको अवसाद के बारे में कुछ और बातें बताना चाहती हूँ। यदि आप किसी अपने पड़ोसी, मित्र या रिश्तेदार या बच्चे या माता पिता किसी को भी इस तरह से देखें, तो आप उनसे बात करने की कोशिश जरूर करें। एक अवसाद में ग्रसित व्यक्ति सदैव अकेला रहना पसंद करेगा, उसका मन उदास रहेगा, उसे खुशी कम महसूस होगी या वह सिर्फ कुछ देर के लिए खुश होगा। वह हर बात के लिए, हर गलती के लिए स्वयं को ही कसूरवार मानेगा। शारीरिक व मानसिक कमजोरी आएगी, किसी काम में ध्यान नहीं लगेगा, या तो भूख बढ़ेगी या कम हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, वह सुबह जल्दी नींद टूट जाएगी। वह व्यक्ति खुद को बार बार मारने की सोचेगा, वह कभी एक परिस्थिति में स्वयं को मारना या खत्म भी कर लेगा। इससे पहले कि हमारा कोई भी प्रियजन हमसे दूर हो, हमें इस कहानी के माध्यम से अवसाद व उसकी जड़ों को समझना चाहिए। वह हमारे परिवार व अपनों की मानसिक बीमारी से हमें उन्हें बचाना चाहिए। न केवल रिया या रोहन बल्कि विद्यार्थी के अलावा घर की महिलाएं या पुरुष या कोई भी जन हो जो स्वयं को अकेला महसूस करता है, आप अपने सबसे करीबी जन से बात करो और आप सभी इसे मजाक या हंसी में ना लें, बल्कि इसे एक बीमारी जो यदि सही से इलाज कराया जाए तो ठीक हो सकती है से सबकी मदद करें।
3: जिस प्रकार गाड़ी चलाने के लिए हमें स्टेयरिंग घुमाना पड़ता है, पहिया, क्लच और ब्रेक इन सब का प्रयोग करना आना चाहिए, उसी प्रकार अपने मन को दृढ़ और स्थिर रखने के लिए आवश्यक है जीवन शक्ति ऊर्जा के मौलिक नियमों को जानने की। जब हमारे प्राण या जीवन शक्ति असंतुलित होती है तो हमारा मन भी भावनाओं के रोलर कोस्टर के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो आज के समय में बहुत से लोगों में दिखाई देता है। ये एक ऐसी चीज है जो अंदर ही अंदर आदमी को परेशान करती रहती है और गंभीर बीमारी है जो नकारात्मक रूप से आपको खराब महसूस कराती है। आपके सोचने के तरीके और आपके कार्य करने के तरीके को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अगर आप किसी चीज में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो शांति रखिए और अपनी सफलता का इंतजार करिए। ये विभिन्न प्रकार की भावनात्मक और शारीरिक समस्याएं पैदा कर सकता है और किसी भी व्यक्ति की कार्य और घर पर कार्य करने की क्षमता को कम कर सकता है।
2: श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने सुझाव और विचार हम तक जरूर पहुँचाएंगे। हमारा नंबर है
4: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955।
2: हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं राखी आप सब से विदा लेना चाहूँगी। हम फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए मुझ राखी की तरफ से आप सभी को प्यार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, दोपहर के 12:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे विदुषी परवीन सुल्ताना का राग शुद्ध सारंग में गायन। विलंबित गत एक ताल व द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित अनिंद्या चटर्जी।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी हमारे श्रोताओं ने सुना विदुषी परवीन सुल्ताना का राग शुद्ध सारंग में गायन। विलंबित गत एक ताल व द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध थी। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित अनिंद्या चटर्जी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में मैं नेहा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। श्रोताओं, प्यार एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना शायद ही कभी मुमकिन हो। ये कभी किसी की मुस्कान में दिखाई देता है तो कभी किसी की खामोशी में सुनाई देता है। श्रोताओं, प्यार सवाल भी है और जवाब भी। इंतजार भी प्यार ही है और सुकून भी प्यार ही है। दिल का रोग भी प्यार ही है और दिल का चैन भी। इन्हीं खूबसूरत जज्बातों को बेहद मासूमियत और मधुरता से बयां करता कार्यक्रम का ये पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म परदेसी बाबू से। श्रोताओं, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में यह गीत है। सुधाकर शर्मा की शब्द रचना और धुन है आनंद राज आनंद की।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, कभी कभी रिश्तों में आई एक छोटी सी नाराजगी भी दिलों के बीच दूरियां बढ़ा देती है, लेकिन सच तो ये है कि जिन्हें दिल से चाहा जाए ना, उन्हें भुलाने की कोशिश भी अक्सर उन्हीं की यादों को और गहरा कर देती है। प्यार में रूठना और मनाना भी उसी प्यार का एक खूबसूरत सा हिस्सा है ना।

0: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में। श्रोताओं, प्यार जब दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है ना, तो उसकी आहट भी बड़ी खामोश सी होती है। बिना कुछ कहे, बिना किसी शोर के कोई धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी धड़कनों और फिर हमारी आंखों में बस जाता है। यही तो है मोहब्बत की सबसे खूबसूरत अदा।

हद कर दी आपने। इस फिल्म का एक गीत आपने सुना उदित नारायण और विभास शर्मा की आवाज में। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम के अंतिम गीत का। ये गीत हमने लिया है फिल्म हंगामा से। बाबुल सुप्रियो की आवाज में ये गीत है। शब्द रचना समीर की है और धुन है नदीम श्रवण की।

श्रोताओं, हंगामा फिल्म के इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं पर संपन्न करने की मुझे यानी नेहा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के एक बजने को है, थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल BSF की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का BSF कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल दंत चिकित्सा आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. On the occasion, the Prime Minister also dedicated to the nation as well as laid the foundation stone of national highway projects worth over 12,470 crore rupees in Haryana. Mr. Modi dedicated the 157-kilometer-long Delhi-Amritsar-Katra expressway. The Greenfield Corridor forms part of the 667-kilometer Delhi-Amritsar-Katra expressway. The expressway will reduce travel time between Delhi and Katra from nearly 14 hours to about 6 hours, while cutting the Delhi-Amritsar journey from about 8 hours to 4 hours. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, over the past 12 years, Indian Railway has witnessed major transformation. He noted that Haryana has witnessed a new phase of development in recent years and has moved forward on the path of progress. Mr. Modi added that the launch of the country's first hydrogen train has given Jind a special place in India's history.
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
3: Speaking on the occasion, Union Railways Minister Ashwini Vaishnav termed the launch of India's first hydrogen-powered train as a historic achievement in the country's technological advancement. He noted that this milestone is the result of a strong national resolve to develop indigenous hydrogen technology. Mr. Vaishnav emphasized that the train is completely environment-friendly with no requirement for diesel or petrol.
4: इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इस टेक्नोलॉजी को अब और दूसरे सेक्टर्स में भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रक इन कार इन स्मॉल फिशिंग बोट, इट कैन बी यूज्ड इन लार्ज माइनिंग ट्रक माइनिंग इक्विपमेंट, इट कैन बी यूज्ड इन डिफेंस आल्सो। सो नाउ वी कैन बेसिकली यूज दिस टेक्नोलॉजी इन मल्टीपल सेक्टर्स विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एनीबॉडी।
3: Prime Minister Modi will visit Jalandhar in Punjab this afternoon, where he will inaugurate and lay the foundation stone of rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. Our correspondent reports that these projects are aimed at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. The Directorate General of Maritime Administration has directed ship owners, ship managers and recruitment and placement service license companies to avoid deploying Indian seafarers on vessels undertaking voyages through the Strait of Hormuz until further orders. The Maritime Administration has issued an advisory on precautionary measures for the safety and security of Indian seafarers in view of the heightened security situation in the Gulf region. The government has convened a meeting with the floor leaders of political parties in the Parliament this Sunday, ahead of the upcoming monsoon session of Parliament. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of Parliament. The monsoon session will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. The Gujarat Anti-Terrorist Squad, ATS, has arrested 5 persons in connection with its probe into a terror module of the Pakistan-based Jaish-e-Mohammed outfit. The arrested persons were identified as Bilal Abid Bhai Shera, Mohammed Ayub Kadiwala, Mohammed Palanpuri alias Khali Ayub Sansara, Shafia Rais Mukti and Mohammed Hassan Kardia. The European Union has expressed serious concern over the human rights situation in Pakistan. It has warned that Pakistan's continued access to trade benefits under the Generalized Scheme of Preferences Plus or GSP Plus will depend on its compliance with international commitments under the revised GSP framework from 2027. And with that, we end this news bulletin.

घर संसार कार्यक्रम सुन रही मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को थारी बहन तनप्रीत की प्यार भरी राम राम। और सुनाओ बहनों, भाई सब कुशल मंगल, घर माँ सब राजी खुशी? भाई बहनों, मैं तो थारी हमेशा से ही सलामती मांगू कि थारे घर में सब ठीक ठाक रहें, खुश रहें, आबाद रहो। भाई और क्या चाहूँ मैं, यही तो चाहूँ कि मेरी बहनें खुश रहें, तभी तो मेरा कार्यक्रम सुनेंगी, है ना बहनों? तो चलिए बहनों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ावेंगे, लेकिन उससे पहले सुने हैं कुछ जरूरी संदेश।

बहनों, फिर से स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम घर संसार माँ। तो बहनों, एक पुराना पेड़ भले ही फल ना दे, लेकिन उसकी छांव सबसे बड़ी ठंडी होवे है। ठीक वैसे ही हमारे बुजुर्ग हमारे घर की वो छांव हुए हैं जिनके बिना हमारा घर संसार अधूरा होवे है। जी हाँ बहनों, आज हम बात कर रहे हैं कैसे हम अपने बुजुर्गों को सम्मान देकर और उनकी सही देखभाल करके अपने घर को स्वर्ग बना सके हैं। बहनों, सिर्फ पैर छूने से सम्मान ना होवे, बुजुर्गों को सबसे बड़ी जो उनकी जरूरत होवे ना, वो बखत होवे। बखत ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होवे। बहनों, उनके पास सब कुछ हो सके है, लेकिन उनके पास अकेलापन की जो शिकायत रवे ना, वो हमेशा ही उनको रवे। बहनों, कम से कम 15 से 20 मिनट उनके पास बैठा करो, उनकी पुरानी कहानियां सुनो। उनको बहुत अच्छा लगे बहनों, जब हम उनसे उनकी कहानियां सुने उनके पुराने अपने जमाने की, तो उनको बहुत ही अच्छा लगे कि मेरे हमसे हमें कोई सुन रहा है ना। तो बहनों, अच्छा, घर का कोई भी जो छोटा बड़ा काम में हो, उनकी राय जरूर लें। जब हम उनसे पूछते हैं ना, बाबूजी, माताजी, आपकी क्या राय है, तो उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस होवे। उन्हें ऐसा लगे कि उनकी भी कुछ हिस्सा है, वो भी कुछ, उनको भी अच्छा लगे, उनको अच्छा एहसास होवे कि उनका परिवार में कोई उनका हिस्सा है, वो बड़े हैं घर के। लेकिन आज की पीढ़ी तो मोबाइल फोन में इतनी व्यस्त हो जा कि उनको घर में बुजुर्गों का, छोटे बड़ों का, किसी का भी ध्यान ना रहे।

0: अंतर्गत हम आपको सुनावे हैं आपके पसंदीदा लोकगीत। और बहनों, आप हमें फ़ोन कर सकती हैं, अभी थोड़ी देर में आप हमें कॉल कर सकती हैं, हम आपको सुनवाएंगे आपके मनपसंद लोकगीत। और आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, हमारा फ़ोन नंबर है 9457078288। तो बहनों, अपने फ़ोन उठाइए और हमें कॉल करिए और हम आपको आपके मनपसंद लोकगीत जो हैं वो सुनवाएंगे। तो चलिए देखते हैं, एक फ़ोन आ रहा है और किसका फ़ोन है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं उमा देवी।
0: उमा देवी बोल रही हैं। उमा देवी,
1: जी
0: आपका
1: उमा।
0: स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो आप कहाँ रहती हैं उमा जी?
1: हम सापुरे वतन में।
0: अच्छा, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: हमारे घर में सासू माँ है, जेठ जेठानी है,
0: जी।
1: पति हैं, बच्चे हैं।
0: अच्छा, आप संयुक्त परिवार में रहती हैं।
1: हाँ, ज्वाइंट फैमिली है हमारी।
0: आपको कैसा लगता है ज्वाइंट फैमिली में रह के, संयुक्त परिवार में रह के?
1: बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार मिलता है ज्वाइंट फैमिली में।
0: आपके घर में तो बड़े बुजुर्ग भी हैं, है ना?
1: हाँ,
0: तो आपको उनकी उनसे क्या उम्मीद है, मतलब आप उनकी सेवा कैसे करती हैं, या उनसे आपको कैसा लगता है उनके साथ रहना?
1: उनके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहीं भी जा भी नहीं पाती हूँ, मतलब उनके जैसा प्यार मुझे कहीं नहीं मिल पाता।
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो हमारे एक तरह से पेड़ के समान होते हैं, कि जैसे हमें उनसे बहुत अच्छी ठंडी छाया मिलती है ना? फल चाहे ना दें, लेकिन उनसे हमें छाया मिलती है। और उनका जो रहना है हमारे घर में, एक हमें उनसे बहुत मतलब सुकून रहता है कि हमारे घर में हमारे
1: बहुत
0: बड़े
1: अच्छा।
0: बुजुर्ग हैं। उनका
1: जी
0: आशीर्वाद ही
1: हाँ,
0: हमारे लिए बहुत होता है कि हमारे घर में
1: बहुत
0: हमारे।
1: अच्छा।
0: जी जी
1: जी
0: अच्छा, आपने हमें कॉल किया क्योंकि आप कोई ना कोई लोगी सुनना चाहती होंगी।
1: हाँ, लोकगीत ये वाला सुनना चाहती हूँ, बहुत फेवरेट है। खिलौना
0: जी बताइए।
1: जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो।
0: जी, ये हमारा जो कार्यक्रम है ना, वो हम सिर्फ लोकगीत ही सुनवाते हैं, ये फिल्मी गीत है।
1: अच्छा,
0: अगर कोई आपको लोकगीत पसंद है तो वो बताइएगा कि हम जरूर सुनवाएंगे उसको।
1: ये वाला सुना दो, सुनी है मेरी बगिया।
0: सुनी है मोरी बगिया। जी जी
1: हाँ,
0: जरूर सुनवाएंगे आपको, आपका मनपसंद लोकगीत सुनवाएंगे। अभी आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा ये लोकगीत।
1: सुना।

0: हेलो,
1: हेलो। हाँ जी,
0: आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं प्रिया बोल रही हूँ।
0: कहाँ से बोल रहे हो आप प्रिया? बरखेड़ा
1: मैं बरखेड़ा गांव से बोल रही हूँ।
0: गांव से बोल रहे हो? अच्छा, क्या करती हो
1: हाँ
0: आप?
1: जी, मैं खेती बाड़ी करती हूँ
0: खेती बाड़ी करते
1: और
0: हो?
1: घर में, हाँ जी, और
0: अच्छा,
1: घर परिवार देखती हूँ।
0: कौन कौन है आपके घर में?
1: मेरे घर में मेरे सास ससुर, मेरा पति, मेरे जेठ जेठानी और उनकी बच्ची।
0: अच्छा, तो
1: हाँ
0: खेत
1: जी,
0: में
1: खेत
0: क्या करते हो आप?
1: में चावल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं।
0: अच्छा, और अच्छा प्रिया, आपने बताया कि आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, आपके सास ससुर हैं, आपके जेठ जेठानी हैं, तो आपको कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छा लगता है, उनके रहने से घर में सुकून होता है और चहल पहल होती है। ऐसा लगता है घर में शांति सी है और घर में कोई है ध्यान रखने वाला।
0: अच्छा, तो घर में बड़े बुजुर्ग होना, उनकी सेवा करना आपको अच्छा लगता है?
1: हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है।
0: देखिए, जब हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। और बड़ों बड़ों की सेवा करना, उनके मार्गदर्शन दर्शन पर चलना तो हमारा कर्तव्य है, और उनका जो हमारे ऊपर साया है वो सबसे बड़ी बात है ना?
1: हाँ जी,
0: तो आप कैसे करती हैं उनकी सेवा, क्या करते हो आप?
1: उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना।
0: ये बहुत ज़रूरी है कि उनका ध्यान रखना, उनको खाने पीने का, उनको दवाइयों का ध्यान रखना। तो
1: हाँ
0: चलिए
1: जी,
0: प्रिया, आप बहुत अच्छा करती हैं और एक संयुक्त परिवार में रहती हैं। चलिए बताइए, आप कौन सा लोकगीत सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने पसंद का कोई सा भी लोकगीत सुना दीजिए।
0: कोई सा भी सुना दें तो चलिए, सुनिए प्यारा सा लोकगीत सुनिए। धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ठीक है, ठीक है।

0: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रीता चौधरी, देवराज आई एंड चाइल्ड केयर सेंटर बिजनौर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें। डॉक्टर, यदि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या उसे स्कूल भेजना चाहिए?
1: यदि बच्चे को बुखार, छींके, लगातार खांसी, कमजोरी या उल्टी जैसी शिकायतें हों तो उसे एक दो दिन घर पर आराम करने देना बेहतर होता है। बीमार बच्चे को स्कूल भेजने से उसके ठीक होने में अधिक समय लग सकता है और संक्रमण अन्य बच्चों तक भी फैल सकता है। पर्याप्त आराम, पर्याप्त तरल पदार्थ, पौष्टिक भोजन और समय पर इलाज बच्चे को जल्दी स्वस्थ होने में मदद करते हैं। केवल उपस्थिति या परीक्षा की चिंता में बच्चे के स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चे की सेहत हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए।
0: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
2: बहनों, में बात कर रही थी कि आजकल के जो बच्चे हो गए ना, वो अपना मोबाइल में इतना व्यस्त रहे कि उन्हें बड़े बुजुर्गों की कोई परवाह ना होवे। मैंने बुजुर्गों की देखभाल को तो मतलब सिर्फ रोटी देना कोना, उनकी छोटी बड़ी बात सुननी पड़े, कई बार वे चिड़चिड़े हो जा। इसका कारण होवे उनकी उम्र। मैंने ज्यों ही अपने बच्चों को प्यार करें ना, मैंने ऐसे ही उन बुजुर्गों ने भी प्यार और दुलार की जरूरत होवे। बुजुर्गों के अनुभव से ही तो घर में बरकत होवे। मैनु उनकी दवा टाइम पे दो, उनके खातिर सात्विक और पौष्टिक भोजन दो। आज के टाइम में बहनों, सरकार भी बुजुर्गों के खातिर कई नेशनल एल्डरली केयर प्रोग्राम जो है वो चला रही, जिनके बारे में थारे जानकारी होना बहुत ही जरूरी हो। बहनों, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या उनके लिए हम आजकल जो है वो जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके खातिर गांव-गांव में उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाएं, तो हमें सब वो जानकारी जरूर होनी चाहिए बहनों। तो चलिए बहनों, देखते हैं एक और कॉल आ रही है, तो आपको सुनवाते हैं लोकगीत अभी। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप?
3: जी, मैं वीना राजपूत बोल रही हूँ।
2: वीना जी, नमस्ते। वीना जी,
3: नमस्ते जी।
2: कहाँ से बोल रही हैं आप वीना
3: जी? मैं गुहावर हल्लू से बोल रही हूँ।
2: गुहावर हल्लू से बोल रही हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें कॉल किया, आपका शुक्रिया। और गुहावर जी, वीना जी बताइए कि आपके घर में कौन कौन है?
3: जी, घर में तो बस हम दोनों ही रहते हैं, मैं और मेरे पति।
2: अच्छा, आप और आपके पति रहते हैं, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे कहाँ हैं वीना जी?
3: बच्चा हरिद्वार रहता
2: है। अच्छा, बच्चे बाहर रहते हैं, आप दोनों रहते हैं घर में?
3: हाँ हाँ जी।
2: तो वीना जी, आपने हमें कॉल किया है, तो आप कौन सा लोकगीत सुनना पसंद करेंगी?
3: वो पूर्वा कौन सा है वो?
2: उर बाजे दिल्ली जी, जरूर सुनवाएंगे आपको आपका पसंदीदा लोकगीत। लेकिन आप बताइए कि आप क्या करती हैं?
3: जी, मैं तो बस घर पर रहती हूँ, पशु प्रेमी हूँ, समाज का काम थोड़ा बहुत कर लेती हूँ।
2: अच्छा, चलिए। आपके पति क्या करते हैं?
3: पति भी घर में ही रहते हैं।
2: जी जी, अच्छा।
3: खेती बाड़ी सब ठेके पे दे रखी है, अपने घर में ही रहते हैं।
2: अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं जी।
3: हाँ जी,
2: चलिए बहुत अच्छी बात है। और चलिए आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा लोकगीत, उर बाजे दहलीज।
3: जी जी
2: जी, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: जी जी।

0: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रीता चौधरी, देवराज आई एंड चाइल्ड केयर सेंटर बिजनौर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, स्कूल फिर से खुल गए हैं और बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है, ऐसे में बच्चे अचानक बार बार बीमार क्यों पड़ने लगते हैं?
1: यदि बच्चे को बुखार, छींके, लगातार खांसी, कमजोरी या उल्टी जैसी शिकायतें हों, तो उसे एक दो दिन घर पर आराम करने देना बेहतर होता है। बीमार बच्चे को स्कूल भेजने से उसके ठीक होने में अधिक समय लग सकता है और संक्रमण अन्य बच्चों तक भी फैल सकता है। पर्याप्त आराम, पर्याप्त तरल पदार्थ, पौष्टिक भोजन और समय पर इलाज बच्चे को जल्दी स्वस्थ होने में मदद करते हैं। केवल उपस्थिति या परीक्षा की चिंता में बच्चे के स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चे की सेहत हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए।
0: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
2: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो जी, फ़ोन डिसकनेक्ट हो गया लग रहा है, तो चलिए फिर देखते हैं, आता है तो फ़ोन आपको एक और। हेलो हेलो हेलो हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो तो बहनों, आज के कार्यक्रम ने कहा सीख मिली तुम्हें भी, घर के बुजुर्गों ने हमेशा मान सम्मान दें, उनकी पूरी देखभाल करना हमारा फर्ज हो बहनों। जब भी उनकी मुस्कान जो है वो बनी रहेगी, तभी ही अपनों जो घर संसार हो है वो असली मायने में स्वर्ग बनोगा। बहनों, मैं थारे से बस यही कहना चाहूँ कि आज हम जो बोएंगे ना, कल वही हम काटेंगे। आज जैसा सम्मान हम अपने बुजुर्गों को देंगे, माता पिता को देवेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे वही सीखेगी बहनों। तो हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है, उनकी इज्जत करनी है। और देखते हैं किसका कॉल आ रहा है। हेलो हेलो हेलो तो बहनों, आज एक और दिवस है जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है, और यह दिन बहनों हमें याद दिलावे है कि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार, समान और न्याय मिलना जो बहुत ही जरूरी हो है, चाहे वह एक महिला है, पुरुष है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। और बहनों, न्याय केवल अदालत तक सीमित ना है, न्याय का मतलब हो वह हर व्यक्ति के साथ ईमानदारी, बराबरी और सम्मान का व्यवहार। यदि किसी महिला को या किसी बहन के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, किसी बेटी की पढ़ाई रोकी जा, किसी मजदूर को उसकी मेहनत की पूरी मजदूरी ना मिले या किसी बुजुर्ग की उपेक्षा की जा, तो यह अन्याय होवे बहनों। गांव का विकास बहनों तभी संभव हो सके जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के खातिर साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे। यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप ना रहें, ग्राम पंचायत, महिला हेल्पलाइन, पुलिस या संबंधित सरकारी विभाग से सहायता जरूर लें बहनों। आज कानून जो हमारी बहनों के खातिर, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण अधिकारों और योजनाएं जो हैं वो उपलब्ध करावे है। तो बहनों, आपको अब घड़ी की सुइयां जो हैं वो मुझे इशारा कर रही हैं कार्यक्रम संपन्न करने का। आपको आज का हमारा कार्यक्रम कैसे लगा, आप हमें पत्र जरूर लिखेगा बहनों। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम घर संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन 246763। इसी के साथ हम बहन तनप्रीत को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। बहनों, राम राम।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम लोकधारा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वीरेंद्र सिंह विष्ट के गाए जौनसारी लोकगीत।

0: तक भी फैल सकता है। पर्याप्त आराम, पर्याप्त तरल पदार्थ, पौष्टिक भोजन और समय पर इलाज बच्चे को जल्दी स्वस्थ होने में मदद करते हैं। केवल उपस्थिति या परीक्षा की चिंता में बच्चे के स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चे की सेहत हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए।
1: यह संदेश एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रीता चौधरी, देवराज आई एंड चाइल्ड केयर सेंटर बिजनौर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें। डॉक्टर, यदि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या उसे स्कूल भेजना चाहिए?
0: यदि बच्चे को बुखार, छींके, लगातार खांसी, कमजोरी या उल्टी जैसी शिकायतें हों तो उसे एक दो दिन घर पर आराम करने देना बेहतर होता है। बीमार बच्चे को स्कूल भेजने से उसके ठीक होने में अधिक समय लग सकता है और संक्रमण अन्य बच्चों तक भी फैल सकता है। पर्याप्त आराम, पर्याप्त तरल पदार्थ, पौष्टिक भोजन और समय पर इलाज बच्चे को जल्दी स्वस्थ होने में मदद करते हैं। केवल उपस्थिति या परीक्षा की चिंता में बच्चे के स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चे की सेहत हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए।
1: यह संदेश एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
2: लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वीरेंद्र सिंह विष्ट के गाए जौनसारी लोकगीत।

श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ आज का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा, जिसके अंतर्गत आज आपने सुने वीरेंद्र सिंह विष्ट के गाए जौनसारी लोकगीत। ये आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
0: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में ही डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ही ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
4: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म और मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का रखेंगे।
1: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनकी आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
6: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित यह प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां और आज का अंक लेकर उपस्थित हूँ मैं, आप सभी की रेडियो साथी नेहा शर्मा। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहली कव्वाली हमने ली है फिल्म ये दिल आशिकाना से। साबरी ब्रदर्स, सोनू निगम, अलका याग्निक और तौसीफ की आवाज़ में ये कव्वाली है। समीर की लिखी, शब्द रचना और नदीम श्रवण का संगीत।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं हीरो फिल्म से ये कव्वाली लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में। आनंद बख्शी की शब्द रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से ये कव्वाली। लता मंगेशकर की आवाज में ये कव्वाली है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से ये कवाली। कार्यक्रम चल रहा है फिल्मी कवालियाँ और हमारे श्रोताओं को अब हम सुनवा रहे हैं फिल्म बजरंगी भाईजान से ये कवाली। अदनान सामी की आवाज़ में ये कवाली है श्रोताओं। कौसर मुनि ने शब्द रचना की है और इस कवाली का संगीत दिया है प्रीतम ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये कवाली।

और श्रोताओ, बजरंगी भाईजान फिल्म की इसी कव्वाली के साथ आज का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां अब यहीं पर संपन्न करने की अपनी साथी नेहा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियाँ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। दोपहर के 3 बजे हैं श्रोताओं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। संध्या 5 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314 है दशमलव 47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं। हमारी आज की संध्याकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। इस क्रम में शिक्षा में सुधार के लिए सरकारी प्रयास के अंतर्गत आज हम आपको जानकारी देंगे। अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास योजना IDMI और प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के विषय में। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत और आज कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं रेणु कोटनाला। श्रोताओं, किसी भी देश के विकास की सबसे मजबूत नींव होती है शिक्षा। जब स्कूलों में अच्छी इमारतें, पर्याप्त कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और दूसरी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो बच्चों के सीखने का स्तर भी बेहतर होता है। इसी सोच के साथ भारत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है श्रोताओं अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास योजना, यानी जिसे हम की IDMI कहते हैं। श्रोताओं, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। इसका उद्देश्य देश के मान्यता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है, ताकि वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर वातावरण मिल सके। श्रोताओं, IDMI योजना का मुख्य लक्ष्य है कि ऐसे विद्यालयों में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर किया जाए। इसके अंतर्गत नई कक्षाओं का निर्माण, अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, दिव्यांगजनों के लिए रैम जैसी सुविधाएं और दूसरी आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाता है। इससे बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। श्रोताओं, अगर बात करें इस योजना के लाभ की कि किसे मिलता है लाभ, तो श्रोताओं ये योजना व्यक्तिगत विद्यार्थियों या अभिभावकों के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि मान्यता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए है। ये ऐसे संस्थान अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा विभाग के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव भेजते हैं। पात्रता की जांच और स्वीकृति के बाद केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। श्रोताओं, इस योजना के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। बेहतर भवन और सुविधाओं से विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है, शिक्षा का स्तर सुधरता है, स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति बनाने में मदद मिलती है और शिक्षकों को भी बेहतर वातावरण में पढ़ाने का अवसर मिलता है। साथ ही ये योजना शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में भी मददगार होती है और महत्वपूर्ण होती है। श्रोताओं, एक मजबूत भारत का निर्माण तभी संभव है जब हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलें और IDMI योजना इसी दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है जो शिक्षा को और भी अधिक सुलभ, समावेशी और प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ये थी जानकारी अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास योजना के विषय में। और आइए अब कार्यक्रम में बात करते हैं प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के विषय में। श्रोताओं, किसी भी देश की तरक्की के लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ नई खोजें और शोध भी बेहद ज़रूरी होते हैं। जब हमारे युवा नई तकनीक विकसित करते हैं, नई नई चीज़ों की खोज करते हैं और समाज की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, तब देश आगे बढ़ता है। और इसी सोच के साथ भारत सरकार शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। ऐसी एक योजना है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप यानी PMRF। श्रोताओं, इस योजना की घोषणा वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई। इसका उद्देश्य देश के होनहार विद्यार्थियों को भारत के अच्छे शिक्षण संस्थानों में रहकर उच्च स्तर का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार चाहती है कि हमारे प्रतिभाशाली छात्र विदेश जाने के बजाय अपने देश में ही पढ़ाई और शोध करें और भारत के विकास में अपना योगदान दें। श्रोताओं, इस योजना का मकसद विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित और तकनीक जैसे क्षेत्रों में बेहतर शोध को बढ़ावा देना है और जब हमारे युवा नई खोज करेंगे तो उसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। इससे नई तकनीक विकसित होगी, नई मशीनें बनेंगी, खेती, स्वास्थ्य, पर्यावरण और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी सुधार होगा। अब बात करते हैं इस
इस योजना से मिलने वाले लाभ की तो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के तहत चयनित विद्यार्थियों को पहले 2 वर्षों तक 70,000 रुपये प्रतिमाह, तीसरे वर्ष 75,000 रुपये प्रतिमाह और चौथे और पांचवें वर्ष 80,000 रुपये प्रतिमाह की फेलोशिप दी जाती है और इसके अलावा शोध कार्य के लिए हर साल 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है। इस राशि का उपयोग प्रयोगशाला, शोध सामग्री, उपकरण और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने जैसी जरूरतों के लिए किया जाता है। अब सवाल ये है कि इस योजना का लाभ कौन ले सकता है और आवेदन कैसे किया जाए। तो श्रोताओं, ये योजना उन विद्यार्थियों के लिए है जो देश के पात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी में प्रवेश ले चुके हैं। इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित पात्रता पूरी करने के बाद पीएमआरएफ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद विशेषज्ञ समिति उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड, शोध क्षमता और शोध प्रस्ताव के आधार पर चयन करती है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा श्रोताओं ये है कि होनहार विद्यार्थियों को अपने शोध के लिए आर्थिक सहायता मिलती है और इससे वे पैसे की चिंता किए बिना पूरी लगन से अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं। उनके शोध से नई तकनीक विकसित होती है और नई खोजें होती हैं और देश की प्रगति को गति मिलती है। तो ये थी जानकारी प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के विषय में। और अब इस जानकारी के बाद आइए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

आशा आप मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताएं एक नज़र डालते हैं हमारे आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। पहली नज़र हमारे आज के शेष कार्यक्रमों पर।

आज रात्रि 9:30 पर श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा हेलो नजीबाबाद। रात्रि 10:30 पर फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड और व्हाट्सएप पर मैसेज पर आधारित कार्यक्रम हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। कार्यक्रम रहेगा रात की हम सफर। संध्या 6:45 पर विविधा के अंतर्गत आशीष भारती की वार्ता श्रोता सुन सकेंगे। विषय रहेगा भारतीय संस्कृति में न्याय की अवधारणा। समय याद रखिएगा संध्या 6:45 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:05 पर गन्ना किसान भाइयों की गन्ना संबंधी समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो गन्ना किसान। युवाणी कार्यक्रम में संध्या 5:15 पर आज का किशन रहेगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज ये शाम गजलों के नाम। आपका सितारा में एकांकी की शुमैला से बातचीत युवा श्रोता सुन सकेंगे और कहानी के उस पार उसने कहा था का एपिसोड 5 प्रसारित किया जाएगा। साथ ही आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। संध्या 7:32 पर इफ्तखार अहमद और साथियों के गायनात हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे हमारे सुगम संगीत के कार्यक्रम में।

गीत संध्या आज रात्रि 8 बजे, रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से क्रम में, और छाया गीत कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:55 पर। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की, और अब एक नज़र हमारे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर।

कल रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल प्रातः 6:05 पर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। 6:30 पर श्री रामचरित मानस गान, 6:40 पर चिंतन और 6:45 पर कल प्रातः काव्यधारा में श्री वीरेश त्यागी का काव्य पाठ हमारे श्रोता सुन सकेंगे। स्वास्थ्य चर्चा में कल प्रातः 7:05 पर जानकारी का विषय रहेगा अनिद्रा रोग कारण लक्षण और बचाव, और खेती की बातें क्रम में कल प्रातः 7:10 पर हम अपने श्रोताओं को जानकारी देंगे आम के फलों की तुड़ाई और ग्रेडिंग विषय पर। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम का समय रहेगा कल प्रातः 7:31 पर। योगेश कुमारी के गाये रुहेलखंडी लोकगीतों का आनंद लीजिएगा हमारे लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है क्रम में कल प्रातः 9:25 पर। दिन में 12:05 पर कम्पेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम होगा जिंदगी लाइव। कल दिन में 1:15 पर महिला जगत कार्यक्रम में क्रम रहेगा आदि आबादी से सजना है मुझे मेरी पाकशाला और सुनिएगा फिल्म संगीत। चंद्रा जोशी के गाये कुमावनी लोकगीतों का आनंद आप ले सकते हैं हमारे लोकधारा कार्यक्रम में कल दिन में 1:45 पर। दोपहर 2:30 पर एक ही गीतकार क्रम में हमारे फनकार रहेंगे गीतकार गोपाल दास नीरज। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: ये शाम यूं ही नहीं इतनी हसीन लगती है, किसी गजल की खुशबू हवाओं में घुलती है। आइए अल्फाजों की महफिल सजाते हैं, आज की खूबसूरत शाम गजलों के नाम करते हैं।
1: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लिसनर्स का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जिसे लेकर हाजिर हो चुकी हूँ मैं आपकी अपनी सखी सहेली और रेडियो पार्टनर वंशिका सोती।
0: और दोस्तों इस खूबसूरत शाम में वंशिका का साथ दूंगी मैं आपकी अपनी रेडियो पार्टनर सलोनी।
1: तो दोस्तों शुक्रवार की इस सुकून भरी शाम में आपका दिल से स्वागत है। पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद वक्त है अब थोड़े से ठहराव का।
0: महफिल सजी है, फिजा में नरमी सी उतर गई है, हर धड़कन जैसे कोई गजल गुनगुनाई है। दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों आज की शाम, क्योंकि सेगमेंट गजलों के नाम लेकर आई है।
1: जी हाँ दोस्तों, सलोनी ने बता ही दिया कि शुक्रवार की शाम रहेगी गजलों के नाम, और इसके साथ ही हम ढेर सारे और सेगमेंट्स भी तो लाए हैं जो हमारे युववाणी प्रोग्राम की पोटली से धीरे धीरे निकलने वाले हैं आपके लिए।
0: निकलेंगे नहीं वंशिका, निकल गए हैं। देखो ना सेगमेंट बूझो तो जाने का सवाल तैयार खड़ा है हमारे दोस्तों से मिलने के लिए।
1: ओके सलोनी, तो वेट करना तो बनता ही नहीं है, जल्दी से हमारे दोस्तों को आज का सवाल बता दो फिर।
0: तो दोस्तों हमारा आज का बूझो तो जाने का सवाल है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
1: तो दोस्तों सवाल आपने सुन ही लिया है, अब बारी है आपकी। जल्दी से खोलिए फेसबुक अपने मोबाइल में और पहुंच जाइए हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद पर, और उसके कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए आज के सवाल का सही जवाब।
0: जब तक आप देते हैं हमें सही जवाब, तब तक हम आपको देते हैं ये प्यारी सी हमारी आज की शाम की पहली गजल तोहफे के रूप में।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे
4: और जाओगे एहसास कर लोट को,
3: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
5: और डोज में क्या है?
4: डोज में है मजा।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
6: अरे चिंटू, तुझसे तो एक काम ढंग से नहीं होता नालायक।
5: क्यों पापा, मैंने क्या कर दिया है? आप हर टाइम चिल्लाते क्यों रहते हो?
6: तुझसे एक काम करने को बोला था, वो भी ढंग से नहीं हुआ। तुझे पुदीना लाने के लिए कहा था और ये धनिया ले आया। तुझ जैसे बेवकूफ को तो घर से निकाल देना चाहिए।
5: अरे पापा, क्या बात कर रहे हो, चलो तो दोनों इकट्ठे ही चलते हैं ना।
6: क्यों इकट्ठे क्यों, मैं क्यों जाऊं बाहर?
5: अरे मेरे प्यारे पापा, मम्मी कह रही थी कि ये मेथी है।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
5: तो मजा तो जरूर आ गया होगा हमारे दोस्तों को, क्या लगता है सलोनी?
6: बिल्कुल, इतनी प्यारी गजल और साथ
5: ही इतना अच्छा बूस्ट, तो बूस्टर डोज भी मिल गई
6: और गजल भी दिल को छू गई। गजल की तो खास बात ही यही होती है कि कम शब्दों में दिल की बड़ी बड़ी बातें कह जाती है।
5: इसी पर सलोनी, मुझे एक शेर याद आया।
6: इरशाद,
5: तो कुछ यूं है, कुछ लफ्ज किताबों में नहीं मिलते, कुछ लफ्ज किताबों में नहीं मिलते, कुछ एहसास गजलों में उतर आते हैं।
6: बिल्कुल सही बात वंशिका। देखो ये शाम तो है ही गजलों के नाम, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन शुक्रवार की शाम में कुछ और भी तो खास होता है ना।
5: वो क्या सलोनी?
6: भुलक्कड़, भूल गई ना। आज हम मिलवाते हैं अपने लिसनर्स को अनोखे सितारों से, सेगमेंट आपका सितारा में।
5: अरे हाँ सलोनी, ये तो है। तो फिर आज हम किससे मिलने वाले हैं, बताओ तो जरा।
6: वो तो मुझे भी नहीं पता वंशिका, लेकिन हमारी रेडियो पार्टनर शुमायला को तो जरूर पता है। तो चलिए मिलते हैं आज के सितारे से, जिसे खोजा है हमारी रेडियो प्रेजेंटर शुमायला ने।
7: स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने सेगमेंट आपका सितारा में। जी हाँ, जिसमें हर बार हम मिलवाते हैं आपको अपने एक युवा साथी से। और क्या खूब कहा गया है कि सितारा बन के चमकना आसान नहीं होता, अंधेरों से गुजरना पड़ता है रोशनी बनने के लिए। तो ऐसे ही अपने एक खास सितारे से आज आपको हम रूबरू करवाएंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इनसे इनका नाम। जी आपका नाम?
8: जी मेरा नाम एकांकी शर्मा है।
7: एकांकी शर्मा, ओके। तो एकांकी आप कहाँ से हैं?
8: अभी मैं लखनऊ से आई हूँ।
7: ओके, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारा जो ये सेगमेंट है आपका सितारा, इसमें हम हमारे जो युवा साथी हैं उनसे बातचीत करते हैं, कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में, कुछ उनकी प्लानिंग्स के बारे में और जो उन्होंने ज़िंदगी में अभी तक अचीव किया है। तो आप कुछ बताएं अपने बारे में, जो अभी तक आपने किया है, जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं।
8: अचीव करने के लिए, हाँ, बचपन से एक सपना था पत्रकार बनने का। सिक्स क्लास में मैं पढ़ती थी तो हमेशा से सब लोगों को ये लगता था कि बहुत बड़ी प्रोफेसर बनेगी इंग्लिश की या लेक्चरर बनेगी।
7: okay.
8: लेकिन मुझे सिक्स क्लास में पहली बार लगा कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है।
7: अच्छा,
8: वो भी ऐसा तब लगा क्योंकि मैं छोटी थी तो आंखों देखी बड़ा देखती थी, वो नलिनी सिंह जी को सुनती थी। तो फिर धीरे धीरे, और एडिटिंग का एक टेस्ट होता था, वो करने में बड़ा मजा आता था, तो लगता था कि किसी दिन बहुत बड़ी एडिटर बनूंगी। तो फिर धीरे धीरे जब कॉलेज पहुंची तो लिटरेचर पढ़ा, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, उससे जीवन में बड़ा बदलाव आया। लिटरेचर हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। मैं एक बहुत ही सेंसिटिव सी सोल हूँ ऐसा मुझे लगता है, तो लिटरेचर ने बड़ी मदद करी। फिर हिंदी लिटरेचर पढ़ा, मास्टर्स इन हिंदी किया, फिर जर्नलिज्म किया।
7: ओके,
8: तब जब जर्नलिज्म पढ़ रहे थे उस समय कुछ एक आज हमारे सबके आइडल होते हैं, हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं तो फॉलो करते थे रवीश कुमार जी को। और हमारे साथ ये हुआ कि हमारा 47 बच्चों का बैच था और जिसमें से सबका प्लेसमेंट हो गया था, सिर्फ हम ही बचे हुए थे। तो एक वक्त ऐसा था, लग रहा था कि क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, बहुत परेशान।
7: हमारा विश्वास खुद पे ही लड़खड़ा जाता है।
8: हाँ, मतलब ऐसी स्थिति तक आई है कि लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो रहा है, अब नहीं कुछ कर पाएंगे, तो दुनिया छोड़ने क्या इस हद तक गए हैं। लेकिन फिर एक दिन कॉलेज से ही फोन आया कि डिस्कवरी चैनल में एक कैमरा पर्सन थे, उनके साथ एक फिल्म शूट पे जाना था एज एन इंटर्न।
7: अच्छा,
8: तो फिर महीने भर का उनके साथ काम किया और वहाँ से फिर हमको एबीपी न्यूज़ में इंटर्नशिप मिली। फिर वहाँ से अब तक चलते चलते जर्नलिज्म करते हुए 12 साल हो गए हैं। तो एक जो बचपन से सपना था वो हम जी पा रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है। मतलब बड़े सारे चैलेंजेस आए, सबने कहा लड़की हो कैसे करोगी, छोड़ दो, टीचर वीचर बन जाओ। एक बार नहीं 50 बार कहा, कोविड आया तो नौकरी चली भी गई, लेकिन वो अंदर एक चीज होती है ना कि नहीं यही करना है, तो वो नहीं छूट रहा था कभी भी। तो बड़े सारे रुकावटों और हर्डल्स को पार करते हुए अभी यहाँ तक आ गए हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है।
7: चलिए अचीव, तो आपने वाकई बहुत कुछ कर लिया है, फिर हम ये कहेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब हम बचपन में अपने होते हैं, बचपन जी रहे होते हैं, तो हमारा जो माइंड है ना वो एक जगह रहता नहीं है। जैसे कि आपका था, कभी आपको लगा कि मैं एडिटर बनूंगी, कभी आपको लगा कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगी, कभी आपने सोचा कि प्रोफेसर भी बन सकते हो लेकिन लाइफ आपको कहाँ किस मोड़ पर ले जाए ये कोई नहीं जानता।
8: बिल्कुल भी नहीं, डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी जिंदगी में।
7: बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपने फिर ठाना कि आप एक जर्नलिस्ट बनेंगी और बीइंग अ वुमन आप यहाँ तक आई। बहुत बड़ी बात है ये कि अपनी सोसाइटी से लड़कर, अपने आप से लड़कर अपने सपनों को पा लेना बहुत बड़ी बात होती है, काबिल तारीफ।
8: इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, वो ये है कि जहाँ पे चैलेंजेस थे और रोकने वाले लोग थे ना, वहाँ पे सपोर्ट करने वाले भी बहुत थे। ये मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, जिसमें मेरे बचपन के दो दोस्त थे, जब हम 7 साल की उम्र से साथ थे, और मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग्स हमेशा, मतलब मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो जब भी मैं टूट जाती थी, रोते हुए जाती थी मम्मी के पास, तो कहती थी अरे हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है, टेस्टिंग टाइम्स है, निकल जाएंगे। तो उस समय लगता था उनकी बात समझ में नहीं आती थी, क्यों कह रही हैं, लेकिन जैसे जैसे जितना आगे बढ़े उतना धैर्य खुद से आता गया। तो अगर कोई मेरी बात जो लोग सुन रहे हैं ना, मैं उनसे ये जरूर कहना चाहती हूँ, पहला तो कि आप अपने सपना अगर आपका कोई है तो उसको छोड़िए मत, कितना भी कष्ट आपको महसूस हो उस रास्ते पर जाने के लिए, आप यहाँ उसको दिल में हमेशा रखिए। वो आपको ना आसपास, आप जहां जाएंगे उसका कोई ना कोई अंश आपको मिलेगा जिसके थ्रू आप आगे बढ़ते जाएंगे। और जो भी लोग आपके साथ रहेंगे ना आपके सबसे टफ समय में, जब आपको ये लग रहा होगा कि अब कुछ नहीं बचा है, तब भी आप देखिएगा कोई 2-4 लोग आपके साथ टिके होंगे, उनको कभी भी नहीं आपको भूलना है, और उनके टुवर्ड्स हमेशा हमेशा हमेशा ग्रैटिट्यूड रखना है। ये चीज सबको याद रखनी चाहिए।
7: और जो मुश्किल समय में आपके साथ होते हैं वही आपके अपने होते हैं, असल मायनों में आप उन्हें ही अपना कह सकते हैं।
8: जैसे आपने कहा कि हम अपने सितारे से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मेरे जीवन की रोशनी वो लोग हैं।
7: वो आपके लिए आपके सितारे हैं। अच्छा, और इस शो में आप हमारे लिए एक सितारा है आज।
8: बहुत शुक्रिया।
7: तो चलिए अब आप बात करते हैं आपके जर्नलिज्म करियर की। जैसे कि आप बता रही थी पहली बार जो आप एज एन इंटर्न गई थी डिस्कवरी चैनल का, आप कुछ बता रही थी, जिक्र आपने किया था, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी।
8: वो ऐसा हुआ था जब मैंने आपको बताया कि सब लोगों को जॉब मिल चुका था, मैं अकेले बची थी, तो मैं काफी परेशान थी। तो जब रैंडमली मुझे कॉलेज के डायरेक्टर का फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त हैं वो शूट पे जाएंगे, तो बेटा आप उनके साथ चले जाओ, आपको वैसे भी अभी कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप उनके साथ काम करो, आप बहुत कुछ सीखोगे। पर मुझे प्रिंट में जाना था एंड दैट वाज ब्रॉडकास्ट, प्लस वो फिल्म मेकिंग था, मुझे फिल्म मेकिंग करनी नहीं थी, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, चलते हैं, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो क्या हुआ कि उन्होंने मेरा नंबर, फिर उनको, शायद उनका नाम संजय सर था ऐसा मैं याद कर पा रही हूँ, तो फिर उनका मुझे कॉल आया। उन्होंने लेकिन कहा कि शूट हो चुका था, वो जो पोस्ट प्रोडक्शन वाला काम होता है वो करना था। तो अब उन्होंने कहा कि मैं तो कैमरा पर्सन हूँ, मैं सारा फुटेज डायरेक्टर के घर पे दूंगा, आप वहाँ चले जाइएगा। दिल्ली में था मैं, गाजियाबाद में रहती थी शादी के पहले, तो गाजियाबाद से मैं दिल्ली गई, मैं वो डायरेक्टर से मिली, प्रोड्यूसर से मिली, अकेले गई थी मैं तब, तो और भी छोटी थी, 2013 की बात है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सारा फुटेज है, और हमने फिल्म मेकिंग कॉलेज में सीखी थी, तो ये पोस्ट प्रोडक्शन वाला काम जो वो मुझसे करवाना चाहते थे वो भी मैंने सीखा था कॉलेज में, तो मेरे लिए इजी था। तो मैंने कहा, और प्लस बेस्ट पार्ट ये था कि वो मुझे उस वक्त पे कर रहे थे एक छोटा सा बच्चा, 19-20 साल का, उस
7: फर्स्ट पहली जब आप कुछ ऐसा मिलता है कि जिसके बदले आपको कुछ मिले, पैसे मिले, फोर्स
8: मेहनत की कमाई लगती है, वो
7: मेहनत की कमाई,
8: और वो भी वो जो आप सपना जो आपका है,
7: जो आपकी ड्रीम जॉब है उससे मिल रही है आपको।
8: फिर थोड़ा सा डर लग रहा था उस वक्त की, क्योंकि कैसे करूंगी, फिल्म तो बहुत बड़ी होती है, हमने तो छोटे छोटे शॉर्ट सीखे थे। लेकिन फिर मैं गई, मैं प्रोडक्शन रूम में पहली बार अकेले बैठी, मुझे सारा काम समझाया गया और मैंने बहुत आसानी से कर लिया। जब मेरा पहला दिन खत्म हुआ, मैं डायरेक्टर को वो बाय बोलने गई तो उन्होंने मुझसे कहा बैठ जाओ। मैं बैठी, फिर उन्होंने एक लिफाफा मुझे दिया, उन्होंने कहा ये ले लो। मैंने कहा सर ये क्या है, बड़ी घबरा के बोली। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मेहनत।
7: अच्छा, आपको अंदाजा,
8: पहले दिन ही
7: आपको अंदाजा नहीं था कि आपको पे मिलेगा। अच्छा, अनएक्सपेक्टेडली
8: बताया ही नहीं था किसी ने। मुझे लगा कि रोज ऐसे ही आना होगा, मेहनत करनी होगी फ्री में। तो मैंने
7: एज एन इंटर्न तो यही होता है।
8: तो फिर मैंने वो लिफाफा खोला, उसमें इतने सारे पैसे थे कि मैं आसानी से खुश हो गई।
7: चलिए,
8: फिर वो मुझे डेली बेसिस पे मुझे वो रोज मिलता था। तब मुझे लगा कि डेली वेज वर्कर वाला थोड़ा सा वो फील हो रहा था, लेकिन वो नहीं था। वो दैट वाज रेम्यूनरेशन जो आप हर रोज उनको पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था कितने दिन तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। बट देन वो पूरा एक महीना चला एंड आई अर्नड अ गुड अमाउंट। और उससे फिर मैं मम्मी पापा भाई बहन सबके लिए बड़े सारे गिफ्ट विफ्ट लेके गई, कुछ मैंने नया फोन खरीदा।
7: अच्छा, वो अलग ही फीलिंग होती है जब पहली पहली बार हमारे हाथों में हमारी कमाई के पैसे आते हैं और हम उन पैसों से अपनों के लिए कुछ खरीदे, तो वो बेस्ट फीलिंग होती है लाइफ में। तो एकांकी, अभी आप करेंटली क्या कर रही हैं?
8: अभी मैं रहती हूँ लखनऊ में। मेरी लास्ट ईयर शादी हो गई है, तो हस्बैंड की जॉब लखनऊ में हो गई थी। पहले हम लोग मेरठ में रहते थे, तो ऑफिस मेरा दिल्ली में है।
7: अच्छा, हस्बैंड भी आपके जर्नलिस्ट हैं?
8: नहीं, वो सिविल इंजीनियर है।
7: अच्छा।
8: सोचती थी मैं किसी जर्नलिस्ट से शादी करूंगी।
7: बट नसीब आपका आपको यहां ले आया।
8: और नसीब की तो मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ।
7: अच्छा, तो एकांकी आपसे बात करके तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि कोई इंसान वाकई अपने दिल से बहुत सारी चीजें अपने मन से कह रहा है। कुछ लोग होते हैं दुनिया में बहुत प्रिटेंड करते हैं, बट आई कैन से यू आर नॉट वन ऑफ देम। आप बहुत खूबसूरती से आपने अपनी जिंदगी को बयां किया है और लगता है मुझे हमारे लिसनर्स आपको सुन के बहुत अच्छा फील करेंगे।
8: आई होप दे डू। एंड थैंक यू आकाशवाणी एंड टू यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये प्रोग्राम जहां तक भी जाएगा, अगर एक भी पर्सन इंस्पायर होता है तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड आकाशवाणी।
7: तो फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे सेगमेंट आपका सितारा, जिसमें हमने बात की है एकांकी, जो कि एक जर्नलिस्ट है, उनसे। तो आपने उनसे जाना उनकी जिंदगी के बारे में। और अब चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। फिर मिलेंगे।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, इस प्यारी सी गजल के बाद चलते हैं अब कुछ खास जानकारी की ओर। सेगमेंट कुछ खास है आज के अंतर्गत।
2: दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपको पता चले कि बिना कोई गलती किए आपको किसी ने सजा सुना दी,
1: या जो चीज आपको मिलने वाली थी वो किसी और को मिल गई, आपकी मेहनत का इनाम किसी और को दे दिया गया, तो कैसा लगेगा आपको?
2: गुस्सा आएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, बुरा भी लगेगा। और सबसे पहला शब्द तो जुबान पर आएगा वो होगा, ये तो सरासर अन्याय है, गलत है।
1: बस यही एहसास हमें न्याय की अहमियत समझा देता है, क्योंकि जब तक न्याय है तब तक एक भरोसा है, और जहां भरोसा है वहीं बेहतर समाज है।
2: और इसी समाज और न्याय में सामंजस्य बिठाते हुए आज यानी 17 जुलाई को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मना रही है।
1: नाम सुनकर चौंकिए मत दोस्तों, आज सिर्फ कोर्ट, जज और कानून की बातें होंगी ऐसा नहीं है। आज बातें होंगी हमारी, आपकी और उन छोटी छोटी बातों की, जहां हर दिन न्याय और अन्याय का होता है।
2: तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई और इस दिन की हिस्ट्री क्या है।
1: वो मैं बता दूं वंशिका, कि 17 जुलाई 1998 को इटली के रोम शहर में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे रोम स्टेट्यूट कहा जाता है। इसी समझौते की वजह से आगे चलकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी की स्थापना हुई।
2: और दोस्तों, इस अदालत का नाम अदालत का यही काम है दुनिया में होने वाले बहुत बड़े अपराधों जैसे नरसंहार,
1: युद्ध अभ्यास, मानव के खिलाफ अपराध और आक्रमण जैसे मामलों में न्याय दिलाना।
2: यानी अगर किसी देश में इतने बड़े अपराध हों और वहां की जो व्यवस्था न्याय ना दिला पाए, तो आईसीसी ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकती है।
1: लेकिन ये न्याय शब्द का मतलब ये नहीं कि न्याय सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय अदालत ही सीमित हो। इसकी शुरुआत हमारे घर, स्कूल, ऑफिस और समाज से भी उतनी ही होती है।
2: बिल्कुल दोस्तों, किसी के साथ भेदभाव ना करना, बिना पूरी बात सुने फैसला ना करना, मेहनत को सही सम्मान देना और सच का साथ देना, ये सब भी तो न्याय के ही रूप हैं।
1: और अगर समाज में न्याय नहीं होगा तो लोगों का कानून से भरोसा खत्म हो जाएगा। इसीलिए न्याय सिर्फ कानून की ताकत नहीं बल्कि समाज की सबसे बड़ी नींव भी है।
2: और दोस्तों, आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून और न्याय सबके लिए बराबर होने चाहिए।
1: तो आज के इस खास दिन पर हम सब भी एक छोटा सा संकल्प लें, हम हमेशा सच का साथ देंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, ना ही होने देंगे, और जहां भी गलत होगा वहां सही के लिए आवाज उठाएंगे।
2: क्योंकि याद रखिए दोस्तों, न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं मिलता, न्याय तो हमारी सोच और हमारे व्यवहार से शुरू होता है।
1: और वंशिका, हमारा व्यवहार हमें इशारा कर रहा है कि चला जाए एक और खूबसूरत गजल की ओर।
2: बिल्कुल सलोनी।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
5: अरे गोलू, क्या हुआ, इतना गुस्से में तिलमिला क्यों रहा है यार?
6: अरे यार बस क्या बताऊं, छोड़।
5: अरे क्या हुआ?
6: अरे यार तुझे वो याद नहीं है सुरेश?
5: हाँ, जिसने तुझे गोरा होने के लिए कुछ नुस्खा बताया था।
6: हाँ, अरे वो पता है उसने क्या बताया था? कि चावल उबालकर फेस पर लगाने से गोरा हो जाएगा। तो मैंने भाई लगा लिए।
5: तो फिर इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, ये तो अच्छी बात है ना?
6: अरे सत्यानाश हो जाए उसका, उसने ये नहीं बताया था कि ठंडे करके लगाने हैं।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
7: तो सलोनी, गजल तो हमारे प्रोग्राम में चल ही रही है,
8: लेकिन हम अपने दोस्तों का ध्यान लेकर चलते हैं। हमने पूछा था उनसे कार्यक्रम के शुरुआत में एक सवाल, और हमारा सवाल था भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और जिसका सही जवाब हमें मिल गया है। वंशिका, बताओ हमारे सही जवाब का।
7: हाँ, सही जवाब है HJP कानिया। और सही जवाब भेजने वाले जो हमारे लिसनर्स हैं उनके नाम कुछ ये हैं: हीरामणि वर्मा, भागवत चौबे लाडला जी, ताज अंसारी, राष्ट्रपाल गजबिये, मोहम्मद जावेद पंजाबी नहावकर, अनिल विनोचा, नदीम बाकी, दिनेश वर्मा, प्रशांत कौशिक, रामकुमार रेवार, देवशंकर तामुरिया, फागुराम यादव, मोहम्मद रफीक पवार, नंदन कुमार सिंह।
8: और अगला नाम शामिल है सत्येंद्र। अगला जवाब हमें मिला है शाहरुन नूर अंसारी, ओम गायवाड़कर, मुकेश कश्यप, राजेश वर्मा, MD यासीन अंजान, दुर्गा राम शाहू, सुरेश गगनेजा, विजय सुरलकर, सदाशिव थोरात, धीरज भाई रबड़ी, सत्येंद्र चसेलिया, आर्यन राज, मोहम्मद सईद अब्बासी, शाहरान शाहरान, कमल सिंह, मोहम्मद दानी सिद्दीकी, मोहम्मद हसनैन पवार, अरविंद कुमार, अशोक सिंह, संजय ढींगिया, गंगा सिंह रावत, आसिफ चौधरी, मोहम्मद जहीद अली, मोहम्मद अंसारी।
7: और साथ ही जाकिर मंसूरी, मसरूर हसन, बबलेश पवार और निसार सलमानी, धर्मेंद्र छीपा। तो इन सभी लिसनर्स ने हमें बिल्कुल सही आंसर लिख भेजा है हमारे फेसबुक पेज पर। तो सलोनी, कुछ बाकी रह गया क्या?
5: हाँ वंशिका, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये शाम तो गजलों के नाम जारी
7: वक्त
5: है।
7: वक्त तो कह रहा है कि थोड़ी ही मिनट्स हैं हमारे पास।
5: लेकिन तुमने सुना है ना, बूंद बूंद से भरता है सागर, तो हमारे इस बूंद बूंद में बहुत सागर है अभी। तो ये शाम गजलों के नाम तो जारी है और आपको एक से एक नायाब तोहफा भी दे रही है। तो अब चलते हैं हमारे सेगमेंट कहानी के उस पार की ओर, और हमारी ये कहानी जो कि हमारी रेडियो प्रेजेंटर रुमान प्रस्तुत कर रही हैं, जिसका आज आप सुनेंगे अंतिम अध्याय। तो चलिए सुनते हैं ये लास्ट एपिसोड कहानी, उसने कहा था कि।

दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना लहना सिंह की बहादुरी, सूझबूझ, त्याग और अपने साथियों के प्रति समर्पण। अब आप सुनेंगे कहानी का पांचवा भाग। लहना सिंह अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है। वो बहुत घायल हो चुका है। उसकी जांग और पसली में गोली लगी है और उसका शरीर कमजोर पड़ गया है। मरने से पहले उसके मन में पुरानी यादें एक एक करके आने लगती हैं। उसे अपना बचपन याद आता है, जब वो 12 साल का था और अमृतसर में अपने मामा के घर आया था। वहीं उसकी मुलाकात एक छोटी सी लड़की से हुई थी। वो अक्सर उससे हंसकर पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की हर बार धत कहकर भाग जाती थी, लेकिन एक दिन उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं रेशम का सालू। ये सुनकर लहना सिंह बहुत दुखी हो गया था, लेकिन वो उस समय अपनी भावनाएं समझ नहीं पाया था। इसके बाद उसे लगभग 25 साल बाद की घटना याद आती है। वो छुट्टी पर अपने गांव गया था।

ने लहरा सिंह से बहुत भावुक होकर कहा कि उसका एक ही बेटा पोधा सिंह है और उसके पति सूबेदार हजारा सिंह भी युद्ध पर जा रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर लहरा सिंह से विनती की कि जैसे बचपन में उसने उसकी जान बचाई थी, वैसे ही अब युद्ध में उसके पति और बेटे की भी रक्षा करना। लहरा सिंह ने बिना कुछ कहे मन ही मन ये वचन स्वीकार कर लिया। अब युद्ध के मैदान में घायल पड़े हुए लहरा सिंह को यही वचन याद आता है। उसे संतोष होता है कि उसने अपना वादा निभा दिया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सूबेदार और बोधा सिंह दोनों की जान बचा ली, इसलिए उसे अपने जीवन पर कोई पछतावा नहीं रहता। अपनी अंतिम घड़ियों में वो बार बार अपने साथी वजीरा सिंह से पानी मांगता है और फिर उसे अपने गांव के अपने भाई कीरत सिंह और अपने घर के आंगन में लगे आम के पेड़ की याद आती है। वो कहता है, इस साल आम का पेड़ खूब फलेगा और सभी मिलकर उसके फल खाएंगे। यह उसकी अपने घर और परिवार के प्रति गहरे प्रेम को दिखाता है। कुछ समय बाद लहरा सिंह शांत हो जाता है और वीर गति को प्राप्त हो जाता है। बाद में अखबारों में ये समाचार छपता है कि नंबर 77 सिख राइफल के जमादार लहरा सिंह फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। दोस्तों, कहानी का अंत बहुत भावुक और प्रेरणादायक है। लहरा सिंह ने अपने बचपन में किए गए वचन को जिंदगी के अंतिम क्षण तक निभाया। उसने अपने कर्तव्य, मित्रता और वचन की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर दी। उसने कहा था, कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग, निष्ठा, कर्तव्य और अपने वचन को निभाने का नाम है।

0: महफिलें खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ अल्फाज याद रह जाते हैं। कुछ लोग बिछड़ भी जाएं पर उनके एहसास साथ रह जाते हैं। दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं, आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन कोड 246763। और इसी के साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
1: साथ ही दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले और कहानियां आप सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कर लीजिए। और इसी के साथ कि आपसे जल्द होगी एक नई मुलाकात, तब तक के लिए अपनी साथी वंशिका सोती को
0: और सलोनी को दीजिए इजाजत कार्यक्रम संपन्न करने की।
1: नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजे हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। संसद के मानसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारत की टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। किसान श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया नरेश पाल सिंह
1: और आपके भैया अंकित कुमार की
0: राम राम। और अंकित भाई कैसे हाल चाल है आपके?
1: देखो भैया, हाल चाल तुम्हारे बढ़िया हैं? और भैया जब और बारिश हो गई तो थोड़ा सा और अच्छे हाल चाल बढ़िया हो गए।
0: भैया देखिए, बारिश तो होनी भी चाहिए, बरसात का मौसम है। और वैसे जो मौसम वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस साल कम बारिश की संभावना व्यक्त की थी, लेकिन भाई जो ये अभी हाल में एक सप्ताह पहले बारिश पड़ी थी उसने तो मजा मान दिया था।
1: बिल्कुल भैया, देखो समय समय पर बारिश होती रहे, वो सूखे का भी हमारे किसान भाई को टाइम मिलता रहे, वो तो भैया उनकी खेती बाड़ी बढ़िया हो।
0: और भैया आज भी बारिश हुई है, तो कहने का मतलब है समय समय पर जो है वर्षा होती रहे तो ये अच्छा रहता है। और भैया देखिए, बरसात के मौसम में जो है हमें कुछ काम ऐसे होते हैं भैया, उनमें जो ध्यान रखना चाहिए हमें।
1: बिल्कुल, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे कोई कोई हमारे जो किसान भाई से व्यवसाय करते हैं उसमें, क्योंकि देखो मौसम बरसात का होता है और कभी भी बारिश आ जाती है तो
0: अजय फसल का भी हो, पशुओं का हो या अपना हो, हमें भी ध्यान रखना भाई। अपने
1: बिल्कुल
0: पशुओं का ये ध्यान रखना कि वहाँ कीचड़ गारा वगैरह ना हो, हमारी जो पशुशाला है भाई उसमें साफ सफाई रहे,
1: बिल्कुल
0: उसमें रोगाणु नाशन समय समय पर होता रहे।
1: बिल्कुल भैया,
0: और भाई हमारे जो पशु के साथ साथ जैसे हम बकरी पालते हैं और उससे भी छोटा जीव है मधुमक्खी,
1: बिल्कुल
0: तो मधुमक्खी पालन के लिए ये जो समय होता है ना बरसात का भैया, ये बड़ा संवेदनशील होता है।
1: बिल्कुल भैया, देखो ऐसे में जब बारिश होती है तो भैया मधुमक्खी बाहर नहीं जा पाती खाने के लिए, तो उसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। एक तो भैया जब मधुमक्खी के डिब्बे होते हैं उन्हें कुछ हमें सावधानी बरतनी है। एक तो भैया हमें मधुमक्खी के डिब्बों को छत्ते को सूखी जगह पर और जो डिब्बे हैं ऊंचाई पर रखने हैं।
0: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मधुमक्खियों का ध्यान ये रखा जाता है कि वो बाहर नहीं जाती, और भाई जाएंगी भी तो इन दिनों फूलों की बहुत कमी होती है,
1: बिल्कुल
0: और भाई इसलिए हमें थोड़ा सा उनके जो कृत्रिम भोजन है ना, जो हमें चाशनी चीनी के पानी के द्वारा हम बनाते हैं, तो भैया वो भी उनके बक्सों में हम रख सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: और दूसरी बात यह है कि जैसे बरसात का मौसम है तो हमारे मधुमक्खी के बक्सों पर जो है बारिश का पानी ना पड़े, ऐसी हमें व्यवस्था रखनी है।
1: बिल्कुल भैया, इसके साथ साथ हमें एक बात का ध्यान रखना है, वो भैया जो मधुमक्खी का प्रवेश द्वार है ना, जिसमें मधुमक्खियाँ आती जाती हैं, उसे भैया छोटा रखना जिससे बारिश का पानी कोई कीट अंदर
0: बिल्कुल
1: प्रवेश ना करे।
0: बिल्कुल भाई, कुछ ततैया ऐसे होते हैं कि वो हमारी मधुमक्खियों के अंडे होते हैं ना, और जो मक्खियां होती हैं उनको भी खा जाते हैं। और दूसरी बात यह है कुछ चींटियां ऐसी होती हैं कि वो भी घुस जाती हैं, तो चींटियों के लिए तो हमारे किसान भाई एक काम करें कि जो उनकी मधुमक्खी के बक्सों की टांग होती है ना, तो भैया वो उसमें कोई गिलास नुमा ऐसी कोई जैसे प्लास्टिक के गिलास होते हैं ना, तो उसमें भैया पानी भर के और वो खड़े कर दें तो चींटी नहीं आएंगी।
1: बिल्कुल भैया,
0: और दूसरा इस बात का ध्यान रखें कि जो पॉलीथीन वगैरह है ना, तो पॉलीथीन वगैरह मधुमक्खी के बक्सों पर ढक दें ताकि वर्षा से जो है हमारे बक्से खराब ना हो और उसके अंदर न जा पाए।
1: बिल्कुल भैया, अरे एक बात का और ध्यान रखना है भैया, हम अपने छतों के आसपास जो हमारे बक्से हैं उनके पास जल भराव बिल्कुल भी होने दें।
0: हाँ बिल्कुल भैया, जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जो पुरानी मधुमक्खियां हैं ना जो मर जाती हैं या छोटी मधुमक्खी होती हैं, तो बक्सों की हम साफ सफाई भी नियमित रूप से करें,
1: बिल्कुल
0: ऐसा ना है कि मरी हुई मक्खियां हमारे बक्सों में पड़ी रहें, तो भैया उनसे दुर्गंध और जो बैक्टीरिया है वो उत्पन्न होने का खतरा होता है, तो हमारी जो स्वस्थ मधुमक्खियां होती हैं उनके लिए वो खतरा होती है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया,
0: अपने मधुमक्खी के छत्तों की जो बक्से होते हैं बक्सों की साफ सफाई रखें।
1: बिल्कुल भैया, और समय समय पर निरीक्षण करते रहें भाई, जो हमारी रानी मधुमक्खी है उसका भी ध्यान रखें।
0: हाँ बिल्कुल। तो अंकित भाई देखिए, ये तो हमने थोड़ी सी बात जो है बरसात के मौसम में मधुमक्खियों या मौन वंशों की देखभाल के विषय में करी,
1: बिल्कुल भैया,
0: और बात तो कर ली, लेकिन जरा आपको पता भी है कि आज कौन सा दिन है?
1: बिल्कुल भैया, आज है माह का तीसरा शुक्रवार और हमारे किसान भाई इस दिन सुनते हैं गन्ना किसान भाइयों की गन्ना संबंधी समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो गन्ना किसान।
0: तो भैया हेलो गन्ना किसान में हमारे जो गन्ना उत्पादक किसान हैं वो हमारे स्टूडियो में सीधा हमसे फोन करके बातचीत करके अपनी समस्या रख सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: और हमारा प्रयास रहेगा कि हम फोन पर उनको जो है बिल्कुल सटीक जानकारी दें जिससे उनकी समस्या का समाधान हो जाए।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो भैया फोन करने के लिए अंकित भाई जरा हमारे किसान भाइयों को आप दोनों मोबाइल नंबर बता दो, जो
1: बिल्कुल
0: एक लैंडलाइन नंबर है हाँ
1: बिल्कुल
0: और एक मोबाइल नंबर।
1: बिल्कुल, हमारा मोबाइल नंबर है 9457 07 82 88।
0: भैया हमारा एक लैंडलाइन नंबर है
1: 01341 जिसका एसटीडी कोड है 230 105, हमारा लैंडलाइन नंबर है।
0: तो किसान भाइयों 94-57-07-82-88 इस जो मोबाइल नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और दूसरा नंबर अभी हमारे अंकित भैया ने बताया 013-41-230-105। तो भैया इन फोन नंबर्स पर आप अपनी समस्या हमसे पूछ सकते हैं सीधे हमारे स्टूडियो में फोन करके, और फोन नंबर आपको पता ही चल गए होंगे।
1: बिल्कुल
0: लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुन लेते हैं ये जरूरी संदेश।
1: बिल्कुल भैया,
0: नीचे वाला विज्ञापन बजाओ। तो अंकित भाई, तो किसान भाई जो है तैयार हो गए होंगे, तो अब जरा किसान भाइयों से हम ये अनुरोध करेंगे कि जो हमारे गन्ना किसान है ना
1: हाँ
0: भैया, गन्ने से ही संबंधित वो ज्यादा सवाल जवाब हमसे करें,
1: बिल्कुल
0: और कोई रागनी की या कोई चिट्ठी पत्र की बात इस कार्यक्रम में ना करें।
1: बिल्कुल भैया,
0: क्योंकि हमारे किसान भाई अच्छी तरह जानते हैं कि ये आज का जो कार्यक्रम है वो गन्ने की फसल पर विशेष जानकारी के लिए होता है।
1: बिल्कुल देखो भैया, इस समय बरसात का समय चल रहा है, और बरसात के समय में जो हमारे किसान भाई गन्ने की बंधाई भी करते हैं और जो खरपतवार नियंत्रण है वो भी करते हैं, तो उस समय हमारे किसान भैया गन्ने की बंधाई कर रहे होंगे, खरपतवार नियंत्रण कर रहे होंगे, तो भैया इससे संबंधित हमारे किसान भाई जो भी समस्या है वो अपना समाधान कर सकते
0: और
1: हैं।
0: भैया वैसे इस समय गन्ने में हमने भी देखा, निरीक्षण किया है कि पोका बोइंग की शुरुआत हो गई है,
1: बिल्कुल
0: और कहीं कहीं हमारे जो अगोला बेधक होता है, सोटी बेधक होता है, उसकी भी शुरुआत हो गई है। तो
1: बिल्कुल
0: किसान भाई अपनी समस्या के हिसाब से सवाल करें,
1: बिल्कुल
0: तो जब तक हमारे किसान भाई हम तक स्टूडियो में फोन करते हैं तब तक जो है हम सुनवाते हैं किसान भाइयों को ये जरूरी संदेश।
1: बिल्कुल भैया,
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: तो अंकित भाई देखिए, अब फोन की घंटी जो है वो घनघना रही है, तो देखते हैं
1: हमारे
0: किन किसान भाइयों का फोन आ रहा है।
1: हेलो हेलो गन्ना किसान।
4: हेलो गन्ना किसान।
1: हाँ जी
4: जी अंकित भाई
1: जी नमस्कार, कौन सा बात कर रहे हैं?
4: नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं मुस्तकीम अहमद बात कर रहा हूँ सेवारा से।
1: जी
0: अच्छा, सेवारा से मुस्तकीम अहमद बात कर रहे हैं।
4: जी नशपाल जी।
0: जी, तो मुस्तकीम जी आज कैसा मौसम रहा सेवारे का? बारिश बारिश पड़ी नहीं?
4: हाँ बारिश तो नहीं पड़ी, लेकिन अभी 3 साल थोड़ी सी नहीं, और उसके बाद मौसम साफ हो गया।
0: अच्छा
4: जी
0: अच्छा तो आज हेलो गन्ना किसान में क्या समस्या रखना चाहेंगे?
4: सर मेरी एक समस्या है,
1: जी
4: मेरी एक समस्या है कि गन्ना की जो जड़ें हैं उसमें खरपतवार नियंत्रण जो है वो कैसे किया जाए।
0: गन्ने की
1: अच्छा,
0: जड़ मतलब गन्ने के खेत में?
1: जी जी
4: जी गन्ने खेत में
1: खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाए,
4: कैसे किया जाए।
0: तो देखिए खरपतवार नियंत्रण जो है आप यांत्रिक विधि से या हाथ से उखाड़ कर, किस तरह के खरपतवार हैं ये बताइएगा, किस तरह के खरपतवार हैं?
4: मैं कह रहा हूँ मतलब जो है छोटे छोटे छोटे से, मतलब जैसे जड़े हैं गन्ने की तो वो गल नहीं है सर।
1: अच्छा
4: जैसे जी, तो मुझे उसके लिए कोई दवाई वगैरह बताएंगे जिससे कि ये रुक जाए, और अपना गन्ना तो बढ़ तो रहा है लेकिन अभी मतलब जो है नीचे से गल जो है सूख रहा है, मतलब
0: अच्छा आप नीचे अभी अभी तो आप खरपतवार की समस्या बता रहे थे।
4: जी, खरपतवार नीचे
0: तो खरपतवार तो वो होता है खेत में जो गन्ने के अलावा जो घास वास उगाती है उसे खरपतवार बोलते हैं। तो खरपतवार की समस्या के लिए रसायन बहुत से हैं, जैसे मेट्रीब्यूजिन है और 2,4-D है, उनका आपस में मिलाकर आप स्प्रे कर दें तो गन्ने के खरपतवार समाप्त हो जाएंगे। और रही बात आप बता रहे हैं कि जड़ खराब हो रही है, पूरा पूरा पौधा सूख रहा है,
4: जी जी जी।
0: तो देखिए ये गन्ने का लाल सड़न रोग हो सकता है जब पूरा पौधा सूख रहा है तो
4: जी जी जी।
0: तो कौन सा गन्ना आपका मुस्तकीम जी? हाँ तो 0.38 है और आपका पूरा गन्ना सूख रहा है, तो निश्चित रूप से आपके खेत में गन्ने का लाल सड़न रोग लगा है और जो पौधा सूख गया है
4: जी।
0: आप उसको जड़ समेत उखाड़ कर
4: जी।
0: खेत से बाहर कर दें, नहीं तो अन्य जो आपके गन्ने के मेड़ है ना दूसरे स्वस्थ पौधों में भी ये रोग फैल जाएगा और इसका जब नुकसान हो जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं होता। तो वैसे तो आपको 0.238 गन्ना नहीं बोना चाहिए था, हाँ, क्योंकि किसान भाइयों के लिए जो गन्ना वैज्ञानिक हैं और जो शुगर मिल हैं उन्होंने भी सिफारिश की है कि 0.238 गन्ना नहीं बोना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि गत 2 वर्षों से कितना नुकसान हो रहा है 0.238 में।
1: हाँ। गन्ने का कैंसर भी इसमें 0.238 में हो गया है, तब जब गन्ने के जो चीनी मिल रहे हैं इस प्रजाति पे रोक लगा रखी है इन्होंने।
0: तो अंकित भाई ये नियंत्रण को कह रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो नियंत्रण तो यही है कि जो इनके रोगग्रस्त पौधे हैं ना
1: बिल्कुल अपने खेत से बाहर कर दें,
0: खेत से बाहर कर दें और वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर लगा दें।
4: अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर डाल दें।
0: हाँ, ब्लीचिंग पाउडर डाल दें ताकि जो है ये कवक आगे ना फैल सके।
4: अच्छा, कवक आगे ना फैल सके।
0: हाँ, तो अब अंकित भाई
1: इनकी समस्या का समाधान हो गया होगा।
0: अब दूसरा देख रहे
1: अगले कॉलर कौन है,
0: दूसरे कॉल देखते हैं किसकी है। हेलो गन्ना किसान।
5: हाँ जी, मेरे अंकित कुमार को मेरे राम राम
1: जी।
0: राम राम जी साहब, राम राम, कौन साहब बोल रहे हैं?
5: मैं ग्राम धरना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदनगिरी बोल रहा हूँ।
0: जी जी मदनगिरी जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और आपका जो है जब फोन आता है तो हमें अच्छा लगता है, और आप समसामयिक कोई ना कोई खेती और पशुपालन से संबंधित कोई ना कोई आप जरूर प्रश्न पूछते हैं, और आज हेलो गन्ना किसान है। तो हेलो गन्ना किसान में आप क्या समस्या रखना चाहेंगे?
5: गन्ने के विषय में पूछना जी, मैं जी, अलग
1: विषय जी बताइए, गन्ने में क्या समस्या है आपकी इस समय?
5: समस्या है कि हमारे यहाँ एक हफ्ता पहले तो बारिश हुई थी
1: जी,
5: बारिश हुई थी अच्छी।
0: अच्छा जी,
5: खेतों में जो है पानी भर गया था।
0: अच्छा,
5: लेकिन उसके बाद में जो है इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है अभी
0: जी,
5: खेत बिल्कुल सूख गए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमें जो है इसका गर्मी का जो है खेत सूख गए हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है तो बारिश का नाम नहीं है, तो क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा इसका गन्ने पर? वैसे बढ़वार में कोई कमी नहीं, गन्ना फिलहाल हमारा 118 है, बहुत बढ़िया खड़ा है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत खुशी की बात है आपका 118 गन्ना खड़ा है। तो जैसे 7 दिन हो गए हैं और आप बता रहे थे कि बहुत अच्छी बारिश हुई थी एक सप्ताह पहले।
5: बहुत अच्छी बारिश हुई, 3 दिन तक हुई जी।
0: अभी तो कोई आवश्यकता वैसे होनी नहीं चाहिए?
5: फिलहाल होगी जी, बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ी होगी।
0: मतलब आप खेत सूख गया आपका?
5: हाँ जी सूख गया जी।
0: तो जमीन अगर आपकी सूख गई होगी तो आप जो है सिंचाई कर दें उसमें? आपके पास सिंचाई का क्या साधन है?
5: तो करनी पड़ेगी
0: जी जी,
1: ज्यादा जाल भराव हमें नहीं करना, हल्की सिंचाई हमने खेतों में करनी है जिससे नमी बनी रहे।
5: अच्छा जी,
1: क्योंकि बरसात का समय है, अगर अधिक बारिश हो गई और फिर हमने सिंचाई कर दी तो जल भराव हमारे खेतों में हो जाएगा, उससे जड़ सड़न जो रोग है वो हमारे खेतों में लग सकता है।
0: तो गिरी जी आपकी जो है बढ़िया फसल खड़ी है, ये हम खुशी है हमारे लिए, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि आपकी फसल स्वस्थ खड़ी है। और आप खेत में निरीक्षण करते रहें, क्योंकि पोका बोइंग जो कवक के द्वारा होता है वो इस समय आने की संभावना है इस जो आपकी 118 प्रजाति है उसमें। और दूसरी समस्या हो सकती है टॉप बोरर की, जिसमें गन्ना जो है बड़ा बढ़ाया नीचे पहुँच जाता है।
5: जी जी जी, और हमने जो है ना जी आपके सुझाव से जो है 38 पहले 38 लगता था अभी
0: जी,
5: लेकिन अब खत्म कर दिया है बिल्कुल, 118 लगा रखा है सब जगह हमने, खद्दर में भी
0: जी
5: और बांगर में भी,
0: तो ये
5: में भी हमारी जमीन है।
0: बढ़िया किया, बढ़िया किया आपने के 38 गन्ने की आपने बुआई की,
5: खत्म कर दिया जी बिल्कुल।
0: जी जी जी, बहुत अच्छा,
5: खत्म कर।
0: तो
1: नेपाल भैया इनकी समस्या का समाधान हो गया होगा?
0: हाँ
5: जी जी जी जी।
0: तो अब देखते हैं जो हम अपने श्रोताओं से कह रहे हैं कि वो हमें अपने गन्ने की फसल से संबंधित प्रश्न हमारे स्टूडियो में हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो अंकित भाई जरा अपने किसान भाइयों को फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता दीजिए।
1: बिल्कुल, ये हमारा जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9457-07-82-88। और देखो भैया इधर नंबर बताया और उधर एक कॉल आ गई,
0: देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो गन्ना किसान।
1: हेलो
0: हेलो
1: किसान,
0: हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
6: जी मैं ग्राम फैजपुर रामानंद से महिपाल सिंह सेनगा बोल रहा हूँ।
1: जी जी,
6: जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश।
1: जी जी महिपाल जी, कैसे हैं आप?
6: बस बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे हो आप?
1: बढ़िया।
0: तो महिपाल जी, आज बारिश हुई आपके यहाँ?
6: जी नहीं, आज बारिश नहीं हुई सर।
0: आज नहीं हुई
6: ना जी, बस थोड़े से बच्चों से हुए थे दोपहर में
0: जी।
1: अच्छा अच्छा,
6: तो 1 बजे के आसपास और बस चल गया, बड़ा नहीं नहीं
0: जी। और आपकी गन्ने की फसल कैसी है?
6: गन्ने की फसल तो फिलहाल ठीक सी है, पर लेकिन जो अब जो बारिश होने के बाद, एक सप्ताह पहले जो बारिश हुई थी
0: जी,
6: उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा जैसे ये उमस बढ़ी है ना उमस,
0: हाँ हाँ,
6: तो इसमें कुछ पोंगा पोए जो मरज होता है ना, जो दिखाई दे रहा है।
0: जी जी जी हाँ बिल्कुल, पोखा पोइंग मरज होता है, जो ऊपर की जो पत्तियां होती है ना गन्ने की, वे सिकुड़ जाती हैं और उनके जो है किनारे एकदम कड़े हो जाते हैं। तो इसकी जो है आप रोकथाम के लिए कोई भी अच्छा कवकनाशी ले सकते हैं, चाहे तो आप कॉपर ऑक्सी क्लोराइड ले लो। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड?
6: अच्छा, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड,
0: हाँ क्लोराइड। या फिर एक दवाई आती है मैंकोजेब और बेवस्टीन के नाम से।
6: मैम एक जानकारी और लेना चाह रहा था।
0: जी जी,
6: जैसे ये तो आ ही रहा है लगभग, और अभी कुछ दिनों बाद जो दिखाई देता है अगस्त के शुरुआत के महीने में, तो बड़ा और दिखाई देता है, तो ये दोनों अलग अलग प्रकार की बीमारी है या एक ही प्रकार की बीमारी है, या इनके लिए अलग अलग कुछ दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा?
0: देखिए, एक दवाई भी हो सकती है, क्योंकि एक दवाई ऐसी आ रही है जिसमें एजोक्सी एस्ट्रोबिन है और उसमें कीटनाशक भी है, तो वो दवाई आती है जिसमें खरपतवार, जिसमें कीट और कवक दोनों का नियंत्रण होता है। और वैसे आप अलग अलग दवाई का इस्तेमाल करना चाहें तो देखिए मैंकोजेब बहुत अच्छी दवाई होती है। हाँ मैंकोजेब, और उसके साथ में आप प्रोफेनाफोस, इमिडाक्लोप्रिड या फिप्रोनिल, या इसके अलावा भी एक बहुत ही अच्छी कारगर दवाई होती है थायोमेथोक्साम और लैम्डा, तो आप कोई सी एक कीटनाशी ले लो, और जो ये आपको कवकनाशी, इनको एक जगह मिलाकर घोल बनाकर आप छिड़काव कर दें, तो जो पोका बोइंग है उससे भी आपको जो है राहत मिलेगी आपकी फसल को, और जो अगस्त के महीने में अंकित भाई
1: टॉप बोरर,
0: जो टॉप बोरर बता रहे हैं उसके लिए,
6: क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, अभी तक हमारे खेत में जो है ना टॉप बोरर का कोई भी रिपोर्ट नहीं है, और बहुत बढ़िया खेत खड़े हैं
0: जी,
6: पर लेकिन पिछले साल भी ये जुलाई के तक तो बढ़िया रहे थे, और जुलाई से बाद में अगस्त के शुरू के सप्ताह के लगभग आस पास में ही
0: जी
6: टॉप बोरर दिखाई देने लगा था।
0: हाँ, तो उसके लिए आप जो है अगस्त के शुरुआत में ही आप एक अच्छा थायोलैम्डा नाम का रसायन आता है, दवाई आती है
6: थायोलैम्डा,
0: हाँ थायोलैम्डा, थायो प्लस यानी के लैम्डा, थायो का मतलब थायोमेथोक्साम, तो आप ये वाला आप अपने जो है टॉप बोरर के लिए इस्तेमाल करिए। और इसमें अगर आप और भी इसको बढ़िया करना चाहें तो एक दवाई आती है प्रोफेक्स, हाँ, जिसमें प्रोफेनाफोस और साइपरमेथ्रिन होती है
6: जी,
0: तो इसमें आप वो भी मिला दिए थे और भी मजबूत और प्रचंड कीटनाशी बन जाएगा, और साथ में आप जो हरी हरी पाउडर ना होता वो कवकनाशी वाला
6: जी,
0: जो हमने आपको मैंकोजेब या कार्बनडाजिम के नाम से बताया है, तो इन्हें अलग अलग बाल्टियों में घोलकर अपनी जो है टंकी के हिसाब से आधा किलो 5 बीघे में काफी होता है वो पाउडर जो हम बता रहे हैं, मैंकोजेब और कार्बनडाजिम, जो पोका बोइंग के लिए है वो आधा किलोग्राम यानी कि 500 ग्राम जो है काफी होता है 5 बीघे के लिए, और उसमें जो है, हाँ 5 बीघे के लिए, और 5 BA के लिए ही जो आधा लीटर की हमने आपको बताई है थायोलैम्डा, तो उसका जो है स्प्रे बनाकर आप दोनों दवाइयों का और अपनी फसल पर छिड़क दो तो अच्छे परिणाम मिलेंगे।
1: तो नरेशपाल भैया,
0: हाँ
1: इनकी
0: भैया,
1: समस्या का समाधान हो गया होगा। देखो
0: हाँ
1: कितनी जो समस्या हमारे गन्ने में अब आने वाली हैं या आ रही हैं, तो ये हमारे किसान भैया जागरूक हों और अपने खेत का भैया समय समय पर निरीक्षण करते रहें भाई।
0: बिल्कुल अंकित भाई, देखिए ये किसान भाई जो बता रहे थे कि पिछले साल भी अगस्त में इनकी फसल में आया था और जुलाई में बिल्कुल साफ सुथरा इनकी
1: बिल्कुल।
0: फसल थी, तो हमारे किसान भाइयों से यही अपील है कि वो अपने खेत का बराबर निरीक्षण करते रहें।
1: बिल्कुल भैया, देखो वो कहावत उनकी, बीमारी से पहले बचाव जरूरी है।
0: हाँ तो भाई इसके साथ साथ हमारे किसान भाई ये भी जानते हैं कि गन्ने की फसल में कितनी लागत आती है
1: बिल्कुल
0: भाई, जब से हम खेत की तैयारी करते हैं उसके बाद बीज कीटनाशी खरपतवार नाशी और उससे पहले बुआई के समय DAP और पोटास कितने महंगे
1: एनपीके,
0: खाद होते
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: भैया भैया, खेत की जुताई सिंचाई बहुत
0: तो
1: सारी जो
0: भैया
1: लागत
0: अपनी
1: हमारे किसान
0: फसल
1: भाई
0: का
1: लगाते हैं।
0: निरीक्षण करें क्योंकि बड़ा सेंसिटिव बड़ा संवेदनशील होता है।
1: बिल्कुल भैया। और
0: तो
1: देखो भैया अगले कॉलर कौन है?
0: हेलो गन्ना किसान।
7: हेलो
1: जी,
0: हाँ जी
7: हाँ, मैं पूछ रही हूँ, हमारे ईख है, मेरा
0: जी,
7: भी जोया,
0: आप पहले अपना
7: तो
0: नाम बता
7: मैं
0: दीजिए,
1: जी
0: कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम और पता बता दीजिए।
7: गांव नारायणी है, सुधा बोल रही हूँ।
0: नारायणी
7: जी,
1: ना आपका
0: सुधा,
1: नाम?
0: सुधा
7: सुधा
1: जी।
0: अच्छा तो सुधा जी क्या समस्या आप बताइए।
7: गन्ने ना ऊपर गोप सूख रही है। हाँ,
1: अच्छा गोप सूख रही है आपकी,
7: बीज मिल गया था।
0: गोप सूख रही है गन्ने
7: हाँ,
0: की
7: गोप सूख रही है जी।
0: जी, या कुछ कैडी सी भी हो गई वो पीली पीली पड़ गए या बिल्कुल बिल्कुल पाती बन गई है, सूख गई है,
7: हाँ, पाती बन गई है जी।
0: पाती बन गई है, तो आपके जो है चोटी बेधक कीट लगा है जिसको टॉप बोरर कहते हैं,
7: अच्छा जी,
0: तो आप अपने गन्ने में आधा लीटर दवाई लेकर आओ प्रोफेनाफोस, प्रोफेनाफोस दवाई लेकर आओ जो अभी हम बता रहे थे जो प्रोफेक्स के नाम से आती है और रॉकेट के नाम से भी आ जाती है, तो आप वो दवाई लो आधा लीटर और आधा लीटर को 5 BA के हिसाब से आप उसमें स्प्रे करवा दो तो ये आपका टॉप बोरर समाप्त हो जाएगा।
7: और 10-12 बजे खेतों से दीनार लग रही है, सफेद दीनार
0: सफेद गिटार जमीन में,
7: जी, जो बहुत नीचा सब दवाई लगा ली और टड्डी ऐसी खड़ी गिर रही है।
1: अच्छा
0: तो जमीन के कीट के लिए देखिए आप फ्यूराडान एक दवाई आती है, फ्यूराडान
7: क्या नाम?
0: फ्यूराडॉन,
7: जी,
0: तो वो आप अपने खेत में जो है बिखेर दीजिए 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, मतलब 1 बीघे में 2 किलोग्राम दवाई फ्यूराडॉन के हिसाब से आप जमीन में बिखेर दीजिए तो आपकी जो जमीन का किंडार वगैरह है वो समाप्त हो जाएगा।
1: बिल्कुल। तो नरेशवाल भैया,
0: हाँ भैया,
1: अब इनकी समस्या का भी समाधान हो गया होगा। और देखो भैया, अब जो कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं।
0: आगे बढ़ते हैं, तो किसान भाइयों को हम बता ही रहे हैं कि वो अपने खेत में जो है ध्यान रखें इस बात का कि कोई कीट, जैसे इन्होंने बताया अभी कि इनकी चोटी सूख रही है पाती बन गए बिल्कुल, तो ये जो है कीटों का भी जो ध्यान रखें, कीटों का
1: बिल्कुल
0: नियंत्रण रखें, और जो पोखा बेंग रोग है उसके लिए ये कवकनाशी का इस्तेमाल कर
1: बिल्कुल
0: सकते
1: भैया।
0: हैं।
1: और
0: तो
1: भैया,
0: अब
1: और
0: भाई देखिए अगली कॉल लेने से पहले किसान भाइयों कार्यक्रम में हम लेते हैं एक छोटा सा विराम
1: बिल्कुल
0: और सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: बिल्कुल भैया।
8: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रीता चौधरी, देवराज आई एंड चाइल्ड केयर सेंटर बिजनौर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें। डॉक्टर, यदि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या उसे स्कूल भेजना चाहिए?
9: यदि बच्चे को बुखार, छींके, लगातार खांसी, कमजोरी या उल्टी जैसी शिकायतें हों तो उसे 1-2 दिन घर पर आराम करने देना बेहतर होता है। बीमार बच्चे को स्कूल भेजने से उसके ठीक होने में अधिक समय लग सकता है और संक्रमण अन्य बच्चों तक भी फैल सकता है। पर्याप्त आराम, पर्याप्त तरल पदार्थ, पौष्टिक भोजन और समय पर इलाज बच्चे को जल्दी स्वस्थ होने में मदद करते हैं। केवल उपस्थिति या परीक्षा की चिंता में बच्चे के स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चे की सेहत हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए।
8: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
1: देखो नरेशपाल भाई, संदेश तुम्हारे किसान भाई ने सुन लिया
0: बिल्कुल।
1: और भैया हमारे किसान भाई अपनी कोई समस्या बताओ तो उसके लिए हमें फोन करो, तो भैया हमारे फोन नंबर है 94-57-07-82-88।
0: और भैया देखियो, जो हमारे किसान श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने भाई कभी कभी देर से रेडियो खोलियो और उन्हें पता लगाओ कि आज हेलो गन्ना किसान है,
1: बिल्कुल,
0: तो भैया वे भी हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 013-41-230-105।
1: बिल्कुल भैया, और देखो तुमने यहाँ नंबर बताए और भैया उधर एक कॉल आई,
0: बिल्कुल, तो देखिए कॉल तो कट गई है,
1: बिल्कुल भैया देखो टेक्निकल समस्या की वजह से कॉल कट सकती है।
0: तो किसान भाई जो है हमारा फोन नंबर ध्यान रखें 94-57-07-82-88।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो भैया इन फोन नंबर्स पर आप हमें अपने जो है गन्ने से संबंधित समस्या बता सकते हैं,
1: बिल्कुल भैया।
0: और अंकित भाई एक बात का ध्यान रखें, देखिए पहले कॉल लेते हैं, कॉल आ रही है, हेलो गन्ना किसान, देखिए फोन कट गया हमारा,
1: हेलो गन्ना किसान,
0: तो वो अंकित भाई देखिए हम बात कर रहे थे गन्ने की फसल में मुख्यतः दो ही रोग आते हैं इन दिनों, एक तो भैया पोका बोइंग जो कवक के द्वारा आता है और दूसरा भैया ये टॉप बोरर की समस्या
1: जी,
0: और तीसरा ये भी है कि हमारे किसान भाई अपने गन्ने की जो है बंधाई भी कर सकते हैं अगर ज्यादा बड़ा गन्ना है ना,
1: बिल्कुल भैया,
0: किसान भाई जो है नौलख या पौध गन्ना को छोलते समय कल्ले छोड़ देते हैं तो कल्ले बहुत बड़े हो जाते हैं और इन दिनों जो है उनकी बंधाई की आवश्यकता होती है,
1: बिल्कुल भैया। और भैया हमारे जो किसान भाई हैं कुछ एक समस्या बार बार देखने को मिल रही है, भैया हमारे जो किसान भाई 0-2-37 गन्ने की बुआई बार बार कर रहे हैं,
0: हाँ उसकी बुआई ना करें, देखिए अगला कॉलर कौन है, हेलो गन्ना किसान,
10: हाँ जी नमस्कार जी भाई साहब,
0: नमस्कार जी, नमस्कार साहब, कौन बोल रहे हैं,
10: मैं याकूब बोल रहा हूँ गढ़ी जिला बिजनौर से
1: जी।
0: अच्छा याकूब जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, और आप हमारा कृषिगत कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं,
10: जी रोजाना सुनते हैं
1: जी जी,
0: तो आज जैसे हेलो गन्ना किसान कार्यक्रम है हमारा, तो आप क्या समस्या रखना चाहेंगे गन्ने की फसल की,
10: ना गन्ने में वो लग रहा ऊपर जो बढ़वार की वो गोब हो वो सिकड़ रही,
0: अच्छा सिकड़ रही पीली पड़ रही, तो देखिए पोका बोइंग आपके खेत में आ चुका है, ये एक रोग होता है पोका बोइंग जो एक फंगस से आता है जो कवक से आता है, तो इसकी रोकथाम के लिए आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड,
10: अच्छा
0: लिख लीजिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, वो आधा किलोग्राम की मात्रा लेकर आप जो है 5 बीघे के हिसाब से घोल बनाकर अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं,
10: 2 एकड़ गन्ना है,
0: 2 एकड़ यानी कि 10 बीघे के लगभग
10: जी,
0: तो आप जो है 1 किलो मिथाइल पैराथियन ले लो, मिथाइल पैराथियन नहीं माफ कीजिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 1 किलोग्राम ले लीजिए 2 एकड़ गन्ने के लिए, वो काफी होगा,
10: अच्छा
0: हाँ, और उसमें आप कोई कीटनाशी भी मिला लें, जैसे आप अभी हम बता रहे थे साइपरमेथ्रिन या प्रोफेनाफोस, तो इससे आप जो है थोड़ा सा आपकी फसल पर कीट का आक्रमण भी नहीं होगा, तो इलाज से जो है बचाव बेहतर होता है, तो एक सुरक्षात्मक छिड़काव आप कीटनाशी का भी साथ साथ कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपको फिर दोबारा समस्या आ जाएगी कीट की कवकनाशी के बाद, तो आप जो है कवकनाशी जो हमने बताया आपको उसके लिए मैंकोजेब या आप कार्बंडाजिम भी ले सकते हैं,
1: बिल्कुल भैया, जो हमारे जो कवक ना लगे फंगस ना लगे भैया उसके लिए हमारे किसान भाई भैया मैंकोजेब या
10: एक बार दवाई का नाम और बता दो,
0: कार्बंडाजिम या मैंकोजेब,
10: अच्छा वो पहली वाली जो बताई थी
0: मिथाइल, वो पहली वाली बताई थी हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड,
1: कॉपर ऑक्सीक्लोराइड,
0: कॉपर
10: ऑक्सीक्लोराइड,
0: हाँ क्लोराइड,
10: अच्छा
0: तो ये पोका बोइंग के लिए बढ़िया दवाई रहेंगी दोनों
10: जी, जी
0: दोनों में से कोई सी भी डाल लियो, चाहे मैंकोजेब डाल लियो या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल लियो,
10: 35 गन्ना है 35,
0: हाँ हाँ हाँ, तो ये आप जो घोल बनाकर 1 किलो दवाई का, वो हरी हरी सी दवाई आती है,
10: अच्छा
0: देखने में हरी हरी सी लगती है
10: जी, तो
0: उसका घोल बना के और एक दूसरी बाल्टी में आप कीटनाशी का भी बना लो, क्योंकि आपके खेत में जो है कीटनाशी भी जरूरी है, कभी आगे कोई कीट लग जाए तो सुरक्षा के लिए आप एक कीटनाशी जो प्रोफेक्स दवाई होती है ना
10: जी जी,
0: जो कीड़े मारने की दवाई होती है,
10: हाँ
0: जिसमें साइपरमेथ्रिन भी होता है और प्रोफेनाफोस भी होता है,
10: अच्छा
0: या थायोलैम्डा, वो भी ना तो थायोलैम्डा दवाई लगा सकते हैं, वो भी कीटनाशी बढ़िया है,
10: जो भी मिलेगी वही लगा देंगे,
0: हाँ एक कीटनाशी और एक कवकनाशी, जी जी
1: बिल्कुल
0: जी
1: भैया, देखो नरेशपाल भैया इनकी समस्या का समाधान हो
10: गया
1: होगा।
10: आपका धन्यवाद
0: जी, धन्यवाद।
1: तो देखते हैं भैया अगले कॉलर कौन है,
0: अगले कॉलर देखते हैं कौन है। हेलो गन्ना किसान, ये फोन कट गया इनका और हमसे संपर्क नहीं जोड़ पाया। तो अंकित भाई देखिए एक कॉलर और आ रहे हैं, इनको देखते हैं। हेलो गन्ना किसान।
11: हेलो गन्ना किसान बासा, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं, अपना नाम और पता बता दीजिए।
11: जी मैं उत्तराखंड सैनिकाल सैनगांव फैक्ट्री से प्रकाश चंद्र बोल रहा हूँ
0: जी। जी जी प्रकाश चंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: कैसा मौसम
11: साहब? धन्यवाद
1: जी। कैसा मौसम है आपके यहाँ का?
11: साहब आज तो बारिश हो गई थोड़ी अच्छी।
1: अच्छा, बारिश हो गई।
11: हाँ जी हाँ,
0: चलिए बढ़िया है, बारिश हो गई है।
1: और प्रकाश चंद्र जी तो
11: जी
1: तो आज क्या पूछना चाहते हैं गन्ने संबंधी समस्या?
11: भसाब गन्ने संबंधी समस्या यह है कि ये जो गन्ना लगा रखा है इसमें काली चींटी लग रही है, पिछले बार भी लगी थी और इस साल भी लग रही है, काली चींटी लग रही है।
0: अच्छा अच्छा, काली चींटी लग रही है। तो एक तो आप अपने गन्ने की नीचे की पत्ती उतार दो।
11: हाँ जी,
0: नीचे वाली जो पत्तियां खिली हुई हैं,
11: हाँ?
0: पुरानी पत्तियां,
11: हाँ?
0: एक तो वो उतार दो।
11: अच्छा जी,
0: और उसके बाद आप इमीडा क्लोप्रिड, एक दवाई आती है इमीडा,
11: इमीडा भाषा कहाँ मिलेगी?
0: इमीडा ये जो भी आप के खाद बीज की दुकान है या सरकारी जो आपका कृषि निवेश बीज भंडार है ना सरकारी,
11: हाँ जी हाँ,
0: तो ये वहां पर भी मिल जाएगी।
11: वैसा भी निःशुल्क तो नहीं मिलेगी ना, पैसे में मिलेगी वहाँ?
1: जी बिल्कुल, पैसे
0: ये,
1: में मिलेगी।
0: ये तो पैसे में मिलेगी।
11: जी
0: जी जी,
11: महंगी दवा है नहीं है?
0: हाँ तो जी, इमीडा आप दवाई ले सकते हैं, और जो आप काली चींटी बता रहे हैं ना उसके लिए बहुत अच्छी दवाई होती है इमीडा क्लोप्रिड, इसका पूरा नाम है।
11: अच्छा जी, अच्छा जी हाँ।
0: तो वहाँ से दवाई लाएं आप, और जो है अपने जो जहाँ आप चींटी को दिखाई दे रही है तो वो दवाई का स्प्रे कर दें, और 0.2% का घोल बनाएं, यानी के जो आप यदि ये दवाई आधा किलो लाएं तो उसको 5 बीघे में लगाएं।
11: अच्छा जी, आधा किलो?
0: हाँ
11: जी,
0: 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से।
11: 100 बीघा? अच्छा जी,
0: 100 ग्राम प्रति बीघा, 1 बीघा के हिसाब से मतलब।
11: जो चींटी मतलब जो लगेगी तो नुकसान देगी ना? नुकसान तो
1: बिल्कुल,
0: हाँ बिल्कुल नुकसान देगी। वो गन्ने की पत्तियों का, गन्ने का जो तना होता है जिससे पोरिया बनती हैं, आगे गन्ना बढ़वार करता है, उसका रस चूस लेगी और गन्ना आपको ऐसा लगेगा गन्ना बढ़ नहीं रहा, बैठ जाएगा। और
11: हाँ
1: बिल्कुल।
0: तो प्रकाश चंद जी आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा, आपने हमें फोन किया, इसके लिए धन्यवाद।
1: बिल्कुल भैया, देखो बहुत समय हो गया अब जा, किसान भाई सोच रहे होंगे कि भैया बातचीत ही कर रहे हैं एक
0: या मनोरंजन नहीं करा रहे। चलिए चलिए, देखिए किसान भाइयों का अब मनोरंजन भी बीच में कराते हैं, और मनोरंजन के लिए लाए हैं हम आज ब्रह्मदेव आर्य की ये देशभक्ति रागनी।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो आइए।
12: सारी दुनिया बदल रही

0: हाँ अंकित भाई, देखिए एक कॉलर और है हमारी लाइन पर, देख लेते हैं इनकी क्या समस्या है। हेलो गन्ना किसान।
1: हेलो। हाँ
0: हेलो,
1: जी, हाँ जी, हेलो।
0: हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं कृपाल सिंह बोल रहा हूँ, मिर्जापुर से।
0: जी जी जी
1: जी,
0: क्या समस्या है आपके गन्ने में, जल्दी बताइए। फंगल,
1: हमारे गन्ने में ये इसकी जो मतलब फंगल सूख रही है ऊपर वाली।
0: जी
1: जी
0: ऊपर वाली फंगल, अच्छा बिल्कुल
1: ना,
0: थोड़ी सी सूख रही है, पतली पतली फंगल।
1: थोड़ी थोड़ी ज्यादा सूख रही,
0: अच्छा
1: कहीं कम है कहीं ज्यादा है, इस तरह से हो रही है।
0: हाँ, देखिए ये थ्रिप्स का इसमें संक्रमण है, और थ्रिप्स के संक्रमण के लिए आप इमीडा क्लोप्रिड और उसमें जो है एक दूसरी दवाई आती है फिप्रोनिल, तो
1: जी
0: इन
1: जी
0: दोनों का कॉम्बिनेशन या अलग अलग इनको घोल बनाकर आप अपने गन्ने की फसल पर छिड़काव कर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
1: बिल्कुल भैया, दोनों को मिला के करें।
0: हाँ, मिला कर दीजिए फिप्रोनिल और इमीडा क्लोप्रिड।
1: जी,
0: ठीक,
1: क्या
0: धन्यवाद
1: खा
0: आपने
1: लेते
0: हमें
1: हैं
0: फोन
1: अपने घर
0: किया,
1: अच्छा लगता है।
0: धन्यवाद आपने हमें फोन किया।
1: तो नैसपाल भैया, देखो घड़ी भी अब ज़्यादा बातचीत की जात नहीं दे रही है, तो भैया हमारे जो किसान भाई कॉल करने से छूट गए हैं या और कोई समस्या, तो भैया अब हमारा जो अगला कार्यक्रम वो कब होगा?
0: भैया देखिए, अगला कार्यक्रम तो अब 31 तारीख में, 31 जुलाई को, आज ही के दिन हेलो किसान में अपनी समस्या वो रख सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: चाहे
1: भैया,
0: गन्ने की हो या किसी फसल की भी हो।
1: बिल्कुल भैया। और भैया चलते चलते अब जब मौसम की जानकारी और हमारे किसान भाई को बता दो।

0: बिल्कुल, देखिए ये मौसम की चिट्ठी हमारे पास आई है कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से, और वहाँ के मौसम केंद्र के द्वारा ये सूचित किया जाता है कि अगले 5 दिन, 5 से 7 दिन बल्कि, हमारे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है इसमें जो है मध्यम से अच्छी वर्षा होने का संभावना है।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो किसान भाई अपनी फसलों में जो है सिंचाई जो है अभी टाल दें तो अच्छा रहेगा।
1: भैया
0: और
1: मौसम को देखकर कृषि कार्य करते रहे हम।
0: बिल्कुल, और भाई देखिए अब चलते चलते अपने किसान भाइयों को पता बता दें।
1: बिल्कुल भैया, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारा पिन कोड है 2466-63।
0: और भैया आप व्हाट्सएप संदेश भेजना चाहें तो यही नंबर है हमारा, 9457-07-82-88, इस पे आप हमें व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं।
1: और भैया अब दोनों भैया कर लेते हैं जल्दी से,
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

0: किसान श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। विविधा के अंतर्गत श्रोताओं लीजिए सुनिए आशीष भारती की वार्ता, भारतीय संस्कृति में न्याय की अवधारणा।
1: भारतीय संस्कृति में धर्म को कर्तव्य माना गया है, यानी आपका कर्म ही धर्म है। भारतीय व्यवस्थाकारों ने समाज एवं मनुष्य को व्यवस्थित और नियंत्रित रखने के लिए जिन मान्य परंपराओं, प्रथाओं तथा विधानों को लिपिबद्ध किया है, उन्हीं नियमों को विधि और कानून की संज्ञा प्रदान की गई है। इन विधिक सिद्धांतों को राज्य संस्था द्वारा स्वीकृत किया गया है, इसी कारण इनके अनुपालन के लिए राज्य शक्ति का प्रयोग आवश्यक हुआ। वैदिक युग से ही विधि एवं विधिक संस्थाओं की स्थापना प्रारंभ हो गई थी। वैदिक साहित्य में विधि द्वारा न्याय करने के संकेत मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में धर्मशास्त्रों, सूत्र साहित्य तथा स्मृति ग्रंथों में विभिन्न प्रकार से विधि का स्वरूप निर्मित हुआ। सूत्र साहित्य में विधि का मुख्य आधार वेदों को ही माना गया है। धर्म व्यवस्था के मूल स्रोत वेद हैं, तथापि इतिहास, स्मृति और आचार से भी धर्म व्यवस्था का बोध होता है। वैदिक काल में न्याय का आधार वेदों का दिव्य ज्ञान था। वेद, जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, समाज में सही और गलत के मानदंड स्थापित करते थे। उस समय लोग वेदों के निर्देशों का पालन करते थे, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान और नैतिक शिक्षाएं शामिल थी। इस प्रकार न्याय की अवधारणा न केवल कानूनी सिद्धांतों पर बल्कि धार्मिक आस्था और नैतिक जीवन पर टिकी थी। यह समाज के हर व्यक्ति को एक नैतिक दिशा प्रदान करती थी, जिससे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में संतुलन और सद्भाव बना रहता था। वैदिक काल में न्याय की अवधारणा को समझने के लिए ऋग्वेद की एक प्रसिद्ध ऋचा सहायक है, जो अक्सर नैतिकता, धर्म और सत्य के महत्व पर प्रकाश डालती है। सत्यम वद धर्म चर, इसका अर्थ है सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। प्राचीन भारतीय समाज में व्यवस्था उन व्यक्तियों द्वारा निर्मल की गई थी, जो समस्त जीवन का अनुभव प्राप्त किए हुए मनुष्य की चरम अवस्था को प्राप्त कर सांसारिक जीवन के स्वार्थों से निर्लिप्त थे और समाज की व्यवस्था निर्माण के लिए सबसे अधिक योग्य थे। यह व्यवस्था साहित्य, वेदों, ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में दी गई थी और आगे चलकर जिनका स्पष्टीकरण नियमों तथा उपनियमों के रूप में स्मृतियों, धर्म सूत्रों तथा वेदांगों आदि में किया गया था। प्राचीन भारत में समाज के नियम बनाने का अधिकार राज्य को प्राप्त नहीं था। भारतीय विचार को तथा समाज व्यवस्थापकों की धारणा की राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या कुलीन तंत्रात्मक किसी भी राज्य का अधिकार जिन लोगों के पास रहता है, वे सांसारिक दृष्टि से महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी स्वाद सिद्धि के लिए अथवा अपनी महत्वाकांक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। वे निष्पक्ष और निर्लिप्त रूप में सांसारिक जीवन के संघर्षों और स्वार्थों से ऊपर उठकर विचार कर ही नहीं सकते। अतः ऐसे व्यक्तियों के हाथों में समाज के नियम बनाने का अधिकार देना उन्हें मान्य नहीं था। याज्ञवल्क्य के स्मृति का एक प्रसिद्ध श्लोक है, धर्मेण हीना पशु भी समाना। इसका अर्थ है धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान होते हैं। यह श्लोक धर्म के महत्व को बल देता है और यह समझाता है कि धार्मिक आचरण ही मनुष्य को पशुओं से अलग करता है, जिससे समाज में व्यवस्था और सदाचार की स्थापना होती है, जिससे सामाजिक संबंधों में सद्भाव और सम्मान बना रहता है। यह धार्मिक और नैतिक शिक्षा के महत्व को रेखांकित भी करता है। भारतीय संस्कृति में न्याय की अवधारणा धर्म और कर्म पर आधारित है। यह केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक व्यापक नैतिक, सामाजिक और सार्वभौमिक सिद्धांत है। इसके अंतर्गत सभी प्राणियों के कल्याण और समरसता को सर्वोपरि माना गया है। भारतीय संस्कृति में न्याय के प्रमुख स्तंभ और आयाम निम्नलिखित हैं। भारतीय परंपरा में न्याय और धर्म एक दूसरे के पर्याय माने गए हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि मानवीय कर्तव्य, सदाचार और सत्य का पालन है। न्याय का आधार यह है कि राजा या राज्य सहित प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य और नैतिकता के दायरे में रहकर कार्य करे। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भारतीय न्याय का सबसे गहरा दार्शनिक आधार है। इसके अनुसार व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, जो अंततः ब्रह्मांडीय न्याय को सुनिश्चित करता है। सामाजिक समरसता और बंधुत्व भारतीय संस्कृति में समाज को एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में सभी के लिए समान रूप से कल्याण और प्रगति की बात कही गई है। किसी भी प्रकार के शोषण का निषेध और परस्पर सहयोग ही सामाजिक न्याय का मूल है। दंड का उद्देश्य प्राचीन भारतीय न्याय शास्त्र जैसे मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और याज्ञवल्क्य स्मृति में दंड का उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं बल्कि समाज और धर्म की रक्षा करना बताया गया है। दंड का भय समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है ताकि कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग से न भटक सके। निष्पक्षता और राजा का कर्तव्य। न्याय की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति राजा या न्यायाधीश के लिए निष्पक्ष होना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। प्राचीन काल में यह मान्यता थी कि राजा भी न्याय से ऊपर नहीं है। यदि राजा अन्याय करता है तो उसे भी दंड का भागीदारी माना जाता है। आधुनिक संविधान में भारतीय संस्कृति की झलक, वर्तमान में भारतीय न्याय प्रणाली का जो स्वरूप है उसकी जड़ें भी भारतीय संस्कृति में ही हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इसके तीन मुख्य प्रकार बताए गए हैं। सामाजिक न्याय में समाज के कमजोर और वंचित वर्गों का उत्थान, आर्थिक न्याय में संसाधनों का समान वितरण और शोषण की समाप्ति, राजनीतिक न्याय में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार और अवसर। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति को नैतिक बनाती है, समाज में संतुलन स्थापित करती है और सभी के सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करती है। हमें भारतीय संस्कृति या संविधान में न्याय से जुड़े किसी विशेष पहलू जैसे प्राचीन न्याय व्यवस्था या आधुनिक संविधान में सामाजिक न्याय के विषय को विस्तार पूर्वक समझने के लिए गहन अध्ययन की अति आवश्यकता है। वैदिक काल में ब्रह्मांडीय व्यवस्था प्राकृतिक संतुलन न्याय का मूल आधार था। राजा का कर्तव्य था दंड देना, न्याय का उद्देश्य अपराध रोकना, पीड़ित को राहत, समाज में व्यवस्था। महाकाव्यों रामायण महाभारत में भी अवधारणा की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। बौद्ध जैन धर्म के अनुसार जैसा करोगे वैसा भरोगे, हर दृष्टिकोण से सत्य देखो तो न्याय अपने आप होता है। सृष्टि के आरंभ से सभी प्राणी एक पुनित स्थल पर निवास करते थे, वे सुगंधित हवाओं का आनंद लेते, सूर्यमय धरा पर नृत्य करते थे। तब उन्हें न तो भोजन की आवश्यकता थी, न वस्त्रों की, न निजी संपत्ति थी, न सरकार, न ही किसी प्रकार का कानून। धीरे धीरे सृष्टि के पतन का आरंभ हुआ। मनुष्य सूर्यमय लोक से पतित होकर पृथ्वी पर आ गिरा। अब उसे भोजन और आवास की आवश्यकता महसूस होने लगी। मनुष्य की आरंभिक पवित्रता और कीर्ति धुल चुकी थी। लोगों ने एक दूसरे के साथ अनुबंध के आधार पर रहना आरंभ किया। परिवार और निजी संपत्ति उस अनुबंध का हिस्सा बने। इसी के साथ चोरी, हत्या, लूटमार जैसे अपराध होने लगे। समस्या से मुक्ति पाने के लिए सब मनुष्य एक बार एकत्र हुए। उन्होंने मिलजुल कर एक राजा चुना जो उनकी फसल का वाजिब हिस्सा उन्हें बांट सके। अपने

0: व्यवहारों, लोक जीवन के आदर्शों, सर्वकालिक जीवन मूल्यों और भविष्य के सपनों से अनुप्रेरित हो सके, उसके मूल में न्याय की भावना हो, साथ ही समानता और बराबरी की अवधारणा उसके हर प्रतीक में समाहित हो।
1: विविधा के अंतर्गत श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आशीष भारती की वार्ता, विषय था भारतीय संस्कृति में न्याय की अवधारणा। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:55 हुए हैं। आप पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम का पहला गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। नौशाद का संगीतबद्ध किया हुआ इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, आवाज़ लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है साथी।

छाया गीत कार्यक्रम का अगला गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। फिल्म यहूदी से आवाज़ मुकेश की है, शब्द रचना शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ राजेंद्र कृष्णा का लिखा गीत आपने सुना। लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म थी मनमौजी। छाया गीत हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

गंगा की लहरें, आपने सुना इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था चित्रगुप्त ने। श्रोताओं लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म गंगा जमुना का गीत। गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और संगीत नौशाद का है।

आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे दें।

आज रात्रि 9:30 पर श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा हेलो नजीबाबाद। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम रात के हम सफर। संध्या 7:32 पर इफ्तिखार अहमद और साथियों के गायन नाथ हमारे श्रोता सुन सकते हैं हमारे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। आज रात्रि 8:00 गीत संध्या कार्यक्रम होगा और रात्रि 8:30 पर क्रम रहेगा एक ही फिल्म से का।

कल रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल प्रातः 6:05 पर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। दिन में 12:05 पर कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम होगा जिंदगी लाइव। कल दिन में 1:15 पर महिला जगत कार्यक्रम में क्रम रहेगा आधी आबादी से सजना है मुझे, मेरी पाकशाला और आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का।

चंद्रा जोशी के गाए कुमावनी लोकगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं हमारे लोकधारा कार्यक्रम में कल दिन में 1:45 पर। कल दोपहर 2:30 पर एक ही गीत कार्यक्रम में हमारे फनकार रहेंगे गीतकार गोपाल दास नीरज। कल शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में बच्चों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री फॉर राइजिंग इंडिया योजना पीएम श्री और सर्व शिक्षा योजना विषय पर जानकारी हम अपने श्रोताओं को देंगे। समय याद रखिएगा कल शाम 5 बजे। कृषि जगत कार्यक्रम में कल संध्या 6:05 पर लोकगीतों रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो लोक मंजरी। विविधा में कल संध्या 6:45 पर अनुपम देवी की वार्ता का विषय होगा वैदिक रचनाओं का वर्तमान। समय याद रखिएगा कल संध्या 6:45 पर। तो श्रोताओं ये थी एक नज़र हमारे आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शामली को दी 581 करोड़ रुपए की 89 परियोजनाओं की सौगात। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत लखनऊ से यूके के लिए आज भेजी गई 64 आमों की पहली खेप। और प्रदेश में उमस से लोगों को कल से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ भारतीय रेल के इतिहास में बड़ा कदम है।
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे, और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: इसके बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब के जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1570 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों समेत 20 राज्यों में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन सहित पनकीधाम, विंध्याचल, फतेहपुर, शामली, मोदीनगर और धामपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस सेवा से भारत के 2 सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री के ग्रीन ग्रोथ के संकल्प को नई गति देने के साथ ही विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिजनौर में 1003 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजनौर की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें 100% रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है।
3: आपने डबल इंजन सरकार के कार्य को पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा है, आपने देखा होगा पहली बार हो रहा है। विकास और समृद्धि का लाभ कैसे मिलता है, ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आने के तत्काल बाद सबसे पहले काम किया था। अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, भेदभाव कोई नहीं, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शामली के कैराना में 581 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 89 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने शामली और कैराना के बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के सुरक्षा मॉडल, एक्सप्रेसवे की रफ्तार और गन्ने की मिठास से यह क्षेत्र देश दुनिया में चमक रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल्स पार्क शामली में बनने जा रहा है, जिससे 8000 युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा।
3: यहाँ पे प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है और बहनों भाइयों 8,000 नौजवानों को उसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। कि ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपका समर्थन हमारी सबसे बड़ी आज की ताकत है।
1: मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में 868 करोड़ रुपए की लागत की 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में पुलिस को आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की 39 घंटे की कस्टडी रिमांड मिली है। कल पुलिस लाइन में दोनों का मेडिकल चेकअप होगा। इसके बाद एसओजी कार्यालय में पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत उत्तर प्रदेश से यूनाइटेड किंगडम के लिए ताजा चौसा आमों की पहली निर्यात खेप को आज लखनऊ से रवाना किया गया। प्रदेश के उद्यान और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक फ्लैग ऑफ समारोह में इस खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खेप में 1200 किलोग्राम चौसा आमों को यूनाइटेड किंगडम भेजा गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की पहुंच अब विदेशी बाजार तक हो गई है।
4: योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर राज्य की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके किसानों का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। इस दृष्टि से भी उत्तरोत्तर हमारे उद्यान विभाग के द्वारा आम के साथ साथ अनेक फसलों को दुनिया की बाजारों तक पहुँचाया जा रहा है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के लगभग 1500 से अधिक माई भारत युवा स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं से कर्तव्य भाव, सेवा और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से प्रेरित होकर 2047 तक विकसित भारत के निर्माता बनने का आह्वान किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को 26 पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बेटियां नए भारत में नारी शक्ति का प्रतीक बन रही हैं।
5: यह सुखद है कि हमारी बेटियां निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। यह नए भारत की नई तस्वीर जहाँ नारी शक्ति भागीदार नहीं बल्कि नेतृत्व का प्रतीक बन रही। मैं सभी पदक विजेताओं, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों और उनके टीचर्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
1: आगामी श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन व्यापक तैयारियां कर रहा है। इसी क्रम में सुल्तानपुर की पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि कांवड़ मार्गों पर शुद्ध पेयजल, सुचारू यातायात और ढाबों पर स्वच्छता के साथ प्रमुख शिवालयों और घाटों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं।
6: जो तैयारियां उनको हमने 3 से 4 भागों में बांट रखा है, जैसे रूट्स की तैयारियां, घाट पे क्या तैयारियां रहेंगी और जो हमारे मुख्य शिवालय हैं, शिव मंदिर हैं, उन सब में किस तरीके की व्यवस्था रहेगी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इत्यादि में हम क्या व्यवस्थाएं करनी है। जो सर्वे है उसको करके वर्तमान में अभी सभी थाना क्षेत्रों को सभी CEOs को अपने अपने SDMs के साथ इसमें मीटिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में इंडियन पैरा जूडो अकादमी द्वारा आयोजित जूडो महाकुंभ स्टेट चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने व्यायाम और खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 1100 जूडो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

प्रदेश में कल से मॉनसून के और सक्रिय होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले चार दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ लोगों को उमस से राहत मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शामली को दी 581 करोड़ रुपए की 89 परियोजनाओं की सौगात। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत लखनऊ से यूके के लिए आज भेजी गई 64 आमों की पहली खेप। और प्रदेश में उमस से लोगों को कल से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: मीडियम वेव 401.4
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सुगम संगीत के अंतर्गत श्रोताओं लीजिए सुनिए इफ्तिखार अहमद और साथियों के गाई नात।

0: सुगम संगीत के अंतर्गत श्रोताओं इस समय आप सुन रहे हैं इफ्तिखार अहमद और साथियों की गाई नात। कार्यक्रम की अगली नात से पहले ये संदेश।
1: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रीता चौधरी, देवराज आई एंड चाइल्ड केयर सेंटर बिजनौर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें। डॉक्टर, यदि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या उसे स्कूल भेजना चाहिए?
2: यदि बच्चे को बुखार, छींके, लगातार खांसी, कमजोरी या उल्टी जैसी शिकायतें हों तो उसे एक दो दिन घर पर आराम करने देना बेहतर होता है। बीमार बच्चे को स्कूल भेजने से उसके ठीक होने में अधिक समय लग सकता है और संक्रमण अन्य बच्चों तक भी फैल सकता है। पर्याप्त आराम, पर्याप्त तरल पदार्थ, पौष्टिक भोजन और समय पर इलाज बच्चे को जल्दी स्वस्थ होने में मदद करते हैं। केवल उपस्थिति या परीक्षा की चिंता में बच्चे के स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चे की सेहत हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए।
1: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और इसके अंतर्गत आज हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं इफ्तिखार अहमद और साथियों की गाई नात।

संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में। कार्यक्रम का पहला गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म है प्यार का मौसम, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत आर डी बर्मन का।

आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म थी प्यार का मौसम। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ फिल्म है आप आए बहार आई। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आनंद बख्शी कली का गीत आरडी बर्मन का संगीत आपने सुना। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म थी सीता और गीता। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। कार्यक्रम है गीत संध्या।

0: डार्लिंग डार्लिंग आपने सुना इस फिल्म का गीत, स्वर किशोर कुमार का था, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत आरडी बर्मन का।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया गीत आपने सुना, फिल्म थी अलग अलग। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज के कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, फिल्म भीगी पलके से। आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है, शब्द रचना एम जी हशमत की और संगीत जुगल किशोर और तिलक राज का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म भीगी पलके के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का गीत संध्या कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम में श्रोताओं आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अजनबी के गीत। इन गीतों को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत कुमार सानू और सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

एक ही फिल्म सिक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अजनबी के गीत। इन गीतों को लिखा समीर ने और संगीत अनु मलिक ने दिया। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

एक ही फिल्म से एक रम्य श्रोता हूँ। आज आपने सुने फिल्म अजनबी के कुछ गीत, और इसी के साथ आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

0: रात्रि के 8:45 हुए हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया, गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
2: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
1: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
3: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब,

0: मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
2: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

0: का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रूपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबर्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and

0: जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: The Prime Minister said these railway stations are equipped with all the modern facilities. He said the transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
0: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है, और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही

0: किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: वजीर आजम ने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेलवे और इत्तिलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और दीगर सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। वजीर आजम मोदी ने दिल्ली अमृतसर कटरा 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और 6 लेन वाले जुनूबी लुधियाना ग्रीन फील्ड बाईपास की तरक्की का संग बुनियाद रखने जैसे कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज पार्लियामेंट की सभी सियासी जमातों के ऐवान के रहनुमाओं की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत सभी सियासी जमातों से ताउन चाहेगी ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का कामकाज खुश असलूबी से चलाया जा सके। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसून इजलास के दौरान कई अहम बिलों को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस दौरान आज नई दिल्ली में वुजरा के ग्रुप की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में मरकजी वुजरा अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजू रंजन सिंह, किंजरापू राममोहन नायडू और किरण रिजिजू मौजूद थे। मीटिंग के दौरान लीडरों ने आइंदा पार्लियामानी इजलास की हिकमत अमली तरतीब दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 19 से 25 तारीख तक मोल्दोवा, शुमाली मखदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने बताया कि ये सरकारी दौरे जमहूरिया मोल्दोवा, जमहूरिया शुमाली मखदूनिया और रोमानिया के सुदूर की दावत पर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दौरा तारीखी अहमियत का हामिल है क्योंकि किसी भी भारतीय सदर जमहूरिया के जरिए जमहूरिया मोल्दोवा और शुमाली मखदूनिया के अव्वलीन बाहमी दौरे होंगे। उन्होंने कहा कि रोमानिया का दौरा 3 से ज्यादा दहाइयों में किसी भारतीय सदर जमहूरिया का पहला सरकारी दौरा होगा। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि रोमानिया का आखिरी दौरा साल 1994 में हुआ था। जनाब जॉर्ज ने उजागर किया कि ये दौरा वस्ती और मशरकी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती हुई मसरूफियात की अक्कासी करता है। नीज खित्ते के ममालिक के साथ शराकतदारी को मुस्तहकम करने के भारत के अहद का इयादा करता है। जनाब जॉर्ज ने कहा कि यह दौरा यूरोप के साथ भारत के वसी तर ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन के साथ इसकी जामे शराकतदारी को भी उजागर करता है। सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस के इशारिये 2026 में भारत की रियासतों और मरकज के दिलंतजाम इलाकों के दरमियान गुजरात सबसे बेहतर कारकर्दगी करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा भी आला कारकर्दगी करने वाले के तौर पर उभरे हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया जिसमें उन रियासतों को उजागर किया गया है जो सरमायाकारी को रागिब करने में बेहतरीन मकाम पर आए हैं। ये साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद की जानिब भारत के सफर को उजागर करता है। इशारिये में तमाम 28 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 8 इलाकों का 8 सुतूनों का इस्तेमाल करते हुए तजजिया किया गया जिनमें बुनियादी ढांचा, कारोबारी माहौल, वसाइल, सरकारी पॉलिसी, जाब्ता जाति सहलकारी, इदारा जाति माहौल, मालियाती बेहतरी और माहौलियाती लचक शामिल हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला एम चंद्रबाबू नायडू के साथ 1,03,246 मुस्तफदीन को 3,216 करोड़ रुपए मालियत के कर्जे तकसीम किए। ये कर्जे आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में मुनक़िद क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ स्कीमों के तहत तकसीम किए गए। जिन शोबों के लिए ये इमदाद फराहम की गई है उनमें ज़राअत, MSMEs और हाउसिंग, तालीम, गाड़ियां और शमसी तवानाई के शोबे शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजारत खारजा ने आज कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में भारत जापान के दरमियान बातचीत इत्मीनान बख्श तरीके से आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये पोस्ट एक फर्द के राय की अक्कासी करती है और ये हकीकत से मुख्तलिफ है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जापान E20 ट्रेन सीरीज मुहैया कराएगा लेकिन ये साल 2030 के अवाइल में ही होगा। क्योंकि ट्रेन अभी तैयारी के मरहले में है। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में हुई पेशरफ्त को उजागर करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि तामीराती काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और साल 2027 में पहला सेक्शन ऑपरेशनल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि फरीकैन ने एक भारतीय हाई स्पीड ट्रेन से ऑपरेशन शुरू करने से इत्तेफाक किया है। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का सफर मुनज्जम रजाकाराना खिदमत की ताकत और अपनी जात से पहले खिदमत के पायदार जज्बे की एक वाजह मिसाल है। उन्होंने बात नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की तस्नीफ करदा किताब आरएसएस एट 100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस के इजरा के मौके पर कही। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि आरएसएस ने खिदमत, इत्तेहाद और कौमी शऊर के नजरियात को मजबूत किया है और बेलौस खिदमत और कौम की तामीर के जरिए नस्लों को मुतासिर किया है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि तंजीम का 100 साल सफर इस बात को जाहिर करता है कि कौम की देरपा तरक्की सिर्फ हुकूमती इदारों के जरिए ही नहीं बल्कि फाल शहरी किरदार और रजाकाराना खिदमत के जरिए भी हासिल की जाती है। ईरान के पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC ने दावा किया है कि उसने आज शाम कुवैत और ओमान में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाते हुए जवाबी हमले किए हैं। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक IRGC ने एक बयान में कहा कि ये हमले ऑपरेशन नसर 2 के 11वें, 12वें और 13वें दौर के दौरान किए गए। उसने दावा किया कि ईरानी फोर्सेज ने शाम के अलतनफ खित्ते में अमरीका की खसूसी कार्रवाइयों के कमान के एक मरकज पर अचानक हमला कर दिया। यूक्रेन में रात में किए गए रूसी हमलों में कम से कम 4 अफराद हलाक और दीगर 20 जख्मी हो गए। ओडेसा इलाकाई फौजी इंतजामिया के सरबरा ओले कीपर ने बताया कि ओडेसा के जुनूबी साहिली शहर पर रूस के एक मिसाइल हमले में 2 अफराद हलाक और दीगर 10 जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि ज़ेपोरोजिया खित्ते में एक और हमले में मजीद 2 अफराद हलाक हो गए और 5 दीगर जख्मी हुए हैं। हुकाम ने रूसी हमलों में मुल्क के दीगर 5 खित्तों में लोगों के जख्मी होने की भी खबर दी है। चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत का इंतखाबी कमीशन ECI दुनिया के सबसे शफाफ और मोतबर इंतखाब

0: भी इदारों में से एक है, जहां दुनिया की कई जमहूरियतें भारत के इंतखाबी अमल को एक मॉडल के तौर पर देखती हैं। इंतखाबी कमीशन की जानिब से मुनक़िद ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस 2026 से खिताब करते हुए आज ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में इंतखाबात आईन के तहत आजादाना तौर पर मुनक़िद कराए जाते हैं, जहां शहरियों को अपने नुमाइंदे चुनने की आजादी हासिल होती है। भारत के महकमे मौसमियात ने ज़ैली हिमालय, मगरबी बंगाल और सिक्किम में आइंदा दो दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में इतवार तक किसी किसी मुकाम पर शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। बिहार, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, उड़ीसा और शुमाल मशरकी रियासतों में कल शदीद बारिश की तवक्को है। वेस्टइंडीज के मायानास क्रिकेट खिलाड़ी सर गैरफील्ड सोबर्स का आज इंतकाल हो गया। वो 79 बरस के थे। मायानास क्रिकेटर की मौत की तस्दीक उनके फर्जंद डैनियल ने की है। मार्च 1954 से अप्रैल 1974 के दरमियान क्रिकेट के खेल में बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक सोबर्स ने 93 टेस्ट मैच खेले और 57.78 की औसत से 8032 रन स्कोर किए। इनमें 26 सेंचुरीज और 30 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के फास्ट मीडियम बॉलर सोबर्स ने टेस्ट क्रिकेट में 235 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने एक वाहिद ओडीआई भी खेला है, जिसमें उन्होंने एक विकेट लिया था। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर के दौरान 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी थे। ये संगमील उन्होंने साल 1968 में ग्लैमॉर्गन के खिलाफ नॉटिंगम शायर के लिए खेलते हुए कायम किया था। भारत ने आज FIH खवातीन के हॉकी आलमी कप 2026 के लिए अपने 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मिडफील्डर सलीमा टेटे इस पुरवकार टूर्नामेंट में भारतीय टीम की क्यादत करेंगी, जो 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नेदरलैंड्स में मुनाकिद होगा। गोलकीपर सविता और बिचू देवी खरीबाम ने टीम में अपना मुकाम बरकरार रखा है। इशिका चौधरी, सुशीला चानू, पुरखरमरम ज्योति और शिल्पी दाबास दिफाई पोजीशन संभालेंगी। मिडफील्ड की क्यादत सलीमा टेटे करेंगी और उनके साथ निकी प्रधान, साक्षी राणा, नेहा और दीपिका सोरेंग इस पोजीशन पर खेलेंगी। भारत की फॉरवर्ड लाइन ऋतुजा, ददोसा पिसाल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी डंगेरडंग संभालेंगी। भारत को पूल डी में रखा गया है, जिसमें चीन, इंग्लैंड और जुनूबी अफ्रीका शामिल हैं। टीम 18 अगस्त को जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ और 20 अगस्त को इंग्लैंड के मुकाबले मैच से कबल हॉकी स्टेडियम में 16 अगस्त को चीन के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज नागरिक देवोभव के जज्बे के साथ हर शहरी के लिए जिंदगी गुजारने में आसानी और नए मौके फराहम करने के तई अहदबंद है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के इजलास से कबल इतवार के रोज कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू इतवार से मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। नीति आयोग ने सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया है। गुजरात आला तरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। और मायानास वेस्टइंडीज क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स का इंतकाल हो गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब पेश है श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद।

0: इश्क का अहद है तुमसे ये वफा सिर्फ तुमसे है। इश्क का अहद है तुमसे ये वफा सिर्फ तुमसे है। गैर से क्या वास्ता, मेरी इबादत सिर्फ तुमसे है। प्यार भरे नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को, और बहुत बहुत बहुत स्वागत आप सभी श्रोताओं का आपके अपने पसंदीदा फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो नजीब आबाद में। आज कार्यक्रम में श्रोताओं आपके साथ मैं हूँ रेणु कोटनाला। श्रोताओं रात के ठीक 9:30 हुए हैं और हम हाजिर हैं आपके अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं के बीच उनके फ़ोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो नजीब आबाद लेकर। श्रोताओं जिस तरह से आप श्रोताओं को इंतज़ार रहता है ना शुक्रवार का, तो यकीन मानिए हमें भी आपसे मिलने की उतनी ही बेसब्री रहती है, क्योंकि अब आपसे इतना मजबूत रिश्ता जो बन चुका है, तो बस इसी ख्याल के साथ आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो नजीब आबाद। और हाँ, हमारे जो श्रोता पहली बार आज हमसे जुड़े हैं उनको फ़ोन करने के लिए अपना नंबर बता देते हैं। नंबर है हमारा 01341230105, जी हाँ 01341230105, और मोबाइल नंबर है हमारा 9457078288 9450708888। और एक गुजारिश अपने श्रोताओं से, हमारे जिन श्रोताओं की पिछले सप्ताह श्रोताओं कॉल शामिल हुई है, प्लीज़ वो कॉल ना करें, जिससे हमारे और भी जो दूसरे श्रोता हैं जो पिछली बार कार्यक्रम में शामिल होने से रह गए थे, जिनकी कॉल पिछली बार नहीं लग पाई, तो उनको इस बार मौका दीजिएगा। और आइए अब बिल्कुल भी वक्त ना गवाते हुए लेते हैं आज के कार्यक्रम की पहली कॉल और देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं। हेलो
1: हेलो
0: नजीबाबाद।
1: नजीब।
0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, आवाज़ आ रही है आपको?
1: हाँ जी दीदी, अभी आवाज मिलने लगी है। जी
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी, मैं ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ।
0: क्या नाम बताया आपने?
1: जी दीदी, मेरा नाम बेटा सिंह यादव और मैं ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यानी यमुना बेल्ट के किनारे से, मेरा नाम बेटा सिंह यादव है।
0: पहले तो बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, इतनी दूर से आप हमें फोन कर रहे हैं, और बड़ा प्यारा नाम है आपका, बेटा सिंह यादव।
1: जी, बिल्कुल दीदी,
0: यही नाम है आपका?
1: बिल्कुल दीदी, मेरा नाम ये बेटा सिंह ही रखा गया है।
0: मतलब आप बड़ों के भी बेटे और छोटे भी आपको इसी तरह से सोचते होंगे, बेटा यादव।
1: जी, बिल्कुल, बेटा ही करके बुला देते हैं, तो हमसे छोटा भी रह गया वो भी नाम लेके करके बुला देते हैं लोग।
0: चलिए, आपको इस बहाने से आशीर्वाद भी मिल जाता होगा, है ना?
1: जी,
0: जी, तो कैसे हैं आप?
1: दीदी बढ़िया है, मस्त है, मानो की बारिश भी हो रही है तो उसी का आनंद ले रहे हैं। जो भी है, धान की फसल वसल भी लग रही है, तो वही काम में व्यस्त रहते थे जो भी है, और हमने सोचा लगी और बात कभी फोन कर लिया जाए, फोन भी मिल गया तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है।
0: और वो जो खुशी है ना, वो आपकी आवाज में बयां हो रही है बेटा जी, पता है आपको?
1: जी, बिल्कुल दीदी।
0: देखिए, आपने बताया कि आपके यहाँ बारिश हो रही है और बहुत मौज में हैं आप, तो हमें सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है कि इस समय पर आपके आसपास बारिश हो रही है।
1: जी
0: क्या करते हैं आप?
1: जी जी जी वही खेती किसानी के काम करते हैं ऐसा है, और जो भी है किराने की दुकान डालने वाले हैं, थोड़ा बंद तो हो गया है लेकिन अभी कुछ काम उसमें रह गया है, तो साथ साथ में उसका किराने की दुकान भी खोलने वाले हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, अपना खुद का आप रोजगार शुरू करने वाले हैं और साथ में खेती तो है ही आपकी, है ना?
1: जी,
0: तो गीत कौन सा सुनेंगे आज कार्यक्रम में?
1: फिल्म का नाम रहेगा अंदाज, और गीत की
0: अंदाज।
1: वो आएगा मजा या बरसात का,
0: अच्छा,
1: और कुछ मेरे मित्र रहेंगे उनको डेडिकेट करना चाहूंगा। सबसे
0: बताइए।
1: पहले हमारे मांगीलाल चंदेल साहब हो गए, फूलचंद मनकारी से हो गए, दिनकर सिंह चित्रकूट धाम से हो गए, जितेंद्र पाल हो गए, मणिराम पाल हो गए, और हमारी बबीता बघेल जी हो गई।
0: तो सुनिएगा अपनी पसंद का गीत अपने दोस्तों के साथ। आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आगाज हो चुका है फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद का, और अगर आप भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिएगा 01341230105 पर, और मोबाइल नंबर है हमारा 9457078288। इस नंबर पर हम आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो नजीबाबाद, हेलो हेलो नजीबाबाद
1: हेलो नदीमाबाद दीदी, अस्सलाम वालेकुम
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी। मैं जिला रामपुर ग्राम काजीपुर से रिहाना परवीन बात कर रही हूँ आपसे।
0: रिहाना जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए दीदी, आप कैसी हो और आकाशवाणी नदीमाबाद में सभी लोग कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे से हैं और पूरा आकाशवाणी नजीबाबाद भी बहुत अच्छा है। रिहाना, मुझे लगता है कि बहुत समय बाद आपने कार्यक्रम में कॉल किया है।
1: जी मैम, आज काफी टाइम में बात हुई है आपसे, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे।
0: कैसे पता चलेगा हमें कि आपको अच्छा लग रहा है?
1: जी बहुत ही अच्छे लगते हैं प्रोग्राम्स दीदी, आज से 5 साल पहले बात हुई थी।
0: ओह माय गॉड, आपको याद है अभी तक?
1: जी
0: क्या बात
1: बिल्कुल
0: है
1: याद है।
0: भाई, यही हमारे श्रोताओं का प्रेम है जो हमें खींच लाता है अपने श्रोताओं के नज़दीक कार्यक्रमों के माध्यम से। बहुत शुक्रिया रिहाना कि आपने हमें याद रखा। अच्छा बताइए, कौन सा गीत सुनेंगी आज कार्यक्रम में?
1: जी दीदी मैं गीत तो सुनूंगी, लेकिन पहले कहना चाहूंगी, मैं 5 साल पहले आपके प्रोग्राम सुने थे और फिर शादी हो गई थी उसी के बाद। मतलब अब मम्मी के घर पर मैं रेडियो पे सुनती थी, अब ससुराल में मोबाइल ऐप पे सुनती हूँ, तो
0: चलिए,
1: कम
0: और अच्छा
1: सुनने
0: हो
1: को
0: गया।
1: पा जी कम सुनने मिलती है, टाइम से सुनने मिलती है,
0: देखिए, अब तो
1: लेकिन
0: मोबाइल
1: मैं
0: आपके
1: सुनती
0: पास हर वक्त
1: हूँ।
0: रहता होगा, तो आप कभी भी सुन सकती हैं ऐप पर, है ना?
1: जी बिल्कुल सुनती हूँ मैं, बहुत ध्यान से सुनती हूँ आपके प्रोग्राम्स और अच्छे भी लगते हैं, कॉल भी लगाती हूँ लेकिन कभी लग जाती है कभी नहीं लगती।
0: हाँ, ये तो रिहाना होता है क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉलर्स ट्राई कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि उनकी कॉल लगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन रिहाना, हम आपसे नाराज़ हो जाते कि आपने 5 साल तक हमें नहीं सुना, लेकिन फिर खुशी हुई कि चलिए आप वापस हम तक आ गई हैं और अब ये सिलसिला बना रहेगा, है ना?
1: जी बिल्कुल दीदी।
0: चलिए, तो गीत बताइए कौन सा सुनना चाहेंगी?
1: दीदी फिल्म का नाम है आंदोलन और गाने के बोल हैं, कितने दिनों के बाद मिले हो पूछ रहा है ये मौसम, और ये गाना मैं आपको डेडिकेट करना चाहूंगी।
0: बहुत शुक्रिया, मुझे लग भी रहा था कि ये गाना आप हमारे लिए ही प्ले करवा रही हैं क्योंकि इतने दिनों बाद मिले हैं हम, है ना
1: जी बिल्कुल
0: जी? तो किसी का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी हाँ, दो तीन नाम है जैसे रामपुर से है नेहा, लाइवा काजमी, आप और हम।
0: चलिए, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद।
1: ओके बाय।

0: हेलो नजीबाबाद
1: हेलो नजीबाबाद
0: जी, बहुत स्वागत है आपका
1: रेनू,
0: कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रेनू जी। आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: बहुत शानदार एंट्री की है आपने कार्यक्रम में। हेलो नजीबाबाद, बहुत खूब।
1: क्या क्या
0: जी,
1: बात
0: कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइएगा।
1: रेनू जी, मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ छतरपुर। मैं वीरों की भूमि बुंदेलखंड की धरती से, यानी महाराजा छत्रसाल की नगरी
0: अरे वाह, बहुत
1: छतरपुर जिले के मनकारी गांव से, यानी खजराहो से मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि इतने दूर दूर के श्रोता कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, हमारी बात होती है और बहुत अलग अलग जगह के बारे में हमें जानकारियाँ भी मिलती हैं, है ना। तो कुछ खास बात बताइए अपने यहाँ की।
1: जी जी बिल्कुल रेणु जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे छतरपुर जिले में खजुराहो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध नगरी है, जो मंदिरों के लिए जाना जाता है। वहाँ के
0: जी
1: मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और हमारे बुंदेलखंड में आपको बता दूं, छतरपुर जिले में खजुराहो है, बागेश्वर धाम है, चित्रकूट धाम है, और अपना ओरछा धाम है, और जटाशंकर धाम है। जैसे बहुत सारे पन्ना टाइगर है, बहुत सारे स्थल है जो देखने लायक है, घूमने लायक है। आप जब भी आए तो देखें।
0: यानी आना पड़ेगा हमको छतरपुर।
1: जी बिल्कुल आना पड़ेगा, आपको
0: जी
1: आना है।
0: जी,
1: बिल्कुल
0: ज़रूर, कभी मौका लगा तो हम घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए इधर ज़रूर आएंगे।
1: जी, बिल्कुल आओ, बिल्कुल आओ। अपना अपना जो है छतरपुर जिला है, मध्य प्रदेश में आता है, और घूमने लायक बहुत ही दर्शनीय स्थल है। आप आएंगे देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ कोई स्थल है बना हुआ।
0: जी अच्छा, फूलचंद जी बातें तो हो गई आपसे, गीत कौन सा
1: जी
0: सुनेंगे।
1: जी हाँ रेणु जी बिल्कुल, हमारे यहाँ इस समय मनकारी में छतरपुर जिले में इतने काले बादल हैं और बहुत जो है बारिश भी हो रही है। हाँ
0: अच्छा, बारिश है वहां भी।
1: बारिश हो रही है और बढ़िया जो है अच्छा मौसम है, बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और आपका जब कार्यक्रम सुनते हैं तो बहुत मजा आता है। और जो आपने कहा है ना कि हमारे बहुत दूर दूर से श्रोता जी, आप लोगों का प्यार है, आप बोलते हैं हम लोगों को, आपकी जो वाणी में मिठास है और अपनापन है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: जी, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर से हमारे श्रोता हमें याद करते हैं। गीत के बारे में हम
1: जी जी
0: आपसे बात कर
1: बिल्कुल
0: रहे थे।
1: जी जी बिल्कुल रेणु जी, देखिए हमारे श्रोता कहीं से भी हो, किसी भी प्रांत के हो, सब हमारे भाई बहन हैं
0: जी
1: और हम सब एक हैं। दूर जरूर है लेकिन हमारे दिल सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, कोई कम नहीं है, सब हमारे भाई बहन हैं।
0: जी जी
1: और बस एक माध्यम रेडियो है, रेडियो के माध्यम से हमारा जितना श्रोतागण, जितने हमारे मित्र बड़े हैं, बहुत सारे मित्र जो है हर प्रांतों से, हमारी दोस्ती बड़ी है, और ये सब आप लोगों की रेडियो की देन है। और अभी अभी जो हमारे बेटा सिंह यादव जी का फोन लगा, वो हमारे बहुत ही परम मित्र हैं।
0: अच्छा, क्या
1: बहुत
0: बात है,
1: परम मित्र हैं।
0: क्या बात है। अच्छा फूलचंद जी, आपसे जानना चाह रहे थे कि गीत कौन सा सुनेंगे आप कार्यक्रम में।
1: रेणु जी बिल्कुल, अभी हाल मौसम बहुत दीवाना है, तो ऐसे में मेरा मन बार बार क्या कह रहा है कि फिल्म का नाम है साजन का घर, और गीत के बोले कि सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, और आने वाले सब आए हैं लेकिन तुम कब आओगी।
0: अच्छा, इंतजार है आपको।
1: बिल्कुल आपका, बिल्कुल आपका रेणु जी, बिल्कुल आपका इंतजार है कि आप कब
0: जी
1: खजुराहो आएंगे घूमने के
0: चलिए चलिए,
1: लिए।
0: आप सुनिए अपनी पसंद का गीत। आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत आभार।
1: और रेणु जी
0: जी
1: हमारे कुछ मित्र हैं, उनको डेडिकेट करूंगा
0: ओ
1: मैं।
0: हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे, आपके मित्र भी होंगे।
1: जी जी
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरी बहन, मैं आपको डेडिकेट रहेगा रेणु जी,
0: जी जी धन्यवाद।
1: और हमारी कानपुर से हमारी पूनम जी हैं तो उनको डेडिकेट रहेगा, बेटा सिंह यादव जी हैं, जितेंद्र पाल, मणिराम पाल जी हैं, और चित्रकूट धाम से दिनकर सिंह जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, और हमारे जितने श्रोता लाइव कार्यक्रम सुन रहे हैं, विजय कुमार पांडे जी हैं, देवी शंकर शुक्ला जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, और जितने श्रोता लाइव सुन रहे हैं, सभी को डेडिकेट रहेगा जी की ये गीत जो है। और हमारे जो है बहुत ही प्रिय दोस्त है हमारे जयपाल सिंह यादव जी महोबा से हैं।
0: बहुत सारे नाम आपने ले लिए, बहुत सारे आपके साथी हैं, तो अपने सभी साथियों के साथ सुनिए ये गीत।

0: हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो
0: हेलो।
1: जी, हम मिंटू तिवारी, ग्राम भकरना, तहसील खागा, जिला फतेहपुर से बोल रहे हैं।
0: मिंटू तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम
1: जी
0: में।
1: जी जी
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं मैम। बस आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, फोन भी मिला रहे, फोन भी लग गया।
0: फोन भी लग गया तो आपको अच्छा लग रहा है।
1: जी,
0: अच्छा, कितने समय बाद आपने आज कार्यक्रम में फोन किया है?
1: फोन तो हमारा मतलब मैम मिलाते तो हरदम, लेकिन लगता नहीं यार, 3-4 महीने के बाद मेरा कॉल लगा है।
0: 3-4 महीने के बाद
1: जी,
0: तो गुस्सा आता है कि
1: नहीं गुस्सा नहीं आता, ट्राई करते हैं जब लग जाए, मतलब कि इसमें लग लग की बात है। कभी मतलब लगता है वास्तव में, मतलब कॉल आप ले लेते दूसरे नंबर पे, अब इस नंबर पे घंटी जा रही तो नहीं उठता तो कोई बात नहीं।
0: हाँ, ये तो है। देखिए, ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि आपको इतना समझ में आता है कि दूसरे श्रोता का इस समय पर कॉल चल रहा होगा, इसलिए हम फोन नहीं उठा पा रहे हैं ना।
1: हाँ
0: कई
1: जी,
0: बार तो हमारे श्रोता कह देते हैं कि फोन ही नहीं उठा रहे हैं। भाई देखिए ना, आप मिंटू जी से सुनिए कि हम बात करते हैं, हम इसीलिए तो कार्यक्रम में हैं कि अपने श्रोताओं के प्यारे प्यारे फोन कॉल्स को रिसीव कर सकें, उनको उनके पसंद के गीत सुनवा सकें, है ना। तो आप मिंटू जी, ये जो इस समय पर हमारा कार्यक्रम है, ये मोबाइल पर सुन रहे हैं या रेडियो पर सुन रहे हैं?
1: नहीं मैम, मैं रेडियो पर सुन रहा हूँ अभी। रेडियो मतलब ऑनलाइन 3-4 महीने हो गए, पहले मंगाया था फिलिप्स का,
0: अरे वाह,
1: 1755 का मिला था।
0: ऑनलाइन आपने मंगवाया।
1: हाँ, ऑनलाइन मंगाया था मैंने। जी
0: ये होती है रेडियो की दीवानगी, है
1: जी
0: ना।
1: हम हरदम मतलब फिलिप्स का ही रेडियो सुनते आए, तो आवाज अच्छी देता है, तो इसलिए उसको बुक करके।

0: मंगवाए हैं मैम।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। गीत कौन सा सुनवाए आपको आज कार्यक्रम में?
0: आज हमको गाना सुना दीजिए दाग द फायर का, दिल दीवाना ना जाने खो गया। हम किसी को डेडिकेट करना चाहते, थोड़ा नाम ले लें।
1: जी जी बिल्कुल लीजिए।
0: हमारे बड़े भाई हैं विनोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, मुन्ना तिवारी और प्रसूर गुरराज प्रभात तिवारी जी, अभिजय पांडे जी सुन रहे होंगे इस समय, और भगवान सिंह परमार जी हो गए, मांगीलाल चंदेल हो गए, और प्रेम कुमार सिसोदिया जी, और जितने लोग हमको जानते, जितेंद्र पाल जी हो गए फिल्मी से, और जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
1: चलिए आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने साथियों के साथ सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र और कार्यक्रम है फोन इन हेलो नजीबाबाद। अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 9457078288 पर और लैंडलाइन नंबर है हमारा 01341230105। और आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद, नमस्कार दीदी
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी जी मैं अमर सिंह भील बोल रहा हूँ, दिलवाली पटा, छबड़ा, राजस्थान से।
0: छबड़ा राजस्थान।
1: जी जी जी जी
0: बहुत स्वागत है आपका अमर जी कार्यक्रम में। कहिए कैसे
1: दीदी, मैं
0: हैं?
1: आपका आपका नेम ही सोता हूँ, बहुत सालों सुन रहा हूँ मैं रेडियो, जब से बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, बहुत अच्छा करती है आप कार्यक्रम।
0: बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। पिछली बार आपने फोन कब किया कार्यक्रम में?
1: दीदी मेरे को हो गया 3 माह हो गए कॉल करिया,
0: 3 माह पक्का ना?
1: 3 माह का कॉल नहीं किया जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब कॉल नहीं किया या कॉल नहीं लगी?
1: नहीं कॉल किया था पर लेकिन कॉल लगा नहीं, मैं बीच में कॉल ट्राई भी करा था लेकिन लगा नहीं, 3 माह का कॉल लगा नहीं मेरा, बीच में करे
0: अच्छा।
1: थे मैंने ट्राई।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप दूसरे श्रोताओं को भी मौका देते हैं कि उनकी भी कॉल लगे कुछ।
1: मेरे को तो कहना तो ये दीदी, क्योंकि मतलब मैं 1 माह के बाद में कॉल लगाए सभी, तो बहुत बहुत बढ़िया रहे, मतलब मैं 1 माह में 3 कॉल 4 कॉल शामिल हो जाती है कि मैंने मैंने सुन रहा हूँ मैं कार्यक्रम, तो मेरे को याद है, अब ये नहीं करे तो सोता तो बढ़िया रहे, क्योंकि
0: चलिए
1: नए श्रोताओं को मौका मिल सकता है।
0: हमें ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे श्रोता जितना अच्छा है, अच्छे हैं, उतने ही समझदार भी हैं, अपने साथ साथ वो औरों का भी ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छी बात है अमर जी कि आप चाहते हैं कि दूसरे श्रोताओं की भी कॉल लगे और दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, है ना? गीत
1: नहीं मौका मिलना जरूरी है दीदी, क्योंकि सभी आस करता है, क्योंकि अपना कार्यक्रम में कॉल लगे तो कॉल नहीं लगता है, वो दिल टूट रहा है।
0: बिल्कुल सही बोला आपने कि सभी की आस होती है कि भाई हमारी भी कार्यक्रम में कॉल शामिल हो जाए। अच्छा गीत कौन सा सुनेंगे?
1: दीदी आज हमें मुस्कान पिक्चर का गाना सुनना, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती।
0: चलिए आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं हम। आपने हमें
1: धन्यवाद।
0: फोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद दीदी को राधे राधे।
0: जय श्री राधे। कौन बोल रहे हैं?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से। थैंक
0: मध्य प्रदेश से केसरी सिंह राजपूत, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक
0: क्या
1: यू।
0: क्या बात है, आज मध्य प्रदेश की बहुत कॉल लग रही है, कुछ खास है क्या?
1: नहीं दीदी, खास तो कुछ नहीं है, बस बाकी ये है मध्य प्रदेश में श्रोता बहुत हैं आपके नजीब आवाज को चाहने वाले।
0: नहीं, ये तो आपने सही कहा। और हमारे ही श्रोता तो ना केसरी जी चारों तरफ हैं, मतलब छत्तीसगढ़,
1: हाँ
0: मध्य
1: हाँ हाँ
0: प्रदेश,
1: लेकिन
0: इलाहाबाद और
1: उत्तर
0: बहुत, जी
1: प्रदेश।
0: उत्तर
1: हाँ
0: प्रदेश।
1: हाँ
0: जी
1: जी जी
0: जी कैसे हैं आप?

0: बहुत बढ़िया दीदी, और आप कैसे हो?
1: हम भी बहुत बढ़िया हैं, है ना? क्या
0: जी
1: करते हैं आप?
0: दीदी, मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर, और प्लस में खेती भी है गांव पर।
1: खेती के साथ साथ आप आर्टिस्ट भी हैं। किस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं?
0: यही दीदी, दीवार लेखन, चित्रकारी हुई, वॉल पेंटिंग जैसे बोलते हैं, राइटिंग का भी काम देता है उसी में।
1: ऑर्डर्स पर आप काम करते हैं?
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: तो आपके साथ और लोग भी हैं या आप अकेले ही पेंटिंग करते हैं?
0: ज्यादातर दीदी 90% मैं अकेला ही करता हूँ। बाकी कभी ज्यादा काम हो या ज्यादा दूर का हो, ऐसा लगता है कि अपने को एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन जाना पड़ेगा, तो फिर सहपाठी को साथ ले लेते हैं, कभी उनका हम करवा देते हैं।
1: अच्छा, गीत के बारे में बताएं, कौन सा सुनवाएं आपको आज गीत?
0: दीदी अनुरोध मूवी से सुनवा दीजिएगा,
1: ठीक है, कौन सा गीत सुनेंगे?
0: उसमें है आवारा सड़कों पर कभी कभी, ऐसा करके गीत है, बहुत अच्छा
1: आते
0: लगता है
1: जाते
0: मुझे।
1: खूबसूरत आवारा सड़कों, है ना?
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: जी, चलिए आपको आपके पसंद का
0: और
1: गीत सुनवा रहे
0: दीदी
1: हैं।
0: कहना चाहेंगे कि प्रस्तुति आपकी बहुत लाजवाब है,
1: अरे
0: और
1: वाह,
0: बोलने का जो आपका तरीका है, अपनापन है, वो वाकई में बहुत सराहनीय है। और प्रोग्राम को हमारे मांगीलाल चंदेल जी, गजराज लोधी जी, भगवान सिंह परमार जी और दारून अंसारी जी, जितने भी लाइव सुन रहे, सबके लिए रहेगा।
1: बहुत शुक्रिया, आपको कार्यक्रम पसंद आते हैं और आपने फ़ोन किया, आपका इसके लिए भी शुक्रिया। सुनिएगा अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये गीत।

0: हेलो नजीबाबाद
1: हाँ जी, हेलो नजीबाबाद जी।
0: जी। हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं बहन जी नांगल सोती जिला बिजनौर से मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ।
0: मोहम्मद असलम जी, बहुत स्वागत है आपका हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम में।
1: जी, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, बहुत दिनों में फोन लगा, 2.5 महीने में फोन लगा जी।
0: 2.5 महीने में? चलिए, बहुत ज़्यादा लंबा समय तो नहीं हुआ, खैर है ना, लेकिन 2.5 महीने आपको लगता है, यानी आपको
1: लंबा समय तो बहन जी नहीं लगा, पर लगा भी है, क्योंकि बाजार में कहीं मतलब याद करते रहते हैं भाई, तुम्हारी फरमाइश नहीं लग रही, तो
0: अच्छा
1: इसलिए दिल पर मतलब खुशी हो जा जी।
0: हाँ, ये तो है। हमारे श्रोता इतने प्यारे हैं, मतलब इतने प्यार से वो हमें पसंद करते हैं, हमारे कार्यक्रमों को पसंद करते हैं, कि उनकी फरमाइश अगर कार्यक्रम में शामिल नहीं होती तो उनके दोस्तों को लगता है कि भाई हमारे दोस्तों की
1: हाँ,
0: फरमाइश।
1: जैसे मान लो हम बाजार की तरफ कुछ आ रहे हैं, रेडियो है, तो भाई तुम्हारी फरमाइश आए हुए, बहुत दिन हो गए भाई, फरमाइश करो।
0: अच्छा
1: मैंने कहा दुआ करो, मैंने कहा दुआ करो, लग जाएगी।
0: तो दुआएं कबूल हो गई आपकी, है ना, आपके
1: हाँ
0: दोस्तों
1: जी,
0: की।
1: हाँ,
0: चलिए
1: और की भी
0: दोस्त,
1: लगती है दुआ बहन जी, ऐसी बात
0: हाँ
1: नहीं।
0: नहीं, ये तो है कि अगर दुआएं की जाएं, दिल से दुआ की जाए तो ज़रूर कबूल होती है, और आपकी दुआ भी, आपके दोस्तों की दुआ भी आज कबूल
1: जो
0: हो गई।
1: अनाउंसर देखो, जितना आकाशवाणी में अनाउंसर है ना, तो जब बदल बदल के दीप्ति लगती रहती है, तो उनकी भी खुशी हो,
0: हाँ ये तो है।
1: उनकी तो ऐसी बात है कि भाई नसीब है, नहीं लग रहा अगले हफ्ते लग जाएगा या ये लग जाएगा, तो
0: चलिए, समय थोड़ा सा कम है हमारे पास। असलम साहब, गीत बता दीजिए, कौन सा गीत सुनेंगे आप
1: फिल्म का
0: कार्यक्रम
1: नाम
0: में?
1: है राज, फिल्म का नाम है राज, और गाने के बोले इतना मैं चाहूँ तुम्हें।
0: चलिए, आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं। अपने दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे आप? जल्दी से ले डालिए।
1: एक दोस्त हमारे अहमद
0: हेलो,
1: जी, फुरकान अहमद।
0: फुरकान अहमद। अच्छा चलिए, आप सुनिए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये गीत। आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत शुक्रिया।

तो श्रोताओं, ये था आप सभी का पसंदीदा अपना फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। उम्मीद है हमारे सभी श्रोताओं को पसंद आया होगा और हमारा प्रयास रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करें। और किसी वजह से अगर हमारे किसी श्रोता की फ़ोन कॉल आज कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई तो वो निराश ना हो, अगली बार प्रयास करें, आपका फ़ोन ज़रूर कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। और अब इस उम्मीद के साथ कि होगी आपसे फिर मुलाकात, इजाज़त दीजिए रेणु कोटनाला को, नमस्कार।

आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम रात के हम सफर।

स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम रात के हमसफर। कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं रेणु कोटनाला और श्रोताओं, अगले 30 मिनट तक कार्यक्रम में मैं आपके साथ रहूंगी और श्रोताओं, इस दौरान हम साथ मिलकर बात करेंगे एहसासों की, भावनाओं की, यादों की और कुछ खास उम्मीदों की। श्रोताओं, दिन भर की भागदौड़ के बाद जब रात दस्तक देती है तो जैसे दिन कुछ पल के लिए

ठहर जाता है ना। यही तो वो समय होता है श्रोताओं, जब हम अपने दिल की बातें सबसे अच्छी तरह से सुन पाते हैं। जी हाँ, कुछ बातें जो किसी से कह नहीं पाए, कुछ यादें जो आज भी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं, और कुछ उम्मीदें जो हर नई सुबह का इंतज़ार करती हैं। श्रोताओं, रात के हमसफर कार्यक्रम सिर्फ गीतों का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये आपके दिल की बातों का भी साथी है। अगर इस समय आपके मन में भी कोई खूबसूरत सा एहसास है, किसी अपने की याद है, किसी से जुड़ी कोई प्यारी सी बात है, या फिर जिंदगी ने आपको कोई ऐसी सीख दी है, या फिर किसी अजनबी के साथ वो पहली मुलाकात अगर आपको याद है जिसे आप हमारे साथ, हमारे सभी श्रोताओं के साथ बांटना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो हमें अभी व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। जी हाँ, नंबर है हमारा 9457078288। आप अपना नाम, जगह के साथ अपना संदेश हमें भेजिए। आपके संदेशों को हम आज के कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमें इंतज़ार रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का। और अब जब तक आपके संदेश हमारे पास पहुंचते हैं, तब तक शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत से सफ़र की, इस पहले गीत के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म स्वीकार किया मैंने का गीत। आप सुन रहे हैं इस समय रात के हम सफ़र कार्यक्रम, और आज श्रोताओं बात हो रही है एहसासों की, भावनाओं की, यादों की और कुछ ख़ास उम्मीदों की। ये कार्यक्रम श्रोताओं आपके द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित है। अगर आपने अभी तक हमें संदेश नहीं भेजा है भाई, तो अभी भी समय है, अभी तो कार्यक्रम शुरू ही हुआ है। व्हाट्सएप कीजिएगा हमें 9457078288 पर, और हमें बताइए कि रात आपको किस बात का सुकून देती है, या फिर कौन सी याद आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। आपकी बातें हम कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। और हमारे एक श्रोता का मैसेज लिखा है, मिला है, ये लिखते हैं कि हम रात के हम सफ़र कार्यक्रम बहुत ही खुश होकर सुनते हैं, लगन से सुनते हैं। हर शुक्रवार को ये कार्यक्रम आता है और हमें बहुत पसंद आता है। ये मैसेज हमें लिखा है परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, मोहम्मद असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली और इनके बहुत सारे साथियों का गंजुद्वारा से। एक और श्रोता का मैसेज मिला है, किसी को हंसकर देखना अच्छी बात है पर किसी को देखकर हंसना अच्छी बात नहीं है। रवि जवालिया हरिद्वार से कहते हैं। बिल्कुल श्रोताओं, ये तो है ही, कभी कभी किसी की कमज़ोरी पर कुछ लोग हंस जाते हैं, उसकी मजाक उड़ा लेते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। कोशिश करें कि अगर कोई कमज़ोर है या किसी को कोई परेशानी है तो उसकी मदद ज़रूर करें, और आपकी की हुई मदद क्या पता उसके लिए कितना फ़ायदेमंद हो जाए, है ना। ये एक और श्रोता का मैसेज आया है कार्यक्रम रात के हम सफ़र में, शाही मार्केट सुहारा ज़िला बिजनौर से, आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात चौधरी, अदीब चौधरी और कादिर चौधरी का लिखते हैं, मेरा बेटा सऊदी अरब गया, उसको 2 साल हो गए हैं, उसकी हमें बहुत याद आती है, लेकिन वो हमें दूसरे दिन फ़ोन भी करता है, तसल्ली होती है, लेकिन वो विदेश में है, याद बहुत आती है। जब फ़ोन पर बात होती है तो चेहरे पर खुशी आ जाती है, बहुत खुश हो जाते हैं जब उससे बात हो जाती है। ये तो होता ही है, कभी कभी पढ़ाई के लिए या कारोबार के लिए, देखिए बच्चों को या परिवार के किसी सदस्य को बाहर जाना भी होता है, और जब अपने हमसे दूर जाते हैं तो उनकी बहुत याद आती है। कहते हैं ना कि किसी से प्रेम तब और ज़्यादा हो जाता है जब वो हमसे दूर होता है। तो आप को फ़ोन आते हैं, चलिए अच्छा है कि आपकी बात अपने बच्चों से होती रहती है, और आपसे कहेंगे कि फ़ोन तो आप कर ही लेते हैं, कभी कभी उनसे जब भी बात होती है तो अपनी मन की जो बात है, जो आप उसके लिए सोचते हैं, उसके लिए महसूस करते हैं, उसको भी कहिएगा, देखिएगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। सुनते रहिएगा आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र, कार्यक्रम है रात के हम सफ़र।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना फिल्म कन्यादान का गीत। आप सुन रहे हैं इस समय कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रात के हम सफ़र। और कार्यक्रम में हमें एक मैसेज मिला है ग्राम गद्दा रोना ज़िला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी जी का। लिखते हैं कि मुझे आशय ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरा मैसेज आज कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकता जब मुझे मेरी मुंह बोली बहन 35 साल बाद मिली थी। हमने इंटर की परीक्षा साथ साथ ली, उसके बाद हम अपने अपने घरों को वापस चले गए। मेरी सरकारी नौकरी लग गई, मैं अपने निजी जीवन में व्यस्त हो गया। 35 साल बाद एक विवाह समारोह में मेरी मुलाकात अचानक अपनी मुँह बोली बहन से हो गई। हम दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित नज़रों से देखते रहे और उस पल को मैं कभी नहीं भूल सकता, मुझे मेरी दीदी मिल गई थी। भाई देखिए, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मैसेज किया है। और आपने ये कैसे सोचा कि आपका मैसेज कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा? हम इसीलिए तो हैं कि अपने श्रोताओं के मैसेजेस को कार्यक्रम में शामिल करें। तो उम्मीद है कि जो आशा आपको हमसे थी वो पूरी हो गई होगी। और ये भी खुशी की बात है कि लंबे समय बाद आपकी जो मुंह बोली बहन थी आपको मिल गई। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। एक और श्रोता का मैसेज मिला है लक्सर रोड ग्राम सुवाहेड़ी कस्बापुर काजी ज़िला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुज़ैफ़ा, मोहम्मद शाहनवाज, शाहरुख, शोएब, कहकशा और इनका पूरा परिवार। लिखते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद को हम 90 के दशक से सुनते आ रहे हैं और वो दिन आज भी याद है जब हमने आकाशवाणी नजीबाबाद को पहली बार आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पत्र लिखा था और वो पत्र हमारा प्रोग्राम में शामिल भी किया गया था और हमारी फरमाइश का गीत भी हमने सुना और हमने अपने नाम सुनकर हमें बहुत खुशी महसूस हुई। और जब गांव वालों ने भी हमारे नाम रेडियो पर आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से सुने तो हमसे सभी ने कहा कि आज तो हमने तुम्हारे नाम सुने तो हमें बहुत ही खुशी महसूस हुई। और रात के हम सफ़र कार्यक्रम को हम बहुत ही दिल से सुनते हैं और पसंद करते हैं। तो शुक्रिया कि आपको रात के हम सफ़र कार्यक्रम पसंद आया और आपने हमसे बहुत पुरानी जो बात है वो कार्यक्रम में साझा की कि कब आपने आकाशवाणी नजीबाबाद को पत्र लिखा और वो पत्र आपका कार्यक्रम में शामिल भी हुआ। तो एक और मैसेज को कार्यक्रम में हम शामिल कर लेते हैं। ये मैसेज आया है हमें कुमुद का मोहल्ला संतोमालन नजीबाबाद ज़िला बिजनौर से। लिखते हैं हमें याद आ जाती है गुरु जी की बात है उन दिनों की जब हम कक्षा 9 की छात्रा थी। हमारे विद्यालय में एक गुरु जी आए, हमें लगा कि वो कोई जादू का खेल दिखाने के लिए आए हैं। सभी को ग्राउंड में बैठने के लिए कहा गया। उन्होंने अपनी बात शुरू की, सच मानिए एक एक शब्द ओज से परिपूर्ण था। उन्होंने हमें बताया कि मुहावरों का उदाहरण कैसे लिखा जाता है, आप भी सुनिए। चलो सखी उस देश को जहाँ कृष्ण का राज, जल भरे दर्शन करें एक पंथ दो काज। उन्होंने एक कविता भी सुनाई, लिखती हैं कि शिक्षित होना व्यर्थ एकदम यदि विनीत व्यवहार नहीं है। उस घट को तुम मरघट समझो जिसके अंदर प्यार नहीं है। इस धरती को की रोटी खाई इसके हित पर चोट करे जो, उसको इस पर रह सकने का जीने का अधिकार नहीं है। और उनका जो तेजस्वी चेहरा है आज भी इनको अक्सर याद आता है। आपने पुरानी बात हमसे साझा की, एक बात अच्छी लगी कि अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो जीवन बेकार है, है ना। शिक्षा के बिना जो व्यवहार है, विनीत व्यवहार है, वो नहीं हो पाता। एक और श्रोता का मैसेज कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। ये हमारे नियमित श्रोता हैं नगीना से अनिल विनोचा जी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। लिखते हैं कि हेलो नजीबाबाद, कॉल में कॉल लगती ही नहीं है क्योंकि आपको यहाँ शामिल होना होता है इसलिए शायद आपकी कॉल वहाँ नहीं लगती है। तो कहते हैं आगे कि फिर हमने सोचा कि चलो रात के हम सफ़र कार्यक्रम में ही शामिल हो लेते हैं। तो स्वागत हो गया आपके कार्यक्रम में और आपका मैसेज भी शामिल हो गया। लिखते हैं कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, कुछ लिख रहा हूं। चलो बात निकली तो एक अजनबी को देखा तो दिल कहता है, लिख रहा हूँ चार लाइन की। इश्क वो है जो पागल कर दे, पत्थर दिल भी घायल कर दे, नजरों से नजरों का ये सुकून है, अगर दिल में उतरा तो ये दर्द सैलाब है। बहुत प्यारा होता है पहला दिलबर, एक तेरा नाम तारुफ बन जाए, मोहब्बत के पैरों में
ऐसा पायल कर दे, बस दिल में ही देखो उस अपने उस खास को, नजर न लग जाए। अनिल, आंखों में काजल कर दे। बहुत खूब, बहुत सुंदर पंक्तियाँ आपने कार्यक्रम में लिखी हैं। इसी तरह से कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होते रहिएगा, और बहुत सारे मैसेजेस हमने कार्यक्रम में शामिल कर लिए हैं। अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम में ये गीत, आवाज़ किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

रात के हम सफ़र कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और लगातार हमारे श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज हमें मिल रहे हैं। ये मैसेज आया है केसरी सिंह राजपूत का, बेरसिया ज़िला भोपाल मध्य प्रदेश से। लिखते हैं कि फ़ोन इन कार्यक्रम आपने बेहतरीन पेश किया, बहुत शुक्रिया आपका, आपको पसंद आया। आगे लिखते हैं कि आज का विषय भी बेहतरीन है, वो बीती यादें, वो गुजरे पल, वो बीता हुआ बचपन और बीते हुए खेत खलियान आंगन छोड़कर आ गए हैं तो बहुत याद आती है। वो बचपन के दिन, वो मांगू मवेशियों का दूध निकालना, चारा डालना, खेतों में काम करना और आराम भी करना, बहुत ही सुखद एहसास की अनुभूति होती है। किसी चीज़ को जब हम बिसरा देते हैं या भुला देते हैं तो उसकी याद और भी ज़्यादा आ जाती है। ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं जो मैसेज को ज़्यादा लंबा कर देंगे, फिर भी यही कहूँगा कि बीते हुए दिन की कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और एक और श्रोता का मैसेज हम तक पहुँचा है, रात के हम सफ़र कार्यक्रम में ये मैसेज आया है बबलेश पवार का। लिखते हैं, दूसरी तरफ से अनजान पर पहचान वाले दोस्त की थी, कहाँ मैं अजीत भावसार, पत्र मित्र मेरे हाथ में जैसे थम से गए। आधा मैसेज इन्होंने हमें लिखा है, वो आवाज़ इनके बचपन के सबसे पक्के दोस्त की शायद ये बात कर रहे हैं। दोनों 1990 से ही साथ में थे, बाद में काम के सिलसिले में अलग हो गए और धीरे धीरे जगह बदली और संपर्क भी टूट गया। आज पूरे 40 साल बाद उनको फिर से उनकी आवाज़ सुनने को मिली, तो चलिए देर से ही सही लेकिन आपके दोस्त आपको मिल गए। और

तो श्रोताओं, अब रात का हम सफर कार्यक्रम यहीं तक। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहेंगे कि अपने मन से शिकायतों का बोझ उतार दीजिए, अपनों के लिए दुआ कीजिए और आने वाली सुबह का मुस्कुराकर इंतजार कीजिए। और अब इस उम्मीद के साथ कि होगी आपसे फिर मुलाकात, इजाज़त दीजिए हमें। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रात के हमसफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए

0: असर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
0: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।